जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

0: स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारे मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपके स्किन के मुहासे हो, एक्निक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए अंदर से बाहर की ओर खींचें। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठकर के अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठकर के सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सौंच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वस्थ किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है। इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद कुप मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना, या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया। आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच

नमस्कार श्रोताओं, सुबह की भोरे भोरे की पहली किरण के साथ मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा हाजिर हूँ आपके आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण में। आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन है। कारण, आज है सीता नवमी, यानी वो दिन जिस दिन माता सीता का इस धरती पर अवतरण हुआ था। सीता हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी और महाकाव्य रामायण की नायिका है, जिन्हें लक्ष्मी का अवतार और राम की पत्नी माना जाता है। राजा जनक की पुत्री सीता साहस, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। उनके जीवन में 14 वर्ष का वनवास, रावण द्वारा अपहरण और अग्नि परीक्षा जैसी चीजें शामिल हैं। तो बहुत कुछ है जो हम इनके जीवन से शिक्षा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के जीवन और जीवन शैली पर चर्चा करेंगे आपके सुबह के कार्यक्रम यानी पहली किरण में। फिलहाल चलते हैं एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

जानकी, मैथिली और वैदेही, इन सभी नामों से जानी जाती हैं माता सीता। उन्हें पृथ्वी की संतान माना जाता है, जिन्हें राजा जनक ने एक हल्की नली में पाया था। ये एक आदर्श पत्नी और सद्गुणों की प्रतीक हैं, जिन्हें देवी रूप में पूजा जाता है, जो अपार कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन करती हैं। और चूंकि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी की पुत्री यानी धरा धरती माता की गोद से उत्पन्न हुई, तो जिस तरह से जो सहन शक्ति हम माता धरती में देखते हैं, उसी तरह से इनके भीतर भी इनके पूरे जीवन काल में सहन शक्ति देखी जाती है, जो कि महाकाव्य यानी कि रामचरित के कई सारे दृश्यों में पढ़े जा सकते हैं। अब बात करेंगे रामायण की, जिसमें माता सीता के उस गुण की व्याख्या की गई है जिसे बोला गया है पवित्रता। यानी कि रामचरितमानस में माता सीता के सहन के गुण को ऊपर रखा गया, केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बनाया गया है। और वहीं जो कि ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित मानी जाती है, उसमें केंद्र बिंदु माता की पवित्रता को बनाया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। कुछ कथाओं में माता सीता को माया सीता कहते हैं, यानी छाया या फिर भ्रमित सीता, ऐसे भी उल्लेख पाए जाते हैं, जिनका अपहरण कर लिया गया था, जबकि वास्तविकता में सीता सुरक्षित रही। ये सारी चीजें किंवदंतियों में पाई जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और सीता नवमी और विवाह पंचमी जैसे त्योहारों के साथ इन्हें विशेष रूप से रामानंदी संप्रदाय के भीतर सुंदरता और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है और ये दिवस मनाया जाता है। और अगर माता सीता की बात करें तो विपरीत परिस्थितियों में भी स्वाभिमान नहीं छोड़ा इन्होंने। और इनसे लेने वाली शिक्षा की अगर बात करूं तो EQ यानी कि इमोशनल क्वांटिटी जो इनमें है, इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, तो हमें अपनी भावनाएं समझने और संभालने की कला सिखाती हैं माता सीता। जैसे कि टॉक्सिक रिश्तों परिस्थितियों में सीमाएं तय कर पाना, हम इनके जीवन की अगर चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, इनकी चीजों को समझेंगे, तो वहां से हमें ये सीख प्राप्त होगी। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है और निर्णय स्पष्ट किस प्रकार से रखना है, ये हम रामचरितमानस के माता सीता के पात्र से या फिर रामायण के माता सीता के पात्र से बखूबी सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं माता सीता की ध्यान की ओर, एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

श्रोताओं, आपने वो कथा तो सुनी ही होगी जो कि पूरे के पूरे 14 वर्षों के वनवास की है। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं जानकी, भूमिपुत्री, जनकात्मजा, रामवल्लभा, भूसुता, मैथिली, सिया आदि नाम वाली माँ सीता की, जिन्हें माना जाता है लक्ष्मी का अवतार। रामायण और रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों में इनका उल्लेख पाया जाता है। इसलिए आज के आध्यात्मिक शो यानी कि पहली किरण में आज मैं लेके आई हूँ माता सीता की जीवन शैली और उनसे जुड़ी हुई कुछ कलाओं को, उनके कुछ गुणों को, जिसको हम अपने जीवन में उतार कर आत्मसात करके अपने जीवन को और सरल और सुगम बना सकते हैं।

अगर इनके जीवन साथी की बात की जाए तो वो थे प्रभु श्री राम। इनके दो संतान थी लव और कुश। माता पिता की बात करें तो जनक जी इनके पिताजी थे और सुनैना इनकी माता थी। जैसा आप सभी जानते हैं कि सीता रामायण के अनुसार मिथिला के नरेश जनक की ज्येष्ठ पुत्री व अयोध्या के नरेश दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र यानी राम की भार्या थी, जिन्हें त्रेता में लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। रामायण के अनुसार राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक कलश से अटक गया था उनका हल। इन्हें उस कलश में पाया गया था। राजा जनक और रानी सुनैना ने गर्भ में इनके कलाओं एवं आत्मा की दिव्यता को महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा स्थापित किया। उसके बाद सुनैना ने अपनी मातृत्व को स्वीकार किया और पालन किया। उर्मिला इनकी छोटी बहन थी। और त्रेता युग में जब बहुत ही विकट समस्या सामने आई तो माना जाता है कि राक्षस लोग इस तरह उत्पात मचा रहे थे कि सभी देवताओं का वो मर्दन करते जा रहे थे और उससे उनके जो रक्त होते थे उसको भर भर के उन्होंने जनक की भूमि पर गिराया था, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया था। उस वक्त जरूरत थी कुछ ऐसे चमत्कार की जिससे भूमि फिर से हरी भरी हो सके। तो फिर राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने हल चलाया और वहां से उत्पत्ति हुई माता सीता की, जो कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और उसके बाद हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा और जनक सुता भी कहते हैं। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमि पुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म वैशाख शुक्ल नवमी को मिथिला में हुआ।

श्रोताओं, शो चल रहा है आपका भोरी भोरी का पहली किरण। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और आज हम बात कर रहे हैं माता सीता की। अभी हमने कुछ बातें की और अब बात करेंगे माता सीता के विवाह की। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें राम और लक्ष्मण भी उपस्थित थे। महाराज जनक ने स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्री राम जी ने धनुष को उठाकर भंग किया। इस तरह माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह होना निश्चित हुआ। इसी के साथ उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, और मांडवी जो कि माता सीता की बहन थी का विवाह भरत से। साथ ही साथ श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न से होना निश्चय हुआ। विवाह उपरांत सीता अयोध्या आई व उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा। सीता की रीति से अगर कुछ सीखने की बात करें तो कर्तव्य निष्ठा इन्होंने बखूबी निभाया है अपनी लाइफ में। परिवार और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी यानी भरोसेमंद व्यक्तित्व, टीम में सम्मान और दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता, ऐसे गुण अगर आपको सीखना है तो माता सीता के जीवन से बखूबी आप सीख सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने जाना माता सीता के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके विवाह के बारे में। अब बारी आती है उस पल की जब 14 वर्ष का वनवास आया। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ द्वारा पत्नी कैकेयी को दिए गए वचन के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ माता सीता चित्रकूट पर्वत स्थित मंदाकिनी तट पर वनवास के लिए गईं। इसके बाद गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में इन्होंने वास किया। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई। रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीची सोने के हिरण का रूप धर राम और लक्ष्मण को वन में ले गया और उनकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता का अपहरण किया। आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उनके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो माता सीता ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानर इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों की उपस्थिति में इनकी देखरेख की गई।

यहाँ पर अगर मैं आपसे माता सीता के जीवन से कुछ गुण सीखने की बात करूंगी तो वो है धैर्य। आजकल के लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो यहाँ से हम सीख सकते हैं। अशोक वाटिका में अटूट धैर्य की आवश्यकता थी जो माता सीता ने दिखाई। माइंडफुलनेस स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक माता सीता के जीवन से हम सीख सकते हैं। दबाव में भी शांति और केंद्रित कैसे रहते हैं ये हम माता सीता के जीवन से सीखते हैं। पढ़ाई काम में निरंतरता और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए माता सीता का अनुसरण करें। चलिए फिर चलते हैं एक प्यारे से देवी गीत की ओर।

जी हाँ श्रोताओं, अभी हम चलेंगे उस ओर जब एंट्री होती है हमारे महाबली की यानी कि हनुमान जी की। जी हाँ, हमने जाना कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ, उनका पालन पोषण कैसे रहा, फिर उनका विवाह, फिर 14 वर्षों का वनवास, उसके बाद में रावण द्वारा इनका अपहरण, और अब बारी आती है हनुमान जी से इनके भेंट की। जैसा कि रामचरितमानस में और रामायण में पढ़ने पे प्राप्त होता है कि सीता जी की वन वन खोज करते राम जटायु तक पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी को रावण द्वारा दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना दी। राम लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले। आगे चलकर वे हनुमान जी से मिले जो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम जी संग मैत्री के बाद में सुग्रीव ने सीता जी के खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान, नील, जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पहुंचे। तट पर उन्हें जटायु का भाई संपाति मिला जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता माता लंका स्थित एक वाटिका में है।

श्रोताओं, इस प्रकार हनुमान जी को जामुन जी द्वारा उनकी शक्ति का भान कराया गया। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। लंकिनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहां सभी भवन और अंतःपुर में सीता माता को ना पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण व नमन कर अशोक वाटिका पहुंचे। वहां धुएं के बीच चिंगारियों की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए। उसी समय रावण वहां पहुंचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न हैं। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है। राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है। रघुवंशियों की वीरता से अपरिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। तुम्हारे श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। इस घटना से निराश रावण ने राम को लंका आकर माता सीता को मुक्त कराने के लिए 2 माह की अवधि दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर श्री राम 2 माह की अवधि तक नहीं आए तो उसके उपरांत रावण व सीता का विवाह होना निश्चय है। रावण के लौटने पर सीता जी बहुत दुखी हुई। त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज धराया माता सीता को और कहा, श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त कराएंगे। चलिए फिलहाल हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन जो कि श्री राम जी को अर्पित है।

त्रिजटा राक्षसी के धीरज धराने के उपरांत हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन किया और अपने लंका आने के कारण को बताया। सीता जी राम व लक्ष्मण की कुशलता पर विचार करने लगी। श्री राम जी की मुद्रिका देकर हनुमान जी कहते हैं कि वे माता सीता को अपने साथ श्री राम जी के पास लिए चलते हैं। सीता जी हनुमान को समझाती हैं कि नहीं, ये अनुचित है, क्योंकि जब तक मेरे प्रभु नहीं आएंगे तब तक मेरा जाना उचित नहीं होगा। मैं तुम्हें भले ही पुत्र मानती हूँ पुत्र, पर समाज की नजरों के लिए ये उचित नहीं है। रावण ने मेरा हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से अगर कोई मुझे मुक्त कराएगा तो वो मेरे प्रभु श्री राम ही होंगे, और ये उनका कर्तव्य भी है। विशेषतः रावण के 2 माह की अवधि का श्री राम जी को स्मरण कराने की विनती करते हुए माता सीता ने हनुमान को आदेश दिया। हनुमान ने रावण को उसके दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका को जलाया। माता सीता से चूड़ामणि व अपनी यात्रा की अनुमति ले महाबली अपने यात्रा की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार हनुमान जी सागर तट स्थित अंगद व वानर सेना को अपने साथ लेकर हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंचे, माता सीता की चूड़ामणि दी और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम व लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। तो श्रोताओं, ये थी रामचरितमानस और रामायण में उल्लेखित वो कथा जो कि माता सीता के जीवन पर आधारित थी। इसके अलावा अगर आज की लाइफस्टाइल और उस समय की यानी कि त्रेता युग की बात करें, तो अगर हम माता सीता से सीखने की बात करें तो हर परिस्थिति में करुणा और संवेदनशीलता कैसे सीखनी है, ये हम इनके जीवन से जान सकते हैं। रिश्तों में मजबूती और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप में वृद्धि के लिए भी हम माता सीता के जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें स्वाभिमान, अन्याय के सामने झुकने से इनकार करना, समानता, अधिकार और न्याय की समझ, इन सभी को भी हम माता सीता के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। सम्मानजनक समाज का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, लड़कियों में आत्मविश्वास और लड़कों में संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, तो माता सीता से ये हम सीख सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति से गहरा संबंध, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली किस प्रकार हम निर्वहित कर सकते हैं, ये भी हम माता सीता के जीवन से सीख सकते हैं। संस्कार और वैल्यू एजुकेशन, ये सीखना हो तो हमें लवकुश के श्रेष्ठ संस्कारों की ओर चलना चाहिए। कहा जाता है लवकुश बहुत ही छोटे थे उम्र में, तभी से इन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया था, सारी कठोरताओं को सीखते हुए ये बड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं अगर आप इसे माने तो कम वर्ष में राजा बनना था उन्हें, इसलिए कहीं ना कहीं प्रकृति उन्हें सिखा रही थी, प्रकृति यानी माता सीता स्वयं। और जब हम बच्चों को संस्कार देने की बात करते हैं तो हम उनके साथ कठोरता नहीं करते हैं, हम उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगली पीढ़ी में नैतिकता और अनुशासन डालना बेहद जरूरी है, परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं इससे, इसलिए न्यू अगर डालनी है तो हमें संस्कार डालने होंगे बच्चों में। और ये भी अगर हम सीखने की बात करें तो हम माता सीता के जीवन से बखूबी सीख सकते हैं।

छोटागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसके करुण छाती देखिए।

तो श्रोताओं, आज हमने बात की माता सीता की और उनके जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त की हमने। सीता की रीति हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, जीवन के मूल्यों में बसता है। और जब ये मूल्य आधुनिक शिक्षा से जोड़ दी जाए तो इंसान सिर्फ सफल नहीं बल्कि संतुलित और श्रेष्ठ बनता है। सीता की रीति और आधुनिक शिक्षा का संगम हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता वही है जहां ज्ञान के साथ चरित्र और प्रगति के साथ संस्कार भी जुड़े हों। तो सुबह के पहली किरण के साथ मैं थी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजी आकांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ था 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और उम्मीद है कि आज के दिन आपने माता सीता से बहुत कुछ सीखा होगा जो आप अपने जीवन में उतारने वाले हैं और अपने जीवन को बखूबी बहुत सरल और सहज बनाने वाले हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारी दुआओं के साथ और इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। राधे राधे, जय जिने।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में, क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: क्या बात है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम और ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो यस, आज फाइनली 2 तारीख हो गई जून की और हम प्लान कर चुके होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कि इस मंथ हमको क्या कुछ करना है, कैसे करना है। प्लानिंग ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमने कहा ना कि हम इतना ज़्यादा सोचते चले जाते हैं कि मिल कुछ नहीं पाता है। सो इसलिए प्लान करते रहना ज़रूरी है ताकि कुछ चीज़ों को हम उनकी टाइमलाइन में ही अचीव कर सके, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और इसीलिए इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती ही रहती है। सो चलिए, अब क्या है आज की शुरुआत के लिए, यानी कि आज का थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या है, क्योंकि आज है मंगलवार और मंगलवार है सो जाहिर है कि आज का थॉट भी काफ़ी ज़्यादा ख़ास और ज़रूरी होने वाला है। फ़िलहाल आपने ट्यून किया हुआ है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और फ़िलहाल गर्मी का टेम्परेचर क्या है आपकी तरफ, बताइए ज़रा, कहीं ये गर्मी आपके इरादों को तो नहीं पिघला रही है। फिलहाल मुझे लगता है कि अगर इरादे मजबूत थोड़ा सा इस बार कर लिया है तो खैर इतनी भी गर्मी नहीं है कि इरादों को पिघला पाए। सो आपको भी ये जानना ही होगा। सो चलिए हम बताते हैं कि भाई अब आज का थॉट ऑफ द डे क्या है जो आपसे मिलने आया है आपके अपने ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल शो में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान ओनली ऑन रेडियो 89.6 एफएम। यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Arjun Khan.

हाँ जी, सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल शो में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्तरी 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और अब हम बताने वाले हैं कि आज का आपका थॉट ऑफ द डे क्या है, राइट? क्योंकि ये थॉट से जब शुरुआत होती है तो दिन जो है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन बन जाता है। सो आज का थॉट कहता है कि प्रेम करो, प्रेम करो, लेकिन प्रेम को बंधन मत बनाओ, प्रेम को स्वतंत्रता दो। जी हाँ, आज का थॉट ऑफ द डे कहता है प्रेम करो, लेकिन प्रेम को बंधन मत बनाओ, प्रेम को स्वतंत्रता दो। ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। क्यों? क्योंकि प्रेम जहां है वहां बंधन जैसी कोई बात, बंधन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वहां सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, खुला आसमां है। क्योंकि जहां बंधन आ गया वहां प्रेम रह ही नहीं पाता है। इसका मतलब वो प्रेम नहीं है जहां बंधन है, एंड प्रेम का मतलब ही है स्वतंत्रता। क्योंकि जब कोई खुद से लौटता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये सच में लौटा है, और जब किसी को पकड़ के लाया जाता है तब ये नहीं कहते लौटा है, इसको लाया गया है ये कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रेम में होता है। इसीलिए शायद प्रेम जो है वो स्वतंत्रता की बात करता है, क्योंकि जो चीज़ें खुद से होती हैं वो मायने रखती हैं। जिसके लिए आपने कहा गया होता है वो उतना मायने रखता नहीं है। यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। क्योंकि हमको ये भी पता है कि कोई भी हो, कोई भी शख्स, हर किसी को पसंद है कि वो अपने अकॉर्डिंगली करे। और शायद हम भी यही कहते हैं कि हर किसी को अपने अकॉर्डिंग करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको भी कभी ये महसूस ना हो कि आप जो चाह रहे थे वही नहीं आप कर पाए, और ना ही किसी पे आप इल्ज़ाम रख पाए इनकी वजह से नहीं हुआ। सो अगर हम किसी और के बारे में सोचें तो हमको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हर किसी को उसका पूरा स्पेस देना चाहिए, उसको सोचने का, उसको फैसले लेने का, उसको जो अपने हिसाब से उसको बेहतर लगे वो करने का। और ठीक ऐसी हमारे साथ अगर कोई बात आती है तो फिर हमें अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए, ताकि हम कल कदार ये ना कह पाए यार, या मन में ख्याल तक ना आए कि ये तो मेरा नहीं था, ये तो कहा गया था इसलिए कर दिया, नहीं तो हम नहीं करते। वो बात ना आए इस बात का ख्याल रहना चाहिए। और इसीलिए प्रेम जो है वो बंधनों से मुक्त है, क्योंकि प्रेम खुद को बुला लेता है। कहीं भी होता है शख्स चला जाता है, पहुंच जाता है। देखिए, कितनी भी शाम हो, आप कितने भी बिजी हो, जब प्रेम आपको छत से होता है तो आप कहीं भी होते हैं। अगर आप अपने शहर में भी नहीं होते हैं तो किसी और की छत पे या किसी ऐसी जगह जाके बैठ जाते हैं जहां से शाम आप अकेले इत्मीनान से बिता पाते हैं। अगर आप चांद देखते हैं तो आप मौका निकाल करके कहीं जा भी रहे होते हैं तो एक निगाह भर उठाकर सिर को देख लेते हैं। अगर आपको मिलना होता है किसी से तो आप कहीं से भी जाते जाते बस निगाह देखते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि ये प्रेम खुद से स्वतंत्रता होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है। और इसको ज़बरदस्ती कहीं करने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए अपने आप में इतना स्वतंत्र होता है। और इसीलिए ये आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि प्रेम करो, लेकिन प्रेम को बंधन मत बनाओ, प्रेम को स्वतंत्रता दो। जितना स्वतंत्र उतना ज़्यादा प्रेम, उतना ज़्यादा इंटेंस फीलिंग, सब कुछ है। कैसा लगा आज का ये थॉट ऑफ द डे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए, वो परिंदे जिनको आप पिंजड़े में रख करके खिलाते हैं और वो परिंदे जिनके लिए आप दाना और पानी रखते हैं, वो खुद ब खुद अपने वक्त पे आते हैं, चहचहाते हैं, खाते हैं, और उनकी किलकारियाँ गूंजती है, अटखेलियाँ देखते हैं आप, और उसके बाद वो चले जाते हैं और रोज़ आते हैं बिना कैद किए हुए, बिना एड्रेस बताए हुए कि ये छत कहाँ होगी, कितनी दूर होंगे, वो खुद ब खुद पहुँच ही जाते हैं
और शायद यही होती है मोहब्बत जो उनको इतना ज़्यादा नज़दीक ले आती है। फिलहाल कैसा है आज का ये थॉट ऑफ द डे हमको कमेंट करिए और बताइए। वापस हम आते हैं आपके मैसेजेस पढ़ने के लिए।

0: हाँ जी सुभाई, देखते ही देखते कितना खूबसूरत सा गाना आपने सुन लिया और हम वापस से भी आ गए। एक बार वापस से आपका मॉर्निंग वाले शो में वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you are listening Good Morning Gonda with your favorite RJ Adnan.

प्रेम वैसे ही आता है जैसे पतझड़ के बाद वसंत, प्रेम वैसे ही आता है जैसे तपती दोपहरिया के बाद ठंडी सी शाम, प्रेम वैसे ही आता है जैसे प्यास के बाद सहरा, प्रेम वैसे ही आता है जैसे हर म्यूजिकल ब्रेक के बाद आरजे अदनान। यस, सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और चलिए, वक्त हो गया है आपके मैसेजेस को पढ़ने का, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि इस वक्त आप हमको सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। और जो भी हमारे श्रोता एप्लीकेशन पर मौजूद हैं उनको चैट का चूँकि ऑप्शन मिलता है और उसी ऑप्शन के ज़रिए आप सीधे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाते हैं, यानी सीधे आप जो कुछ लिखते हैं वो हम तक पहुँच जाता है। तो फिलहाल अभी आज आपने अपनी मॉर्निंग विशेस भेजी हैं और साथ ही साथ आज के थॉट को सुनने के बाद रिएक्शंस दिए हैं कि आज का आपको थॉट ऑफ द डे कैसा लगा। तो सबसे पहले जो कमेंट आया है वहां से शुरू करते हैं। और सबसे पहला कमेंट ये है, वो सविता दुबे जी का है। सुप्रभात लिखा है, सुप्रभात आपको भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड इसके बाद अनुष्का जी हैं, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत बढ़िया, मैं बहुत अच्छा हूँ। नव्या है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड आशु मिश्र जी ने लिखा है, प्यारी सी सुबह का प्यारा सा नमस्कार सर जी, आपको भी। किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत, वो फरिश्ते होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं, क्या बात है। साथ ही बताया आपने लखनऊ का मौसम बहुत सुहाना है, मुझे लगता है लखनऊ आना पड़ेगा। हाँ राइट, सो इसके बाद जो है चलते हैं अपने अगले मैसेज की तरफ। प्रीति जी का है बहराइच से, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। और इसके बाद, अच्छा आप सुन नहीं पाई, क्या हो रहा है आपके साथ कि आप थॉट नहीं सुन पा रहे हैं, हम जल्दी बता रहे हैं, देर में बता रहे हैं, कभी बता रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, इसके बाद जो है आप लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं, सो क्या रिएक्शंस है आज के थॉट ऑफ द डे को लेकर के। लवली थॉट, थैंक यू, वेरी नाइस थॉट ऑफ द डे सर लिखा है अनुष्का जी ने, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और नव्या का है, प्रेम का मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करना नहीं होता, एक दूसरे को समझना और सुख दुख में साथ देने को प्रेम कहते हैं, ओके। एंड आशु जी लिखती हैं, कोई कुछ भी कहे, जो आपके मन को सुकून दे, जो आपको सही लगे वही करना, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, इस तरीके से जीना है। यस, ऑब्वियस सी बात है, आपकी लाइफ है, आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच, अजी बहुत नाइस है जी, बहुत नाइस है। चलिए फिलहाल अब बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आपने किए हैं और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स को पढ़ करके, देख करके, फील करके। एंड जिस तरह से आपने बता दिया लखनऊ का मौसम लाजवाब है, मुझे लगता है कि कुछ ही वक्त में हम आसपास के जो लोग हैं वहाँ उस शहर का भी मौसम लाजवाब होने वाला है, क्योंकि ये मौसम जो है वो राजधानी से फ़िलहाल चल चुका है, जो बहुत ही खूबसूरत है। राइट, तो चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल अब चलते हैं अपने अगले म्यूज़िकल ट्रैक की तरफ और आप एंजॉय करने वाले हैं आज ज़बरदस्त सॉन्ग्स, क्योंकि आज है ट्यूसडे मॉर्निंग शो विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

एक के बाद दो, फर्स्ट के बाद सेकेंड, वन के बाद टू, यानी काउंटिंग शुरू हो चुकी है जून की। नानी के घर जा रहे हैं क्या आप? फिलहाल कुछ लोग तो घूम रहे होंगे राजस्थान की गर्मी में भी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको हम ये नहीं कहते कि आप राजस्थान की गर्मी में घूमिए, आप तो बस नानी के घर जाइए जहाँ पे आपको दशहरी आम मिल जाएंगे। सो भाई आम वही जो चुरा चुरा करके हम लोग रखते थे अपने आसपास, और बाल्टी से लेकर के मग्गे तक में अपना आम जो है वो बड़े ही अधिकार के साथ रख लिया करते थे। सो फिलहाल ये अधिकार वापस से आपको मिल ही जाने वाला है, क्योंकि ये चल रहा है जून और आज है 2nd of June। सो फिलहाल इस मंथ के क्या हैं प्लान्स, ये भी आप ज़रा एक बार खुद को याद दिला दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है खुद को कुछ चीज़ें याद दिलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वापस से आते हैं तो तमाम ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए, आपके लिए ज़रूरी है, वो हम ज़रूर पहुंचाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अरमान साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत सा म्यूजिकल ट्रैक।

कुशवाहा जी आ गई हैं और आपने बताया कि हाय गुड मॉर्निंग सर, टुडे इज़ माय हस्बैंड्स बर्थडे, मिस्टर सुरेंद्र कुशवाहा जी का बर्थडे है और एक बर्थडे सॉन्ग की आपने डिमांड की, ऑफ कोर्स। सो ये बर्थडे सॉन्ग जो है ये आपकी तरफ से, यानी रेखा कुशवाहा जी की तरफ से, आपके हस्बैंड मिस्टर सुरेंद्र कुशवाहा जी को डेडिकेटेड है। साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM का पूरा पूरा परिवार आप लोगों के स्वास्थ्य की कामना करता है और साथ ही साथ बहुत सारी खुशियों का तोहफा भी देता है 89.6 FM का ये पूरा परिवार। सो एक बार वापस से बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद मिस्टर सुरेंद्र कुशवाहा जी आपको। 89.6 FM मिलकर मना रहा है आज आपका बर्थडे।

हाँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर सुरेंद्र कुशवाहा जी। आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे पहला थैंक्स तो आपको अपनी वाइफ रेखा कुशवाहा जी को बोलना चाहिए भाई,

उन्होंने आज कोई फर्ज नहीं निभाया, बस मारे खुशी के हमसे साझा किया है आपके बर्थडे को। हम सारे इतने सारे लोगों ने मिलकर के सेलिब्रेट किया है, और क्योंकि हमारे भी ये खुशी का दिन होता है कि जब हमारे परिवार के किसी सदस्य का बर्थडे होता है। और 89.6 FM तो भाई इस मामले में बड़ा ही ब्लेस्ड है। कभी ना कभी ही हमेशा ऐसा होता रहता है कि भाई बर्थडे हम सेलिब्रेट करते रहते हैं, तो चलिए आज आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया है। एंड स्पेशल थैंक्स टू मिसेस रेखा कुशवाहा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और धर्मेंद्र जी ने, आशु मिश्र जी ने भी आपको विशेष भेज दी हैं, बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा तोहफा। खोल के देखिएगा क्या है। सो चलिए फिलहाल इस खूबसूरत से गाने को सुनते हैं, वापस से आके बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फ्रिज में आप रखते हैं लेकिन रखने लायक बिल्कुल भी नहीं है, और आप अभी तक बेझिझक उस चीज़ को रखते चले आ रहे थे, लेकिन अगर अब रखा तो भाई आप हो सकते हैं बीमार, इसलिए जान लेना बहुत ज़्यादा है ज़रूरी।

0: सुबह ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए लेकिन हम लगातार रखते चले आ रहे हैं, क्योंकि हम उससे अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। सो ऐसा क्या है जिसको हमको जानना होगा और फ्रिज में रखने से अब बचना होगा? कुछ चीजें तो ऐसी है जिसको आप आंख बंद करके इसको रख दिया करते थे, हालांकि ये रखने लायक चीज बिल्कुल भी नहीं है फ्रिज में। सो आइए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको फ्रिज में नहीं रखना होता है लेकिन हम रख रहे हैं, ये बताते हैं आपकी मॉर्निंग जॉक का अर्जुन दान, क्योंकि हमें आपकी सेहत की फिक्र है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Arjun Khan.

हाँ जी, तो भाई चलिए बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि हर खाने की चीज़ को फ्रिज में रखना चाहिए नहीं। ये ना सिर्फ आपके टेस्ट और टेक्सचर को ख़राब कर देता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी ये सही नहीं होता है। लेकिन बात ये आती है कि भाई अब इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको बताया जाए कि हम फ्रिज में ना रखें, क्योंकि हम तो उठा करके सारी चीज़ें फ्रिज में ही भर देते हैं। क्या सब्जी हो, क्या फल हो, क्या कोई और फूड आइटम्स हो, इडेबल आइटम्स हो, हम सारी की सारी चीज़ें रख देते हैं फ्रिज में, क्योंकि हमको लगता है भाई इसमें ही हिफाजत से रखा रहेगा और महफूज रहेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या सच में? नहीं। सबसे पहली चीज़ जिसको हम आंख बंद करके रख देते हैं वो है ब्रेड। जी हाँ, ब्रेड को कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में रखने से ब्रेड जल्दी सूख जाती है और कड़ी भी हो जाती है। इसलिए ब्रेड को फ्रेश रखना है तो फ्रिज के बाहर ही आप स्टोर कर सकते हैं। अगला नंबर किसका है? अगला जो नंबर है वो है शहद का। अक्सर देखा गया है कई बार लोग उठा करके शहद रख देते हैं, हालांकि कहा यह जाता है कि भाई शहद तो हजारों साल खराब नहीं होता है। शहद को फ्रिज में कभी नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में रखने से ये जम जाता है और इसके जो क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। सो शहद को हमेशा रूम टेम्परेचर पर किसी एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करके रखना चाहिए, यानी आप अपने रूम में रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख करके जो रूम का टेम्परेचर होगा उस पे आप रख सकते हैं। इसलिए शहद को नहीं रखना चाहिए फ्रिज में, क्योंकि उसके क्रिस्टल्स फिर जमने लग जाते हैं। एंड इसके बाद आता है नंबर तरबूज और खरबूजा। हाँ, मुझे लगा ही था कि आप इसको सोच के कहेंगे अरे इसको तो कैसे हम नहीं रखें, पर ये भी नहीं रखना चाहिए। बेशक मुझे पता था, क्योंकि हमारे घर में खुद ही कई बार रखा गया है। तरबूज और खरबूजे को भी फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। कई रिसर्च के हिसाब से अगर बताएं तो रूम टेम्परेचर पर रखने से इसमें जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से बनते हैं। फ्रिज में रखने से इनका टेस्ट, टेक्सचर और रंग तीनों फीके पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप तरबूज और खरबूज रखते हैं तो ये भी जो है, जो इसका नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये नहीं बन पाता है। लेकिन बाहर अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये बनता है। और साथ ही साथ फ्रिज में रखने से तरबूज हो चाहे खरबूजा हो, इसका टेस्ट हो, टेक्सचर हो या फिर रंग हो, ये तीनों ही फीके भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा केला, जी हाँ, सो फ्रिज में रखने से केला बाहर से जल्दी काला होने लगता है और फ्रिज के जो ठंडे तापमान है इसकी वजह से पकने का जो प्रोसेस है वो भी अफेक्टेड होता है, जिससे होता ये है कि इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही ख़राब हो सकता है। सो अगर आप केले को भी फ्रिज में रखते हैं तो ये भी गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना? तो फ्रिज में केला नहीं रखना है। अगला नंबर है, बहुत ही रॉयल लगता है सुनने में, वो है कॉफ़ी। जी हाँ, कॉफ़ी भी आप कहते हैं अरे यार कॉफ़ी को इतने दिन बाहर कैसे, लेकिन सच बताया तो कॉफ़ी एक तरह का चूंकि नेचुरल डिओडोराइज़र है और ये फ्रिज के आसपास सारी जो इसकी स्मेल है और नमी को सोख लेती है, इससे कॉफ़ी का पूरा फ्लेवर और खुशबू जो है वो चेंज हो सकता है। इसलिए अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ये अपने रिस्क पे आप रखते हैं, राइट? प्याज, प्याज तो वैसे भी हालांकि और कोई नहीं रखता, लेकिन बता दें आपको कि प्याज फ्रिज के मॉइस्चर यानी नमी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है और ख़राब हो जाती है। इससे प्याज में जल्दी फफूंदी भी लग सकती है और प्याज को हमेशा सूखी और खुली जगह पे स्टोर करना सही माना जाता है। यानी अगर आप अपने कहीं पे भी खुले में रख रहे हैं तो वो जगह सूखी होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है वहाँ हवा हवा लगती रहे, सूखा रहे, वहाँ पे ऐसा सही माना जाता है स्टोर करना। लहसुन, लहसुन भी आप नहीं रखते हैं फ्रिज में, लेकिन अगर रखते हैं तो ये एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में रखने से ये जल्दी अंकुरित होने लगती है, जिससे इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं। अब जो नंबर आ रहा है वो बहुत ही कॉमन है, जिसको हम बहुत आराम से रखते थे, और वो है टमाटर। आह टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बेस्वाद। सो ये बेस्वाद तब हो सकते हैं जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे। ज़्यादातर घरों में टमाटर जो है फ्रिज में ही स्टोर किए जाते हैं, जो कि गलत माना जाता है। फ्रिज में रखने से टमाटर का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ख़राब हो सकते हैं, इसलिए इन्हें रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना ही सही होता है। हमने कहा था ना कि टमाटर ऐसा है जो हर कोई रख लेता है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल,
ऑलिव ऑयल को फ्रिज में रखने से वो गाढ़ा करके जम सकता है, इससे उसके क्रिस्टल्स बनने लगते हैं जिस वजह से इसका टेक्सचर पूरी तरह बदल सकता है, इसे इस्तेमाल करने में दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए ऑलिव ऑयल को भी ना रखें। सो हमने 10 कौन सी चीज़ बता दी, ऑलिव ऑयल बताया नहीं रखना चाहिए, टमाटर भी, प्याज, लहसुन, केला, कॉफ़ी, शहद, तरबूज और खरबूजा और साथ ही ब्रेड, ये सारी चीज़ें फ्रिज में नहीं स्टोर करना चाहिए, इसको जितना नेचुरल हो सके रखें। और वैसे भी ब्रेड्स वगैरह ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ये कई सारी चीज़ें, इनको ज़्यादा दिन रखना बेकार ही होता है, मतलब आप अगर ताज़ा लाएं तो आप ताज़ा ही यूज़ करें ज़्यादा अच्छा है, एक साथ बहुत चीज़ों को ला करके स्टोर करने की कोशिश मत करें जिसको आप रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये प्रॉब्लम ही करता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हमको लगता है कि हम वही खा रहे हैं बट नहीं, तब तक उसके गुण चेंज हो चुके होते हैं, जिस फायदे के लिए जिस पर्पज़ से खा रहे होते हैं वो नहीं मिलता है और यही प्रॉब्लम हो जाती है। सो चलिए आपको बता दी हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको फ्रिज में रख करके स्टोर नहीं किया जाना चाहिए, और अगर करते हैं तो उससे उसका टेस्ट, टेक्स्चर और रंग, टेस्ट इसके अलावा स्मेल, ये सब अफेक्टेड हो सकती है। सो आइंदा के लिए ख्याल ज़रूर रखिएगा और अच्छे से ध्यान रखते हैं खाते ना, ताकि हेल्दी भी रहे, टेस्ट भी मिले, फ्लेवर भी मिले और स्मेल भी मिले।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
5: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
8: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
9: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
10: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
11: मतलब?
10: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
12: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
13: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: बेटा राजू, क्या तुम्हें पता है कि एलोवेरा क्या होता है?
1: हाँ मैडम जी, जब एक पंजाबी विस्की का पैग अपने बड़े भाई को देता है तो कहता है एलोवेरा चीयर्स।

0: चलिए भाई आपको ले चलते हैं सिटी के अपडेट की तरफ, यानी गोंडा में क्या कुछ चल रहा है इसको बताने के लिए, और उसके बाद फिर वापस आएंगे और बताएंगे कल यानी 1 जून से क्या कुछ महंगा हुआ है जो होता है रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे से इस्तेमाल। जी हाँ, काफी कुछ के रेट बढ़ चुके हैं जिसको आपके लिए जानना जरूरी है, यानी आपको अपने बजट पे अब ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। इसके अलावा गोंडा में क्या कुछ चल रहा है जो कि हम जानेंगे सिटी अपडेट्स में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite, RJ Khan. RJ Khan.

सो भाई सिटी अपडेट की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि डॉल्फिन को अब नदी में सुरक्षित रखने के लिए निगरानी की जा रही है। सो नहर से रेस्क्यू करके राप्ती नदी में छोड़ी गई गंगा डॉल्फिन पर वन विभाग की टीम लगातार नज़र बनाए हुए है। रेस्क्यू के बाद भी विभाग ने कर्मचारियों को नदी के किनारे सतर्क रहने और डॉल्फिन की नियमित रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं डीएफओ अनुराग प्रियदर्शी का कहना है कि किसी भी रेस्क्यू का असली सफलता सिर्फ जीव को बचाने तक मौजूद नहीं होता, बल्कि उसे प्राकृतिक आवास में सुरक्षित बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसी वजह से राप्ती के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। विभाग की पूरी टीम सक्रिय है। डॉल्फिन की सुरक्षा से जुड़ी हर सूचना पर नज़र रखी जा रही है। वहीं इस अभियान में अहम भूमिका निभाने वाली संस्था TSA भी लगातार जो है वो सहयोग कर रही है। अब तक 45 डॉल्फिन्स को मिला है नया जीवन। जी हाँ, नई जिंदगी दी गई है 45 डॉल्फिन्स को। सो TSA ने अब तक कुल 45 डॉल्फिन्स का रेस्क्यू कर उन्हें नया जीवन दिया है। अगर हम एनुअल डेटा पर नज़र डालें तो 2013 में एक डॉल्फिन का रेस्क्यू किया गया था, 2015 में ये 7 हो गया, 16 में 4, 17 में और 18 में एक एक डॉल्फिन को बचाया गया, 19 में 4, 20 में 9, 21 में और 22 में एक एक, 2023 में 2, 24 में 2 और 25 में 8 डॉल्फिन्स का रेस्क्यू किया गया, 26 में अब तक 4 डॉल्फिन्स को जो है वो सुरक्षित निकाला गया है। और इस तरह से ज़िलेवार अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन बाराबंकी में बचाई गई, लखनऊ में 9, बहराइच में 4, अमेठी में 3, गोंडा और श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और रायबरेली में दो दो डॉल्फिन्स को सुरक्षित बचाया गया है, जबकि जौनपुर में एक डॉल्फिन को बचाया गया है। सो इस तरह से ये संस्था और विभाग मिल करके काम कर रहा है। अब इसके बाद आते हैं, सो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं बिजली को लेकर के प्रदर्शन भी हो रहे हैं और ट्रांसफार्मर चूंकि फूकने से आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसको लेकर के भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खोरहांसा और उमरिया उपकेंद्र पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। फिलहाल कहीं ना कहीं बिजली आपूर्ति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, क्योंकि बिजली आपूर्ति उस तरह से नहीं हो पा रही है। इसके अलावा आपको अब बता दें कि JEE एडवांस में हरीश और दिव्यांश गोंडा से जो हैं इन्होंने ऑफ कोर्स क्वालिफाई किया है। सो देश की ज़बरदस्त प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी JEE एडवांस 2026 इसका रिज़ल्ट आउट हो गया है और ज़िले में जो है वो सफलता हासिल की है। करनैलगंज के कप्तानपुरवा के रहने वाले हरीश मिश्र ने अच्छा परफॉर्म करते हुए ऑल इंडिया रैंक 3,838 रैंक हासिल की है और हरीश ने कहा कि शुरू से ही इनको लक्ष्य निर्धारित करके तैयारी की और उसका परिणाम आज देखने को मिला। इसके अलावा आपको बता दें दिव्यांश भी ऑफ कोर्स इसमें इन्होंने सफलता हासिल की है, यानी JEE एडवांस में ये भी गोंडा के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें अगली जो अपडेट है वो तालाबों से जुड़ी हुई है, यानी 100 तालाब होंगे प्लास्टिक मुक्त और 16 पर काम शुरू भी कर दिया गया है। ज़िले में जल संरक्षण और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने की उम्मीद से मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी अभियान पर अब जो कि इसको किया जा रहा है। अभियान के तहत ज़िले में 100 तालाबों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले चरण में सभी 16 विकास खंडों से एक एक तालाब को चयन करके काम शुरू किया गया है। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के हिसाब से जो चयनित तालाब हैं उसके संरक्षण और सुंदरीकरण के लिए प्लास्टिक कचरे से मुक्त के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार की गई है। विकास खंडों में तैनात कंसल्टिंग इंजीनियर्स DPR तैयार करके जो संबंधित ग्राम सचिव हैं प्रशासक हैं इनको उपलब्ध करा दी गई, इसके बेस पर काम शुरू हो गया है। और ज़िला समन्वय तकनीकी बताया कि भाई परसपुर ब्लॉक के खरगुपुर वेटलैंड निर्माण का कार्य चल रहा है। नवाबगंज के हरदवा, मनकापुर के मिश्रौलिया, गोसाई और करनैलगंज के दिनारी सहित कई चयनित तालाबों की सफाई कराई जा रही है। और इसमें बताया कि परियोजना के अंतर्गत वेटलैंड फिल्टर चैम्बर, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, प्लास्टिक कचरे का निस्तारण के लिए RB डस्टबिन,
स्टैब्लिश किए जाएंगे। इससे तालाबों में गंदे पानी और प्लास्टिक कचरे के जो प्रवेश हैं उनको रोका जाएगा। सो ये तालाबों से जुड़ी अपडेट थी जिस पर हमने बताया कि भाई अब काम शुरू हो गया है। इसके अलावा चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है सोनबरसा मोतीगंज मुख्य मार्ग से कपसा कसंडा संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए आज शिलान्यास होने वाला है, जिसकी अपडेट हमने आप तक पहुंचा दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि भाई जो भी ज़िला पंचायत सभागार में पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया गया है 15 मेधावियों का सम्मान किया गया है। सो फिलहाल ये जो मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी उनको दिया गया है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये कहीं ना कहीं सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और अगली जो अपडेट आ रही है वो ओपीडी में बढ़ते डायरिया और जो सांस के मरीज़ हैं इनको लेकर के आ रही है। सो ये बड़ी प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं बताया जा रहा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि भाई बारिश के बाद जो है, अगर हम कल की बात करें सो कल की सुबह तेज़ धूप की वजह से लोग उमस भरी गर्मी में परेशान रहे और मौसम लगातार चेंज होता रहा। साथ ही साथ आपको हम बता देते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये बड़ी प्रॉब्लम है और इसको इससे बचा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत तेज़ी से डायरिया जो है वो फैल रहा है। सो इसमें आपको ख़ुद की हिफाजत करना ही चाहिए और करना भी होगा। सुबह ये रही कुछ ज़रूरी अपडेट्स जो कि हमने आपको बता दिया है, और आई होप कि ये आप तक पहुंच गई है। फिलहाल अब हम चलेंगे अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ और वापस से आएंगे। सुनाने के बाद बताते हैं कि कल यानी 1 जून से आपके रोज़मर्रा की कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो महंगी हुई हैं, और अब कहां कहां से सफ़र करना और यात्रा करना भी आपके लिए महंगा होने वाला है।

बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: जी, और फिलहाल जिस वादे के साथ गए थे कि भाई वापस से आएंगे, और आने के बाद बताते हैं कि आखिर किन किन चीज़ों के बारे में, यानी किन किन प्रोडक्ट्स के है बढ़ गए दाम। फिलहाल आपको जानना है ज़रूरी, क्योंकि आपके रोज़मर्रा की जिंदगी में ये काम जरूर आते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

सो प्रमुख डेयरी ब्रांड जो है मिल्मा MILMA दूध की कीमतों में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी फ़िलहाल कर दी है, यानी प्रति लीटर 4 रुपये बढ़ चुके हैं। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने अपने कई मॉडल्स के दाम में 30,000 रुपये तक बढ़ा दिए हैं और ह्यूंडई ने भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं 1 जून 2026 से। UPI से पैसे भेजने से पहले सामने वाले इंसान या फिर मर्चेंट के बैंक में दर्ज असली नाम दिखाई देगा, ये भी चेंज हुआ है। बड़े डिजिटल पेमेंट अब फिंगरप्रिंट या फेस ID जैसे एक्स्ट्रा सुरक्षा जांच होगी इसमें। इसके अलावा ट्रैक अपग्रेड के चलते कई ट्रेनों के रूट बदले हैं या रद्द हो सकते हैं। एयर इंडिया इंडिगो ने कुछ उड़ानें घटाई जिससे कि टिकट महंगे हो सकते हैं। बड़ी प्रॉपर्टी डील्स में पैन जो है वो ज़रूरी हो गया है, जबकि कुछ छोटे ट्रांजैक्शंस में ढील दी गई है। सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में अब सिर्फ लिस्टेड यानी ALMM पैनल ही लगेंगे जिससे कि दाम बढ़ेंगे। 10,000 से ज़्यादा टैक्स वाले देनदारी वालों को 15 जून तक एडवांस टैक्स की पहली

0: हाल हम उन चीज़ों को देखते हुए आगे चले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो बेसिक्स नीड हैं वो पहले होनी ज़रूरी है, जिसमें हम कोई भी खाने की बात कर ले, रहने की बात कर ले, या जो हम बिल्स भरते हैं, चाहे वो बिजली का हो या फिर हम रिचार्ज कराते हों अपने सेलफोन्स को, इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनसे काम हमारा चल रहा है, जिनसे हमारी दैनिक दिनचर्या हो रही है शुरू, उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी देना ज़्यादा ज़रूरी है। और फ़िलहाल 1 जून से जो भी चीज़ें बदली हुई हैं वो हमने अभी आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में बता दिया है। फ़िलहाल चलते हैं अगले गाने की तरफ, वापस से आएंगे। आने के बाद हम आपको ले चलने वाले हैं आपके चैट बॉक्स पर आए हुए मैसेजेस की तरफ, और जो कुछ आपने मैसेजेस लिखा है उसको भी हम आ करके बताने वाले हैं। फ़िलहाल आपने ट्यून किया है गोंडा FM 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान। और अब सीधे चलते हैं अगले म्यूजिकल ट्रैक की तरफ, वापस से आ करके आपके मैसेजेस की तरफ, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक RJ अदनान।
1: 1 2 3 4

0: हाँ जी, सो साथ ही साथ हमारे पास एक बहुत ही उम्दा सा कंटेंट भी आया है, यानी हम कंटेंट को बताएंगे, आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपसे विदा लेंगे। सो चलिए हम बताते हैं किसकी तरफ से आज क्या आया है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

श्रुति कीर्ति जी की तरफ से आया है कंटेंट, यानी कविता आई है जिस पे आपने कविता का उन्वान दिया है सुख का आंचल। क्या है आखिर ये सुख का आंचल, आइए बताते हैं आपको। आप लिखती हैं, कितना अच्छा माँ का आंचल, लगता है खुशियों का बादल। कितना अच्छा माँ का आंचल, लगता है खुशियों का बादल। मोती सा है प्यार बरसाता, ममता का रस सदा टपकाता। जब माँ हमसे दूर रहें, दुख की गर्मी का ताप बढ़े। माँ जब जब दुलारती है, सुखी सुख बरसाती है। सहती है दुख कष्ट मगर, देख हमें मुस्काती है। क्या बात है, बहुत ही प्यारा लिखा है श्रुति कीर्ति जी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी गोंडा से ही बिलोंग करती हैं और आपकी कई सारी कविताएं जो है वो बच्चों के बुक्स में छपी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्पेशल थैंक्स टू आशु मिश्र जी, आपकी सिस्टर, जिन्होंने आपका ये कंटेंट हम तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके साथ ही साथ, चूँकि आप लोगों के चैट बॉक्स पर मैसेजेस भी आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों ने मिलकर के रेखा कुशवाहा जी के हस्बैंड मिस्टर सुरेंद्र कुशवाहा जी को उनके बर्थडे की मुबारकबाद दी। और एक बार वापस से जाने से पहले हम बहुत बहुत मुबारकबाद प्रेषित करते हैं मिस्टर सुरेंद्र कुशवाहा जी। एंड इसके बाद जो है धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास से आपका स्वागत है और आपने भी विशेष भेजी हैं, साथ ही साथ आपको सॉन्ग पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरू सोनी मौजूद हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नगेश्वर धाकड़, वेरी गुड मॉर्निंग। मिश्रा ऑप्टिकल से अजय जी मौजूद हैं, थैंक यू सो मच टू यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई होप कि आज का ये जो शो था आप लोगों ने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। फ़िलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, वापस से मिलेंगे आपसे आपके मॉर्निंग वाले शो में। और आप बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के बाद अब बैक टू बैक सॉन्ग्स एंजॉय करते रहिए अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त और पीस।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: समता, ओ समता, अरे कुछ तो बोलो, ये क्यों गोल गप्पे की तरह मुंह फुलाकर बैठी हो? देखो कितना सुंदर रास्ता है, और बारिश के बाद पेड़ कितने सुंदर लगते हैं, और कितनी हरियाली है।
9: अरे आज समता दी का मौन व्रत है, उन्होंने बोला है कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा तभी ये बात करेंगी।
10: बना लो मजाक, खूब बना लो, हमको सब पता है कि सबकी मिली भगत है, सबको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस हमको बताया जा रहा है कि गीता दीदी सरप्राइज दे रही है। ठीक है, कर लो मजाक।
11: अरे मेरी मुन्नी, रूठो ना। अरे भाई रूठो नहीं समता, बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, तब पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब तक किरण, हमारी समता रानी को एक प्यारा सा लोकगीत सुनाओ, देखना अभी गुस्सा उतर जाएगा इसका।

0: देखो देखो हमारी समता दी के चेहरे पर हंसी आ गई। मुंह छिपाकर कैसे हंस रही हैं? अरे अब चेहरा दिखा भी दीजिए, ऐसे मुंह छिपा के तो नहीं हंसा जाता।
1: सही कहा आपने, आपके गीत इतने मजेदार होते ही हैं, जो लोक गीत होते हैं तो हंसी तो आएगी ही। और एक बात, इतने सुंदर गीत आप लाती कहाँ से हैं?
2: यह गांव गांव घूमने और वहाँ के सुंदर शीतल वातावरण से मन में भाव आ जाते हैं। गांव की मिट्टी इतनी मोहक होती है, गांव की गूंज की टीम के कारण एक बार फिर से गांव से जुड़ने का मौका जो मिला है।
3: सही कह रही हो किरण, गांव की गूंज की हमारी टीम की ये कोशिश रहती है कि आप सब चाहे जहां पर भी जाकर बस गए हो अपनी किसी भी मजबूरी के कारण, पर अपने गांव की मिट्टी से जुड़े रहिए, उसे ना भूलिए।
1: अपने बच्चों को और अपने परिवार को कोशिश कीजिए कि तीज त्योहार में गांव लाइए, वहां के संस्कारों से, वहां के लोगों से मिलवाइए। देखिएगा आपके इस छोटे से प्रयास से आपके बच्चों के व्यक्तित्व का कितना विकास होगा।
0: आप लोग जब वापस अपनी मिट्टी, अपने गांव से जुड़ेंगे, तभी जानेंगे कि गांव की ताजी हवा और बिना प्रदूषित पानी में कितना फायदा होता है।
2: हम ये जरूर मानते हैं कि गांव में आपको कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, पर आप हमसे शेयर करिए, हमारी गांव की गूंज की पूरी टीम आपके गांव को और सुंदर बनाने में सहयोग करेगी।
3: और अगर आपका गांव बहुत सुंदर है तो इसकी बातें हमसे साझा कीजिए, उसकी फोटो हमें साझा कीजिए और हम उसे दूसरे गांव को सुंदर बनाने में आपके सुझाव का उपयोग करेंगे।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6393316429। एक बार फिर से नोट कर लें, 6393316429। और मेल आईडी है gyanasthaliradio@gmail.com। पर अपनी बात हमें बताइएगा जरूर।
0: किरण दी, चलिए आपके प्यारे से लोकगीत के साथ सबसे अपील करते हैं, आपके लोकगीत लोगों के दिल तक जाते हैं।
4: हमरे तो, अरे हमरे तो

0: ये हम कहाँ आ गए? यह पेड़ कितना सुंदर है, जड़ें कितनी गहरी हैं, इसकी छाया कितनी ठंडी है। जया, एक अच्छी सी फोटो लेना। थोड़ा रुको, हम और जड़ों के अंदर चले जाएं।
1: समता, यह सेमल का वृक्ष है और गांव वाले मानते हैं कि इस पेड़ की उम्र पर दादा के उम्र के बराबर है। देखो इस पेड़ को। जब यहाँ की डीएम नेहा शर्मा जी ने देखा तो इसे संरक्षित कर दिया, तभी चारों तरफ से घेर दिया गया है।
2: अरे जरा ध्यान से इसकी गोल गोल जड़े तो देखिए, और जड़ों के बीच में कितनी जगह है। कहते हैं कि 25 मीटर में इसकी गोलाई है, और ये भी बताते हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें खूब सारे लाल सुर्ख फूल निकलते हैं, और फिर 4-5 किलोमीटर इसकी रुई उड़कर जाती है। पर इधर 4-5 सालों से इसमें फूल आने बंद हो गए हैं।
3: देखिए कितने लोग आ गए हमारी गांव की गूंज की टीम को देखकर। चलिए सब चलते हैं, पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते हैं, कितनी ठंडी हवा आ रही है।
0: देवी प्रसाद पांडे इसी गांव के हैं, बता रहे हैं दूर दूर से लोग आकर कह रहे हैं कि पेड़ पर सेल्फी लेते हैं। सरकार 100 साल से अधिक उम्र के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित करती है, जिसमें यह हमारे गोंडा का विरासत वृक्ष भी है।
3: किरण दी हो और ढोलक ना आए, यह तो हो ही नहीं सकता। देखिए कितने लोग आ गए और खट्टे खट्टे करौंदे भी लेकर आए हैं। पर किरण दी, ये हमको आपके गाने के बाद ही मिलेगा।
4: ससरिया बड़ी चंचल चमचा से मारे, ससरिया बड़ी चंचल।

0: किरण एक और हो जाए। देखो ये लोग हमारे लिए करौंदे का खट्टा मीठा अचार भी लाए हैं। देखो कंडे में बिरजू भैया खेत से लाए हुए ताजे भुट्टो को भी सेकने में लगे हुए हैं।
1: अरे तो हाँ।

0: जानते हो तुम लोग, यह विरासत का पेड़ है। हमारे इतिहास और संस्कृति गवाह होते हैं और अपनी सुंदरता के कारण टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं, इसीलिए तो दूर दूर से लोग देखने आते हैं।
1: हाँ देखो, पास में टेटी नदी है, वहाँ पुराना रामपुर किला है जिसे लोग देखते हैं, बोटिंग करते हैं और पुराना शिव जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन भी करते हैं।
2: ओ, अब समझे, इससे नाव वाले की, फूल वालों की, भुट्टे बेचने वालों की आमदनी होती होगी और इस गांव के बारे में लोग जानने लगे हैं, या सब इस सेमल के वृक्ष के कारण है।
3: अरे भाई, ये तो देखो कि हमारी जया कितनी सयानी जैसी बातें कर रही है। देखो यहाँ की सब्जियों की दुकानें कितनी सारी लगी हैं और रामपुर के बाजार में लोग कितनी सब्जियां खरीद रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विरासत के पेड़ों का पर्यावरण में बहुत योगदान है।
1: किरण दीदी, हम एक बात बताएंगे कि ये भुट्टा खत्म करने तक एक किरण दीदी का गीत तो हो जाना चाहिए।

0: विरासत के वृक्ष बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वायुमंडल को साफ करते हैं, ढेर सारी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। गांव के लोग बता रहे हैं, ढेरों पक्षियों को यहां घोंसला बनाते हुए देखा है और बहुत सारे चमगादड़ों का घर भी। सोचो कितने लोगों का घर और कितना खाना दे रहा है यह सेमल का पेड़।
1: सही कह रही हो समता। और एक बात तुम लोगों ने देखी है क्या, इसकी जड़ें कितनी विशाल हैं, इसीलिए यह कितनी मिट्टी को बांधे हुए है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है।
2: पर हमारे शहरों में तो ऐसा कोई विशाल वृक्ष है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को बड़े घर, हाईवे, मॉल चाहिए, इसीलिए हम पेड़ काटते जाते हैं, किसी भी पेड़ को बड़ा ही नहीं होने देते हैं।
0: इतने सालों तक इन लोगों ने इस सेमल के पेड़ की रक्षा की और हम सब शहरी लोग तो बोंजार लगाते हैं और शान से बताते हैं कि यह 10 साल पुराना है और यह 8 साल।
2: समता दी, एक मजेदार बात और है, हर साल हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, फोटो फेसबुक पर डालते हैं और फिर पलट कर नहीं देखते कि वह पेड़ कहाँ गया, बच गया तो उसकी किस्मत।
1: इतने सब दुखी दुखी बातें क्यों करने लगे, कितनी अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं यहाँ से। और तुम लोगों को पता है सेमल के पेड़ को साइलेंट डॉक्टर भी कहते हैं। सेमल की छाल, त्वचा की झाइयां, मुहासे, काले धब्बे, खुजली, जलन सब दूर करते हैं। इसका उपयोग दस्त, अस्थमा, एक्जिमा, घावों को भरने में काम करते हैं।
3: सबसे विदा लेने से पहले क्या तुम लोगों ने कबीर दास का ये दोहा सुना है कि ये ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, और दिन दस के व्यवहार से झूठे रंग न भूल। मालूम है इसका मतलब क्या है, यानी कि मानव जीवन सेमल के फूल की ही तरह है। जिस तरह सेमल का फूल रुई बनकर सब जगह उड़ जाता है, मानव जीवन भी इसी प्रकार का क्षण भंगुर का है। इसीलिए इसे इस जीवन के झूठे रंग में रंग कर अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। समझे कि नहीं?

आज का सरप्राइज जिंदगी भर याद रहेगा। हम कभी भी मुंह नहीं फुलाएंगे, जहां कहिएगा चुपचाप चल देंगे। प्रॉमिस करते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कसम से। सब हंसते हुए।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: एक रात एक जंगल, और उस जंगल में चलता एक आदमी जिसे महसूस हो रहा है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। भागने की कोशिश और कोशिश नाकाम। अपने गांव तक दस्तक तो दे दी, लेकिन अभी तक कोई तो था जो पीछे चल रहा था। पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं। क्या हो जब आप किसी सुनसान रास्ते में हो, आपके शहर का, आपके मोहल्ले का हर एक इंसान, हर एक शख्स कहीं गया हो, और अब पूरा शहर खाली हो, शहर में सिर्फ एक इंसान हो, वो हो आप। और उस दौरान आपको लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है, वो भी तब जब आपको पता हो कि अफवाहें कुछ इस तरह से हैं कि गांव में एक दूर कहीं गुफे में, या फिर कहें तो गुफा के अंदर, एक शैतान रहता है जो लोगों को खा जाता है। क्या हालत होने वाली है आपकी, सोचिए। हेलो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने वाले कार्यक्रम क्या असली लाइफ में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति, और आप सुन रहे हैं 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। और ये जो बीच में आपने हेलो सुनी थी, कि किसी शैतान की नहीं, किसी दानव की नहीं, वो पीछे पड़ा कोई था नहीं, ये हमारी को होस्ट है जिनका नाम है संध्या, जो सस्पेंस डालने की कोशिश कर रही थी।
1: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी होस्ट संध्या। आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, और हमारे साथ मौजूद है हमारी मैम आरजे उन्नति मैम, और हमारे एक को होस्ट और हैं, उनका नाम है
0: ऐसे नहीं बताया करते। जब हम सस्पेंस वाले शो में बैठे हैं तो इतनी जल्दी सारे सस्पेंस क्यों खोल रहे हो भैया?
1: अच्छा मैम,
0: लेट्स सी हूज देयर। नॉक नॉक।
1: एस, कौन है?
0: मैं हूँ। एंड ये सवाल जो आता है ना, ये हर एक हॉरर फिल्म में पूछा जाता है। जैसे कोई नॉक नॉक करता है, वो आके पूछते हैं हाँ कौन है, जैसे कि पीछे से कोई बोलने वाला है, मैं हूँ किचन में मैगी या चाय बना रहा हूँ, आप शामिल होंगे मेरे साथ?
1: शामिल तो होना चाहेंगे पर डर के साथ, क्योंकि यहाँ बात हो रही है हॉरर बात की।
0: और अगर ये शामिल होने का जो सिलसिला है वो कुछ इस आवाज में आए कि दुर्गाष्टमी दुर्गाष्टमी तो क्या होगा?
1: मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो जाऊंगी।
0: फिलहाल हम आपको बता दें भाई, आज की जो हमारी कहानी है वो है काफी ज्यादा डरावनी, लेकिन सच बात ये है भैया कि ये है रियल स्टोरी। कोई ऐसा इंसान जिसने फेस किया है कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से आज इतिहास में उसका नाम है, और उन्हें हम कहते हैं, लोगों को आपने प्यार से कहते सुना होगा, लेकिन इनकी कहानी दर्द के साथ है, और नाम है मेल्टिंग मैन, यानी कि पिघलता हुआ आदमी। क्यों, किस लिए, काहे पिघल रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। यूं तो आप भी किसी की बातों पर, किसी की मुस्कुराहट पर पिघल जाते हैं, बट इनके शरीर का अंग पिघल रहा था, क्या किसी बीमारी के कारण, या फिर सच में वो जो शैतान था उनके पीछे था, बताते हैं। लेकिन उससे पहले से छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं और उसके बाद हम आज की कहानी आपको सुनाते हैं। तब तक के लिए क्या आप एक्साइटेड हैं आज की स्टोरी सुनने के लिए, अपने चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मैं हूं आपकी आरजी नदी और आप सुन रहे हैं ज्ञानासली लाइव। एंजॉय कीजिए इस गाने को जो हमने बीच में ही रोका था, मुस्कुराने की वशा तुम हो। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: राज से पर्दा उठाएंगे क्योंकि आप सुन रहे हैं राज फिल्म का गाना आपके प्यार में हम संवरने लगे। अलका जी की आवाज और ऑफ कोर्स उस वक्त के सबसे खूबसूरत गानों में से एक। हालांकि कुछ गाने होते हैं जो देखने के लिए नहीं सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं और इनमें से ही एक गाना आप एंजॉय भी कर रहे थे।
1: मैम ये 90s का गाना सच में बहुत अच्छा होता है।
0: एक्चुअली जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ना और आप गानों में पीछे चलती चली जाएंगी।
1: लेकिन हाँ ये बात है, पहले के गानों में उनका मतलब भी पता चलता था लेकिन अब के गाने में तो ना रूट का पता ना उनका वो पता है कि क्या है।
0: बात ये है जब गाने लिखे जाते थे तो उसमें पहले जज्बात होते थे और क्योंकि अब यूथ को म्यूजिक और बीट चाहिए तो फिर उसकी डिमांड पर है।
1: हाँ हाँ ये भी वैसे ही बात, लेकिन ये सब गाने सुन लो तो बात ही अलग होगी।
0: अगर जज्बात की बात करोगे तो 90s और 80s में जाओगे और अगर आपको म्यूजिक पार्टी और चिल आउट करना है तो फिर आप 2000 की तरफ आ जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: फिलहाल आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव। एक बार आप सभी का वापस इस्तकबाल करते हैं, वापस से स्वागत करते हैं आपके अपने वाले प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट सुहानी एन संध्या।
2: हेलो एवरीवन, मैं अब आई हूं। हेलो एवरीवन, मैं अब आई हूं।
0: और आप पहले कहां थी जो अब आई हैं?
2: नहीं, मैंने नाम अब बताया है ना।
0: ऑल राइट, फिलहाल हमने आपसे एक छोटा सा इंट्रो तो दे ही दिया था कि आज की कहानी होने वाली है कैसे ऐसे महाशय के ऊपर जिनका शरीर पिघल रहा था। लेकिन क्यों और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी तो मैं आपको बता दें, आपको ये कहानी जानने के लिए जाना पड़ेगा ब्राज़ील। तो अपने अपने पासपोर्ट वीज़ा तैयार कर लीजिए क्योंकि हम आपको इस प्लेन से लेकर चलेंगे सीधे ब्राज़ील और वहाँ पर उतारेंगे एक ऐसे गांव में जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ गाँव था। पिछड़े हुए का मतलब उस गाँव में सिविलाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, घर पक्के नहीं थे, मकान पक्के नहीं थे, सड़कें पक्की नहीं थी, कहीं भी नालियां नहीं बनी थी। लोग साफ पानी के नाम पर सिर्फ नदियों में जाकर पानी निकालने का काम करते थे और वहां से वो पानी लेकर आते थे। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें भी एक्साइटेड कर रही थी। कोई गेस कर सकता है क्या?
1: क्या
0: सोचो, ऐसी क्या चीज हो सकती है जिससे कोई इंसान एक्साइटेड हो रहा हो?
2: उस नदी में साफ पानी आता रहा होगा।
0: वाह, इतना अच्छा गेस आप कर कैसे लेती हैं?
1: नहीं, कुछ और बात रही हूँ
0: भाई। अब हमारे को-होस्ट का गैसिंग को छोड़कर मुझे लगता है लिसनर्स को गैस करने दीजिए कि वो बता पाएंगे क्या कि उस ऐसा क्या हो रहा था कि वो सभी लोग इतने एक्साइटेड थे। लेकिन एक शख्स था जो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था, उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था ये सब बकवास है, पैसे की बर्बादी, वक्त की बर्बादी, और तो और मैं यहाँ रह कर खेती बाड़ी करूँगा, मछलियाँ पकड़ूँगा। और उनके दोस्त जो उनसे कुछ ही दूर एक और गांव में रह रहे थे, उनका भी ख्याल सेम टू सेम था। जहां पूरा गांव एक्साइटेड था एक जगह पर जाने के लिए क्योंकि कुछ होने वाला था। आसपास के पड़ोसी सब एक्साइटेड थे, वहीं पर दो ऐसे लोग भी थे जो एक्साइटेड नहीं थे क्योंकि उन्हें पिछले 40 सालों से कभी एक्साइटमेंट हुई ही नहीं थी। अब उसके दोस्त की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन भाई साहब की जिनका नाम है जाऊ। जाऊ जो उनको कई बार लोग कहते हैं लेकिन शॉर्ट नेम है जाऊ। उनको एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं थी, उन्हें बचपन से कभी इस चीज़ की एक्साइटमेंट रही ही नहीं कि जब जब वो दिन आएगा जहां पर पूरा गांव जाएगा, पूरा शहर इकट्ठा होगा, वहां मैं भी जाऊं। लोगों को चीज़ें खरीदना था, बेचना था, मज़े करने थे, बट उनको लगता था कि ये सब वक्त की बर्बादी है। और इसी के कह चलते उनके 40 साल गुजर चुके थे, उनकी शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे भी हो चुके थे। और इस बार जब वो दिन आया, पूरा गांव एक्साइटेड था, सब अपने कपड़े पैक कर रहे थे कि फाइनली फाइनली वो दिन आया जहां हम जाकर शहर वालों के साथ एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे। उनकी बीवी बच्चे भी तैयार थे, सब ने अपना बैग पैक कर लिया था। बच्चे बहुत खुश थे कि हम ये खरीदेंगे, हम वो खिलौने खरीदेंगे, हम कपड़े खरीदेंगे, हम खाने की चीज़ें खरीदेंगे। वहीं पर वो बिल्कुल भी नहीं, वो सोच रहे थे जाने दो जाने दो, सबको जाने दो, मैं यही रह के मछली पकड़ूंगा।
2: एक ही दिन में अमीर बनेगा।
0: हाँ, और उनकी मोहतरमा, उनके बच्चे और वो पूरा गांव, वो निकल भी चुका था, पूरा गांव खाली हो चुका था। और अब जो एक चीज थी वो बची थी और उसको कहते हैं खामोशी और सन्नाटा, क्योंकि कोई था ही नहीं। अब आप ही सोचो, आपके गाँव में अगर 10 भी घर हैं और 10 घर में से 40 मेंबर हैं और 40 के 40 चले जाएं, सिर्फ एक आप बचे, तो वो गांव क्या आपको किसी भूतिया गांव से कम लगेगा?
1: नहीं बिल्कुल वही लगेगी, भूतिया जैसे। और फिर वो अकेला इंसान पागल ना हो जाए, मुझे डर लगता है।
2: मैम कभी कभी रात में जग जाओ सब सो रहे होते हैं तब भी यही वाला फील आता है।
0: और उस वक्त तो वो अकेले थे। उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया और उनसे कहा चलो भैया मछली पकड़ के लाते हैं। उनका दोस्त भी खुश कि हाँ मैं भी नहीं जा रहा हूँ, चलो मछली पकड़ते हैं पास की नदी में। उन्होंने अपनी बैलगाड़ी ली, घोड़ा गाड़ी ली, उस पर बैठे, सारा सामान लादा, अपना ताम झाम जो भी था उनके पास उन्होंने सब रख लिया, मछली पकड़ने का चारा। और जाते पहुँच गए एक खूबसूरत से रेन फॉरेस्ट में जहाँ पर बारिश होती थी। नेचर का बहुत अच्छा रूल था, यानी कि वहाँ पर प्रकृति राज कर रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट, तितलियों का उड़ना, न जाने कितने रंग बिरंगे कलर्स, और उनके बीच में पत्तों से गुजरती हवा और सूरज की धूप, साथ में नदी में बहता पानी और उन लहरों की आवाज़ जो किसी का भी मन मोह लेता था। अब ये वहाँ पहुँच तो गए थे मछली पकड़ने के लिए। धीरे धीरे शाम होती आई और शाम में उनके दोस्त ने कहा कि देखो यार सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है लेकिन रात होते होते ये जंगल बहुत डरावना प्लस बहुत ख़तरनाक हो जाता है, तो कोशिश करो रात होने से पहले यहाँ से निकल लिया जाए, नहीं तो जान पर बनाएगी। अब उन्हें भी पता थी कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो भाई दोनों अपनी उस घोड़े गाड़ी में बैठे और चल दिए। जितनी मछलियाँ पकड़ी उनको रखा, ताम झाम उठाया, अपना पूरा सामान समेटा और गाँव की तरफ वापस रुख कर लिया। गांव पहुंचे ही थे कि वहां से अब दो रास्ते जा रहे थे, एक रास्ता जो उसके गांव की तरफ आ रहा था, दूसरा रास्ता जो उसके दोस्त की गांव की तरफ जा रहा था। अब दोस्त की घोड़ा गाड़ी थी तो उसने उसको वहीं उतारा और कहा कि चल भाई ख्याल रखना, कल फिर मिलते हैं। इतना कह करके दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और वहां से निकल गए। शायद जाओ को पता भी नहीं था कि उसका अलविदा सच में अब अलविदा ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था उसे महसूस हो रहा था उसके पीछे कोई चल रहा है। पीछे पलट के वो देखता, उसे कोई नज़र नहीं आता, कोई दिखाई नहीं पड़ता। दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, महसूस हो रहा था कोई पीछे है, कोई है जो देख रहा है, कोई है जो पीछा कर रहा है, बट है कौन पता नहीं। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि भाई गाँव में बचपन से यही बात तो है, हमें इसी बात से तो बड़ा किया गया है। और वो बात है अंधविश्वास की, जिसमें लोग कहते थे कि पास की गुफा में एक शैतान रहता है, एक डीमन रहता है जो लोगों को खा जाता है, उसे जो भी अकेले दिख जाए वो उसके पीछे पड़ जाता है और तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसकी जान ना ले ले। रात के वक्त में वो निकलता है बाहर अपने शिकार के लिए और जो उसे दिखता है वही उसका शिकार बन जाता है। और इसी डर के साथ अब वो बहुत तेज़ी से अपने कदम चला रहा था, बहुत तेज़ चलते चलते चलते चलते जब उसे नहीं रहा गया तो उसने भागना शुरू कर दिया। वहाँ से भागते भागते उसे दूर अपना गांव नज़र आने लगा। उसे थोड़ी राहत मिली कि फाइनली गांव पहुँच के तो सब ठीक हो जाएगा, बट गांव में तो कोई था ही नहीं जो उसकी मदद कर सके। वो भागता रहा और सीधे भागकर अपने घर की तरफ पहुँचा। उसने गेट बंद किया और गेट से सट के खड़ा हो गया क्योंकि सांस फूल चुकी थी, सांस ले ही रहा था और उसके दिमाग में था कि क्या अब भी वो मेरे पीछे होगा, क्या अब भी वो आया होगा। और यही सोचकर उसने अपनी बाईं तरफ की खिड़की पर नज़र दौड़ाई और उसे लगा कि वो जो उसके पीछे था वो उसकी बाईं वाली खिड़की पर खड़ा है। वो देख रहा था पर उसे कोई दिख नहीं रहा था। कुछ ही वक्त बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता हुआ एक ब्लैक कलर का ब्लैंकेट ओढ़े हुए अपने उस घर से बाहर निकला, मदद के लिए चिल्ला रहा था, बट मदद करने वाला तो उस वक्त कोई था ही नहीं। फिर उसे याद आया कि पास में ही तो उसकी बहन भी रहती है, हो सकता है उसकी बहन ना गई हो। वो भागता जा रहा था, गिरता जा रहा था, भागता जा रहा था। उसे पता नहीं क्या हुआ, अंधेरे में कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था लेकिन उस ब्लैंकेट को ओढ़े हुए बस चिल्लाते हुए भाग रहा था। भागते भागते वो अपनी बहन के गाँव में पहुँचा और देखा कि वहाँ पर एक लैंप जल रहा है और लैंप जहाँ जल रहा है वो उसकी खुद की बहन का घर है। उसके अंदर हिम्मत ख़त्म होती जा रही थी, इसके बाद भी वो चलता गया और उसने अपनी बहन की गेट पर पहुंचकर बहुत ज़ोर से चिल्लाया। बहन जो घर के अंदर काम कर रही थी, खुशकिस्मती के साथ वो नहीं गई थी, वो डर गई कि जब गांव में कोई है नहीं तो चिल्ला कौन रहा है। वो डरते डरते खिड़की के पास आई, उसने खिड़की से देखा कि कोई है जो ब्लैंकेट में है, जिसके पैरों से बहुत सारा खून निकल रहा है। बहुत डरावना लग रहा है, देखने में तो उसके भाई जैसा है, बट क्या उसका भाई है, क्योंकि उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही। क्या वो गेट खोले या ना खोले, उसके दिमाग में अब सिर्फ यही दो थॉट्स थे। फिलहाल आप बताइए क्या हुआ होगा आगे, क्या आपने कुछ गेस किया अभी तक, और वो सब लोग कहाँ गए थे? अगर इसका जवाब आपके पास आ गया हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल आइए लेते छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए सुनते रहे ज्ञान असली लाइव अपनी आर्जुमती के साथ। स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: मुझे मैं तो सोच के परेशानी, या तो उसका कोई बहम है या कोई हार्मोनल चेंज उसके अंदर।
1: चलिए भाई, तो हम बता देते हैं। जब वो अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन ने कहा कि भाई ही तो है, खोलते हैं गेट, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेरे भाई जैसा लग रहा है और वो मदद के लिए पुकार रहा है। बहन ने गेट खोला, अपने बहन का फर्ज निभाया और उसने देखा कि उसका भाई कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? उसके कानों के पास, उसके मुंह के पास अपना कान लेकर गई और उसने कहा कि मुझे मुझे जलन हो रही है, मेरे अंदर सब कुछ जल रहा है। बहन को लगा कि हो सकता है घर में आग लग गई हो जिसकी वजह से ये जल रहा हो, तो लाओ इसके कपड़े ठीक करके इसकी दवा कर दूँ। कपड़े उठाए गए और उसने देखा कि कपड़े ठीक हैं, कपड़ों पे कोई निशान तक नहीं है जलने का, तो ये जल कहाँ रहा है? उसने कहा मेरे अंदर जल रहा है, मेरी पूरा शरीर जल रहा है। अब उसको समझ नहीं आया, एक आम इंसान नहीं समझ पाता है। उस वक्त खुशकिस्मती ये थी, खुशकिस्मती ये थी कि वहाँ पर डॉक्टर और पुलिस मौजूद थी, वो दोनों भी नहीं गए थे। उसकी बहन भाग कर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को बुला कर लेकर आती है कि डॉक्टर साहब देखो मेरे भाई को कुछ हो गया है। डॉक्टर आता है और वो देखता है कि ये जो जाऊ है, इसके हाथ का जो पूरा मांस है ये निकल निकल के गिर रहा है, छाले पड़ रहे हैं, जैसे उन छालों के अंदर किसी ने पंप लगाया हुआ है, हवा भर रहा है और वो छाले फूट रहे हैं अपने आप, और इस कदर फूट रहे हैं कि उसके हाथ की हड्डियां नजर आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि उसके पूरे मांस यानी कि उसका जो फ्लैश था वो बाहर आ रहा था। डॉक्टर ने कहा मैं खांसी जुकाम वाला इंसान हूँ, मेरे से भैया ठीक नहीं होगा, मैं नज़ला ठीक कर सकता हूँ, बुखार ठीक कर सकता हूँ, इसके अलावा मुझसे कुछ नहीं होने वाला, फिलहाल ऐसा करो उसको गाड़ी में बैठाओ और लेके चलो। पुलिस वाले ने तहकीकात शुरू की और उसने पूछा क्या हुआ था, तो उसने अपना सब बताया कि मैं जंगल में गया था, मैं आया, मैंने ये किया, कोई मेरे पीछे था, मैं घर की तरफ भागा, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, मुझे आग सी लग गई। इतना ही बोलने की हिम्मत थी उसके अंदर। फिलहाल उसे हॉस्पिटल भर्ती किया गया। डॉक्टर्स देखकर हैरान थे कि आज तक ऐसा कोई केस आया ही नहीं है, अभी तक बहुत सारी चीज़ें आई हैं टूटने की, फूटने की, कटने की, बट ये कुछ अलग है। उन्होंने उस सबसे एक्सपर्ट इंसान को बुलाया जो शायद उस वक्त मेडिकल एक्सपर्ट होगा। उसके लिए भी ये केस एकदम नया था, उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बेचारा करे तो करे क्या। फिलहाल वो आकर बैठा और उसने भी सेम सवाल किया कि क्या हुआ था। तब तक पुलिस वाले ने उसके घर पर जाकर देखा, घर कुछ भी नहीं था, एकदम प्लेन, बिल्कुल वैसा ही ठीक से जैसे किसी का घर होना चाहिए, लगा ही नहीं उस घर के अंदर कभी कुछ हुआ भी है, क्या कोई इसके पीछे आया भी है। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बेचारे जाओ का राइट साइड का जो फेस था उससे उसके दांत तक बाहर दिखने लगे थे, क्योंकि उसका पूरा फ्लैश चेहरे का गल चुका था। वो नर्स की तरफ बेबसी की आंखों से देखकर पानी मांग रहा था। नर्स ने उसकी आंखों में देखा, पानी उठा कर दिया, उसे पानी पिलाया गया, लेकिन पानी उसके शरीर के अंदर ना जाकर उसके राइट साइड से बाहर निकल गया। 4 घंटे लगातार तड़पने के बाद फाइनली उसकी डेथ हो गई। केस रुका नहीं था, केस बड़ा बन चुका था। गांव वाले जब उस कार्निवल से जहां पर वो गए थे, उस मेले से वापस आए, उन्होंने इस मौत की खबर सुनी तो उन्हें लगा ये शायद वही गुफा का शैतान या कोई बड़ा सा सांप है जिसने इसको श्राप दे दिया है, क्योंकि अंधविश्वास में वो गांव उस वक्त बहुत ज्यादा आगे था। उन्होंने कहा कि हम पूजा करवाएंगे ताकि हमारा गांव साफ हो सके, सुरक्षित हो सके और हमें इस श्राप से मुक्ति मिल सके, क्योंकि जैसे ही जॉ की डेथ हुई थी धीरे धीरे करके और भी लोग टारगेट हो रहे थे सेम तरीके से, और उनकी मौत भी सेम तरीके से हो रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था इसकी असल वजह क्या है। जब काफी दिनों के बाद जॉ की बॉडी का टेस्ट कराया गया, तब समझ में आया कि जॉ कहीं से तो रेडियो एक्टिव चीजों के रेडिएशन में आ गया था, यानी कि एक ऐसी खतरनाक रेडिएशन के संपर्क में आया था, कैसे भी आया होगा। उसी के कारण इसके शरीर के अंदर एक आग सी लग चुकी थी, क्योंकि वो रेडिएशन इसके शरीर को अंदर से पिघला रही थी। कुछ लोगों ने इसको एलियंस माना कि उस दिन गांव में कोई भी नहीं था और हो सकता है कोई यूएफओ आ गया हो, एलियन आ गए हों, और एलियन ने ही उसको ऐसा कुछ किया है, क्योंकि जब हमारे पास सच नहीं होता है तो हम थ्योरीज बनाते हैं, और थ्योरीज कुछ भी हो सकती हैं, कोई भूत पर यकीन करता है।

0: है, कोई जिन पर यकीन करता है, कोई शैतान मानता है, और कोई जो साइंस की बात सुनता है वो एलियंस बताता है। जिस रेडिएशन की बात की जा रही है वो रेडिएशन बहुत एडवांस है, इसका मतलब ये कोई शैतान नहीं है, ये एलियन है। लोगों ने यूएफओ कहा क्योंकि उसने मरने से पहले कहा था कि उसके ऊपर बहुत जोर से लाइट पड़ी थी, और लाइट उस वक्त कहाँ होगी, एक ऐसी गांव जहां पर सिविलाइजेशन स्ट्रांग नहीं है। इसके बाद भी कहानियां चलती रही और 1970 के आसपास वो कहीं मिलिट्री के पास स्टोरी पहुंची। मिलिट्री में आने के बाद उसे समझ में आया कि भाई ये रेडिएशन ही था। अब वो रेडिएशन कहाँ से आया और क्या सरकार को ये बात नहीं पता थी? क्या गवर्नमेंट को अगर अपनी रेडिएशंस के बारे में ही चेकआउट करना था, एक्सपेरिमेंट करना था, तो बहुत सारे कैदी थे, किसी के ऊपर भी किया जा सकता था। आखिर एक गांव में रहने वाला सादा सा इंसान, सादा सा किसान क्यों, गांव के रहने वाले लोग क्यों? बट वो कहते हैं ना, जिसके हाथ में पावर होती है वो कभी सच बाहर आने नहीं देता, और इस केस पे भी यही हुआ। सच कभी सामने नहीं आया, सच बस इतना था कि जो की डेथ हुई बहुत दर्दनाक, बहुत खौफनाक। एक परिवार उजड़ गया और उसके बाद न जाने कितने परिवार और भी खत्म हो गए सिर्फ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के बीच में आने से। तो ये तो थी कहानी ब्राजील से, हम लेकर आए थे आपके लिए मेल्टिंग मैन की स्टोरी, जिनका शरीर पिघल चुका था सिर्फ रेडिएशन के शिकार होने से। और अब मुझे लगता है कि फीडबैक की तरफ चलना चाहिए, और सबसे पहले फीडबैक हम अपने को होस्ट से लेना चाहेंगे कि वो आज की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें आज की कहानी लगी कैसी।
1: मैम, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, पर मैं सोच रही थी कि ये है क्या, या तो उसका वहम है या हार्मोनल चेंज, पर अब मुझे पता चला कि नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये रेडिएशन है।
0: एंड आप क्या कहना चाहेंगी?
2: मैम, क्या उसको कोई इंजेक्शन दिया गया था कभी?
0: पेन किलर, सिर्फ पेन किलर, क्योंकि वो दर्द में तड़प रहा था, इसके अलावा कोई इंजेक्शन नहीं।
1: फिर मैम वो रेडिएशन कहाँ से आई?
0: अब यही बात तो सवाल बन गया था कि वो रेडिएशन, वो लाइट कहाँ से आई, और यही सवाल सरकार से भी किया गया था।
1: तो रेडिएशन लाइट, ये तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली कि वो आसमान से हुई होगी।
2: नहीं, कोई साइंस ऐसा कोई कुछ हो रहा होगा जिसपे।
0: चलिए भाई, यहाँ तो डिबेट शुरू हो चुकी है कि वो रेडिएशन कहाँ से आई थी। तब तक के लिए हम चैट बॉक्स में चल लेते हैं और आपके देखते हैं कि आपकी डिबेट क्या कहती है। हमारे साथ जॉन जुड़े हैं जो लिख रहे हैं, भाई साहब पूरा सीन आंखों के सामने है मेरे, थैंक यू सो मच आपकी बात।
1: सेम कंडीशन मेरे साथ थी, मैं
0: ओके,
1: सच में
0: बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो ये मेरी तारीफ है। नव्या जी हमारे साथ जुड़ी हैं जो लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं हम ज्ञानसी लाइफ में। गुड आफ्टरनून टू यू जॉन, आप भी बताइएगा जरूर आप कैसे हैं। नाइस सॉन्ग लिखा है, थैंक यू सो मच। एंड आइडियल हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं, हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू यू, प्लीज़ मैम, ओके नो इशू, मैं आपका गाना ज़रूर से प्ले करके जाऊँगी जो आपका पसंदीदा सॉन्ग है। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का, तो आप रखिएगा अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसी अनजानी अनचाही चीज़ों से दूर रहिए जिनको आप जानते नहीं हैं। और अगर आप ऐसी किसी चीज़ के संपर्क में आ जाते हैं तो डॉक्टर्स की मदद ज़रूर लीजिएगा। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे,
2: बाय बाय
1: बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभकारी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। आज की कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज है 28 मई, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ाव रखते हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए। और आज के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं हम सभी के प्यारे यानी कि सेहत की जागरूकता का प्रचार प्रसार करने वाले हमारे सेहतिया सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में सेहतिया भैया।
1: धन्यवाद आरजे कांछा, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है
0: जी।
1: लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलत फहमियाँ और झिझक मौजूद है।
0: सच कहूँ भैया तो आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता है। लड़कियाँ चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिल पाती। आखिर ऐसा क्यों है भैया?
1: देखो आरजे कांछा, ये एक सामाजिक सोच का मामला है। सालों से मासिक धर्म एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि ये हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तो लड़कियाँ सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
0: मतलब ये सिर्फ एक महिलाओं का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल, माँ पिता भाई पति शिक्षक सभी की भूमिका होती है कि जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
0: तो भैया अगर हम सीधे तौर पर समझेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब, तो इसका क्या मतलब है?
1: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की साफ सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
0: लेकिन भैया गांवों में या कम साधनों में जहां पे इन संसाधनों की कमी है, ऐसे इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती हैं क्या?
1: यही सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाती हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिलते हैं, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय मिलकर सुविधाएँ सुनिश्चित करें।
0: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्योंकि अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी सीधा सीधा पड़ेगा, है ना?
1: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा
0: जी,
1: जैसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपनी रोजाना में जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें शामिल कर सकते हैं?
1: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता, आधी थाली में सब्जी हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन अनाज जैसे रोटी या चावल, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरे पत्तीदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी हैं और सबसे अहम बात है कि जंक फूड ज़्यादा तला भुना और ज़्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए, पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
0: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता बल्कि सही और संतुलित खाना होता है, क्यों भैया?
1: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है वही सबसे अच्छा और सबसे अच्छा है, बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
0: सेहतिया भैया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से ना जुड़े। क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में?
1: हाँ आरजे कांछा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ
0: जी।
1: हमारी ही एक गांव की एक लड़की रीना की
0: जी
1: कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी, पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की है। जब उसे पहली बार पीरियड हुए तो वो घबरा गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया और कहा किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ही ये कि उसने कितनी बार बदलना है। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली और जलन होने लगी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि ये शायद नॉर्मल है। इसी के साथ एक और समस्या थी, रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड के समय उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, चक्कर आते थे और कई बार वो स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बातें करते हुए सुन रही थी। शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानी बताई। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने उसे समझाया कि साफ सफाई कितनी ज़रूरी है, उसे सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियाँ दी गई और खाने में हरी सब्जियाँ, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी गई। धीरे धीरे रीना अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू किया, समय पर पैड बदलना सीखा और अपने खाने में सुधार किया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसे कमजोरी नहीं होती है और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। आज रीना अपने गाँव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हमें इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
0: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
1: बिल्कुल, और यही हमारा मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता न करे।
0: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे कांछा
0: जी।
1: अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों में भी पोषण की कमी एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में, निर्माण कार्य में या दिहाड़ी मजदूरी में, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता है। कई बार वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं। इसका असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
0: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
1: बिल्कुल, और यही बातें हमें विश्व पोषण दिवस के संदेश से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, लिंग और हर वर्ग के लिए जरूरी है। और आज हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टूगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। तो इसका मतलब यही है कि हम मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है।
0: सेहतिया भैया, आपने एनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज़्यादा होती है?
1: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, खासकर किशोर लड़कियां और महिलाओं में इसकी दर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं हैं। खून की कमी का मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होती है। महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो ये कमी और बढ़ जाती है।
0: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही समझा आपने, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीज़ों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल, और अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत हैं। फल जैसे केला, अमरूद, संतरा, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए, एक ही चीज़ रोज़ खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं।
0: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी ही मजबूत होगी, क्यों भैया?
1: बिल्कुल आरजे कांछा, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, हम जो खाना खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो बीमारी का कारण भी बन सकता है।
0: तो साथियों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती हैं। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
1: याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही स्वस्थ जीवन का आधार।
0: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले लेंगे हम सब सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
3: प्राथमिकता देंगे,
2: क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे
3: और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
3: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
2: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: मैं आपकी दोस्त यानी कि आरजे आकांक्षा आपसे विदा लेती हूं, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी आप सभी से कि अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो के साथ में, सेहत सही लाभ कई में, क्योंकि अगर सेहत है सही तो लाभ तो हो ही जाएंगे कई, एक नए विषय के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।

हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो सुन सहेली में। तो भाई सुन सहेली में स्वागत करती है आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका आप सभी का। और अब चलते हैं, जैसा कि हमारी सुन सहेली की औपचारिकता है कि हम जब भी आते हैं तो अपनी सहेलियों के साथ आते हैं, क्योंकि भाई सुन सहेली है हमारे प्रोग्राम का नाम ही, और जब सुनने वाली सहेली ही ना हो तो फिर कैसे मज़ा आएगा सुन सहेली का। तो आज भी सुन सहेली में हमारे साथ मैम तो नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो गई हुई है हॉलीडेज पे, थोड़ी छुट्टियाँ मनाने, थोड़ी मस्ती करने और थोड़ा सा इन्जॉय करने, क्योंकि काम के साथ साथ कई बार हमें इन्जॉयमेंट भी थोड़ी सी करनी चाहिए ना, अपने लिए फैमिली टाइम निकालना चाहिए। तो वो तो गई हैं इन्जॉय करने और हमारे साथ जो हैं, चलिए हम उनसे आपको मिलवाते हैं। तो हमारे साथ कौन है ये, मैं आपको गेस करने के लिए कुछ पॉइंट्स देती हूँ, आप गेस करिए कि कौन है हमारे साथ। हमारे साथ वो हैं जो अपनी मीठी मीठी बातों से आप सभी को बहुत सारा हंसाती हैं, बहुत सारी चुलबुली बातें करती हैं, बहुत सारी काम की भी बातें करती हैं, और कल बहुत समझदारी की बातें कर रही थी। तो उम्मीद है आप हमारे लिसनर्स समझ गए होंगे, या फिर बता दिया जाए तो ऐसा करते हैं कि हम नाम नहीं बताते हैं और आप कुछ ऐसी बातें करिए जिससे कि लिसनर्स पहचान जाएं कि आप हैं कौन।
1: हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले तो भाई गुड आफ्टरनून टू यू ऑल, भाई जितने भी हमें सुन रहे हैं सबको इस दोपहरिया की बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि भाई अगर आप इतनी गर्मी में सर्वाइव करके आज की दोपहरिया तक पहुँचे हैं तो आई होप आप आगे भी सर्वाइव कर ले जाएंगे इस तपती हुई गर्मी में। वेल गाइस, गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि इस बार सूर्यदेव हमें रोस्ट करके ही मानेंगे। और भाई इतनी गर्मी में, जैसा कि हम आपको हर शोज में बताते हैं, हर आरजे आपको यही बताता है कि भाई इस गर्मी में अपना खास ख्याल रखें, हाइड्रेशन का उससे भी ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन कोई चीज़ है तो वो डिहाइड्रेशन है, यानी कि पानी की कमी। और पानी की कमी से बहुत, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। वे जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं आती हूँ, यानी आपकी अपनी आरजे आती है, तो लेकर आती है बहुत सारी बातें, खाने पे नहीं, बात होती है बहुत सारी। देख कल हम खाने बात कर रहे थे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छोटे मोटे बच्चों के, छोटे मोटे मतलब मोटे और छोटे बच्चे नहीं, बच्चे तो हर छोटा होता है लेकिन मोटा कोई कोई होता है, लेकिन भाई बच्चों की और भी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें गौर करनी चाहिए। कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। वेल भाई गर्मी तो इतनी सारी हो रही है, इतनी भयंकर हो रही है कि अंशिका सभी लोग कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा जाते हैं इस गर्मी में।
0: बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा आयुषी, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ये जो चिड़चिड़ापन होता है ना, वो कहीं ना कहीं सबके बिहेवियर का हिस्सा बन ही जाता है, हम नहीं चाहते हैं बट फिर भी बन जाता है।
1: और साथ ही साथ अगर आपके घर में छोटे मोटे बच्चे हों तब तो भाई और ज्यादा चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो इस चिड़चिड़ाहट में, इस गर्मी में बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए बताओ।
0: बच्चों को हैंडल करने के तरीके भी हम बताएंगे आपको, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही वही है, हम आपको ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि आप अपने घर के नन्हे मुन्ने बच्चों को इस गर्मी में कैसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बारी है कि भाई हमारा स्टार्टिंग का सेगमेंट जो कि होता है पोएट्री, एक बहुत ही प्यारी सी पोएट्री, और उसके साथ में हम आपको रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी बताते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले पोएट्री बता लेते हैं और फिर बताते हैं कि हमारे नन्हे शैतानों को हैंडल कैसे करना है। ओके,
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए लिसनर्स पोएट्री से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ट्यूसडे, और ट्यूसडे हमारा हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों का, तो आज पोयम भी कुछ ऐसी है जो आपके बचपन को आपको याद दिलाएगी। तो चलिए बचपन में खोते हैं और कुछ बचपन की यादों को याद करते हैं। तो सुनिएगा, काले काले बादलों में तितली के संग उड़ना है, मिट्टी के घरौंदे बनाकर हंस हंस कर खुद ही लड़ना है, छोटी छोटी उंगलियों में सपनों का संसार सजाना है, रूठ जाना है बात बात पर, माँ के आंचल में छुप जाना है, न कोई फिक्र है न कोई चिंता, न कोई फिक्र है न कोई चिंता, दिन भर बस करते हैं मस्ती, कागज़ की नाव चलाकर पानी में बहती अपनी कश्ती, काश कोई लौटा दे, काश कोई लौटा दे वो मासूमियत भरा बचपन, जहाँ हर सुबह होती थी नई, और हर कोना खुशी से महकता था, और खुशी से महकता था हर पल, और खुशी से महकता था हर पल, कोई लौटा दे मेरा वो बचपन, काश कोई लौटा दे मेरा वो बचपन।
1: भाई इतनी अच्छी पोयम सुन के मुझे एक चीज बहुत ज्यादा और बहुत जोर से याद आ रही है, बता दूं?
0: बिल्कुल बता दीजिए।
1: देखो हम अभी फिलहाल जो है काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी नानी के घर होंगे,
0: हाँ,
1: है ना, वेकेशंस पे होंगे, छुट्टियां मना रहे होंगे और खूब सारा एंजॉय भी कर रहे होंगे,
0: हाँ,
1: लेकिन तो जो जिनके भी नानी का या दादी का घर गांव में पड़ता है यानी कि हमारे देहात में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है लेकिन बच्चे एक्सप्लोर नहीं करते, बताओ क्या?
0: आप बताइए।
1: चलिए मैं ही बता देती हूँ। अंशिया, कभी आप अपने गांव वाले घर पे गई हैं?
0: हाँ गई हूँ।
1: बगिया देखी है? बगिया,
0: हाँ।
1: बगीचा नहीं, बगिया,
0: बगिया देखी है मैंने।
1: अब भैया इस गर्मी में जब बजते हैं शाम के चार बजे, इंसान का दिमाग थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है,
0: हाँ।
1: क्योंकि गांव में दोपहर में लोग अधिकतर सो ही रहे होते हैं, सो के उठते तो दिमाग बिल्कुल खुला रहता है, बिल्कुल रिफ्रेश रहता है। और इस गर्मी में जब आपके घर में मेहमान आए हो या आप खुद अपनी दादी नानी के घर गए हो जो गांव में है, तो अधिकतर हम ये देखते हैं, जो मैंने किया हुआ है, जो मुझे याद आया कि हम बगिया जरूर जाते थे, आम की बगिया।
0: और आम नहीं तोड़ते थे?
1: अरे आम की बगिया और जाते किस लिए हैं भाई, आम तोड़ने कितनी बार उस पेड़ से गिरे कितने आम, और भाई
0: मैंने तो बहुत तोड़े
1: वो मेहनत के तोड़े हुए आम, तोड़े हुए नहीं चुराए हुए आम, कुछ

0: जो है सुनाई जाती है कि यहाँ पे एक लड़की फांसी लगा के मरी थी, उसकी आत्मा आज भी यार एक एक आम में बसती है।
1: और फिर भी हम आम खाते हैं।
0: फिर भी आम खाते, शायद उस लड़की की वजह से ही टेस्टी भी रहती
1: है। हाँ रे, देख रहे हैं लिसनर्स आप, मतलब अब भूतों की वजह, मतलब भूत की वजह से टेस्टी भी होने लगे। अब ये सब मत कहिए वरना कोई अपने गांव की बगिया के आम नहीं खाएगा।
0: अरे उसी आम में तो स्वाद है, टेस्ट कहाँ है, टेस्ट यही तो है। और ये सारी जब तो हम बड़े होते हैं, जब हम ये इतने समझदार हो जाते हैं कि हमें ये पता चलता है कि भाई ये आत्मा वात्मा इतनी कुछ नहीं होती है, और सबसे जो बेहतर चीज़ होती है वो होती है हमारा मज़ा, हमारी मस्ती, हमारे मजाक, और उन दिनों का ये प्यारा सा ये पल जो हम कहीं ना कहीं भूलते आ रहे हैं, छोड़ते आ रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो भाई बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही मस्ती भरा होता है हमारा बचपन, और कितनी सारी मस्तियों से भरा हुआ होता है ये तो आपने अभी आरजे आयुषी से सुना ही। और मतलब मुझे तो ये आम की बगिया में क्या ले गई, वही रिमाइंड हो गया जब हम मतलब डलिया भर करके आम तोड़ते थे, और इतना और
0: आप डलिया भरती थी, हम तो मम्मी दुपट्टा भरते थे।
1: नहीं हम तो डलिया भरते थे,
0: नहीं हम डलिया ले जाना भूल जाते थे।
1: नहीं तो हम लोग वो सिस्टमैटिक रखते थे ना, मतलब 5-6 लोग होते थे ग्रुप में, हाँ तो वो जिम्मेदारी दे दी जाती थी, आप नमक लेके आना, तुम डलिया लेके आना, मतलब।
0: और आम से भी ज्यादा पता है मजा किस में आता था, मतलब आम में तो मजा आता था लेकिन एक चीज में और था जिसमें मुझे बहुत पर्सनली बहुत मजा आता था, वो होता है जामुन तोड़ना।
1: हाँ।
0: देखिए आम में क्या है कि आप नीचे खड़े हुए कोई पत्थर मारेंगे तो वो टूट के गिरेगा, ठीक है, लेकिन जामुन का पेड़ का जो सीन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। 4 लोग एक बड़ी चादर लेकर के नीचे खड़े होते हैं और ऊपर एक जो सबसे मजबूत बंदर किस्म का आदमी होगा वो चढ़ जाएगा और लेके डाली जो हिलाएगा कि भाई जितने सारे जामुन हैं सब पटपटा के उस चादर पे गिर जाएंगे। अब वो जामुन गिरा और पास की नहर से पानी आके जामुन धुला गया और जामुन ऐसा इंजॉय किया जाता था जैसे वो हमारे, जैसे आजकल के बच्चे टॉफी खाते हैं, टकाटक खाते हैं, ना जाने कितने ऐसे जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो लेके दुकान से खा लेते, लेकिन जो स्वाद जामुन और आम का है वो इस गर्मी में कहीं नहीं मिल सकता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे तो आपने याद दिला दिया कि गर्मियों के इस मौसम में खीरे बहुत अच्छे होते हैं। तो हम लोग गांव जाते थे तो वहाँ पे पेड़ लगा हुआ था,
0: अच्छा,
1: तब दादी के खेत में लगा हुआ था, तो हम लोग खीरे तोड़ते थे, खाते थे, और मूली वगैरह तोड़ते थे, मतलब बहुत मजा आता था। और कच्चे अंगूर बहुत अच्छे वहाँ पे लगे हुए होते थे।
0: कच्चे अंगूर
1: मतलब अंगूर का पेड़ था,
0: मतलब वो खट्टे ज्यादा होते हैं,
1: बहुत मजा आता था मतलब। और आप अभी थोड़ा इधर जाएंगे, जैसे इन सीजन्स में तो नहीं होता है उतना सिंघाड़ा, लेकिन थोड़ा आप पीछे जाएंगे जैसे जाड़े की जब ठंडी होती है उस साइड में तो सिंघाड़ा बहुत अच्छा होता है। गांव वगैरह में आपने देखा होगा वो होते हैं पोखर होते हैं
0: जी जी,
1: तालाब टाइप की, अरे उसमें से आप सिंघाड़े निकाल कर खाइए, ओ माई गुडनेस, मतलब
0: अरे बस अंशिका अब मुझे लगता है कि बस कर देना चाहिए क्योंकि हमें शो करना है अभी। और हम अपने लिसनर को भी भाई इनवाइट करते हैं, जल्दी से आइए चैट बॉक्स में, इतनी जो सुस्ती है ना, ये सर्दी में दिखाएं तो ठीक है लेकिन गर्मी में भी इतनी सुस्ती, इतनी ज़्यादा ढीलापन, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिसनर्स में होनी चाहिए। और आप लिसनर्स हो ना हमारे, आप तो हमारे दोस्त हैं भाई, जल्दी से आइए चैट बॉक्स में और बताइए कि ये सब सुन के आपको अपने पुराने बचपन के दिन याद आए, या फिर आप अभी भी चाहते हैं कि वापस से हम बगिया जाएं, आम तोड़े, जामुन तोड़े, और आपका क्या विचार है इस बातों पे, वो भी आके ज़रूर चैट बॉक्स में दें और हमारे साथ खूब सारी गपशप करें।
1: बिल्कुल, और आप जब गांव पहुंच ही गए हैं तो दो एक बातें और कर लेते हैं
0: जी।
1: जैसे कि नहर में नहाई हैं आप गांव में?
0: नहर में तो मैं नहीं नहाई, लेकिन वो जिससे खेतों में पानी डाला जाता है
1: बोरवेल का, वो होता है
0: बोरवेल, ये जिसमें बहुत मोटी सी पाइप लगती
1: जी, जी,
0: है
1: आयन,
0: उसमें मैं नहाई हूँ बहुत ही अच्छे से और बहुत बार,
1: मतलब हम लोग तो नहर में, नहर थी ऐसे बनी हुई थी गांव में, और उसमें एक्चुअली वो पता है क्यों थी, खेतों में पानी पहुंचाने के लिए थी, मतलब बनाई गई थी, और हम लोग उसमें जो नहाते थे मतलब ऐसे लगता था कि इसी में बैठे रहे मतलब 4-5 घंटे, और तब ये फील नहीं होता था कि इतनी गर्मी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ लिसनर्स, कि शहर में जैसे हम कहते हैं अरे बहुत गर्मी है, एसी ऑन कर दो बहुत गर्मी है, आप गांव जाके देखिए वहाँ पे इतनी शुद्ध हवा और एक इतना हरियाली पूरा ऐसा एनवायरमेंट रहता है ना कि मुझे नहीं लगता ये उतनी गर्मी हमें फील होती है, बहुत अच्छा लगता है। और पानी शुद्ध भी रहता है, जैसे बहुत लोग कहते हैं अरे नहर के पानी में कौन नहाएगा, पानी गंदा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, इतना साफ स्वच्छ पानी कि आप देखिए कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बहुत सुकून फील होता है।
0: और मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे जो कि फोन में दिन भर घुसे रहते हैं और वेकेशंस के लिए पापा वहाँ जाना है, शिमला जाना है, मनाली जाना है, इन सब के

0: जाए, मतलब आप जाएं, लेकिन कभी कभी अपने रूट्स की तरफ, अपने गांव की तरफ भी जाएं और ये सारी चीज़ों को भी उन्हें उससे परिचित कराइए कि ये सारी चीज़ें कितनी, क्योंकि अधिकतर देखिए हमारी मेमोरीज कहाँ बनती हैं, हमारे अपनी जगह पे, हमारे रूट्स पे ही सबसे ज़्यादा हमें जो है हमारी सबसे बेस्ट मेमोरी बनती है। और आपकी लाइफ में भी आपका बचपन बहुत ही ज़्यादा अजीज़ रहा होगा और आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया होगा, तो अपने बच्चों को भी उन बहुत सारी मस्ती मजाक से वाकिफ कराइए, उन्हें मिलवाइए उन चीज़ों से,
1: बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि देखिए हम कहते हैं ना कि अरे बच्चा रो रहा है तो क्या हुआ, फ़ोन दे दो, लेकिन ये फ़ोन देखिए जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहीं पर कहीं ना कहीं बच्चों का वो एक बचपन जो उन्हें एक्चुअल में जीना चाहिए वो छीन लेता है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया ना कि बगिया में हम जाते थे, आम तोड़ते थे, तो उसमें गिरते भी थे और छोटे बच्चों के लिए ये कहा जाता था कि जितनी मिट्टी लगेगी शरीर में उतना ही शरीर मजबूत होगा, तो ये कहीं ना कहीं सही बात है। मतलब गिरते थे और तब ये नहीं फील होता था कि कट गया है तो बिल्कुल खून निकल रहा है, बिल्कुल बेहाल है, वैसा नहीं फील होता था, हल्की चोट लगी फिर उठ गए, फिर करने लगे, मतलब कहीं ना कहीं भूल गए।
0: एक्चुअली उन बच्चों को पता भी नहीं चलता था कि हमें चोट लगी हुई है, अगले दिन जब हम नहाते थे या रात में जब हम सोते थे तब हमारी मम्मी को नजर आता था कि नहीं बेटा यहाँ चोट लग गई, यहाँ पे नीला पड़ गया है, यहाँ पे खरोच लग गई है, तब हमें पता चलता कि अच्छा तब गिरे थे।
1: हाँ ये सही कह रही है, मतलब रिमाइंड भी नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं वो बचपन जीने का हक उनका भी है। और देखिए मान लीजिए जैसे हम कहते हैं ना कि अरे यार बड़े होंगे तो बच्चों को अपने बचपन की कहानियां सुनाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं, मतलब तो आप क्या सुनाएंगे? अगर आपने कभी एक खुशनुमा बचपन जिया ही नहीं होगा तो आप क्या अपने बच्चों को बताएंगे या किसी को भी बताएंगे? आज भी मैं अपनी बात करूं या आयुषी की बात करूं, हम लोग कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत स्ट्रेस में भी होते हैं, तो बचपन की कोई ऐसी बात याद आ जाती है तो तुरंत फेस पे स्माइल आ जाती है क्योंकि वो हरकतें की हुई हैं बचपन में। बट आजकल के बच्चों को तो लगता है कि मुझे नहीं लगता उन्होंने बचपन जिया है, बस उन्हें बचपन का मतलब यही मालूम है कि फ़ोन दे दो, कमरे में बैठ जाओ, फ़ोन चलाओ, दूसरा बहुत ज़्यादा हो गया वाटर पार्क गए, वाटर पार्क घूम आए। देखिए हम वाटर पार्क घूमने को या किसी आप डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम उसे गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक एक्चुअल जो ब्यूटी होती है बचपन की वो कभी नहीं खोनी चाहिए। तो थोड़ा सा अपने बच्चों को समझाएं कि बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए, बस वो नज़रिया चाहिए जिससे कि आप देख सकते हैं। मतलब हम लोग तो जब खेले जाते थे तो अच्छा आपने मिट्टी के घर बनाए हैं कभी?
0: मिट्टी के घर हाँ, दिवाली में बनाए धनतेरस वाले दिन।
1: हाँ और हम लोग क्या करते थे, गांव में मिट्टी होती थी तो वैसे भी कभी कभी किला बनाते थे, उसमें झंडा लगाते थे, कभी घर बनाते थे, मतलब क्या याद आ गया आज। तो चलिए लिसनर्स आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगर हम बात करते रहेंगे हमारे बचपन की तो वो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी।
0: हम कहते हैं कि हमारी अवधि में कि बचपन के किस्से होते हैं, तो वो किस्सा हमारा जो है ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमारा शो आपके लिए जो कंटेंट है, जो विशेष चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको ज़रूर डिलीवर करेंगे।
1: बिल्कुल, तो चलिए अब आते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ। तो आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है, क्या कहता है ये मैं बताती हूँ आपको। तो कहता ये है कि सच्ची सफलता हमेशा कड़ी मेहनत से मिलती है, कभी भी अपनी सक्सेस को पाने के लिए शॉर्टकट को यूज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमेशा अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए क्योंकि पास्ट जो था वो बीत गया और फ्यूचर क्या आने वाला है ये किसी को मालूम नहीं, इसलिए हमेशा अपने प्रेजेंट में जिए, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और साथ ही साथ में किसी भी पॉइंट पे, मतलब आप जॉब में हैं या आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सक्सेस को पाने के लिए कभी भी शॉर्टकट का यूज़ ना करें क्योंकि सक्सेस पाने के लिए अगर हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं तो शायद उस टाइम हमें हमारी सक्सेस मिल भी जाती है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी लाइन बताना चाहूँगी जो भगवान श्री कृष्ण ने कही थी कि जब अभिमन्यु जा रहे थे युद्ध करने के लिए और उन्होंने अपने मामा से कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आयुषी, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया अभिमन्यु को, तो उन्होंने पता है आशीर्वाद क्या दिया?
0: क्या?
1: कि जाओ तुम्हारी यश और कीर्ति सदा काल तक बनी रहेगी, मतलब जब तक मानव रहेगा धरती पर तब तक वो तुम्हारे यश का गान करेगा। तो जब वो चले गए अभिमन्यु, तो उनकी बहन सुभद्रा ने उनसे, कृष्ण से पूछा कि आपने अपने भांजे को अपने दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया कि तुम विजयी रहो और युगों युगों तक जीवित रहो और जीतो। तो कृष्ण भगवान ने एक बात कही थी कि जीत तो कभी कभी छल से भी मिल जाती है, लेकिन यश और कीर्ति हमेशा सही रास्ते पर चलने से ही मिलती है। और वही हुआ कि जीत तो, मतलब वो जब गए तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन आज भी अभिमन्यु को याद किया जाता है क्योंकि वो सात सात कौरवों के बीच में अकेले लड़े थे,
0: वो भी बच्चे थे
1: और सोचिए 7 लोग एक बच्चे से लड़ रहे थे, मतलब आप इमेजिन कर सकती हैं कि कितना ज़्यादा एक बहुत ही गंभीर बात थी वो। और अंत तक वो लड़े, अपने रथ के पहिए के साथ लड़े जब उनके पास कोई अस्त्र नहीं बचा था लड़ने के लिए। तो इसे ही कहते हैं कि जब भी कोई आपको सक्सेस पानी हो तो हमेशा एक मुश्किल रास्ता भले होगा लेकिन जो लंबा रास्ता होगा वो आपको सही की तरफ ले जाएगा।
0: बिल्कुल अंशिका, और इसी के साथ मैं भी एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, हम हमेशा ये सोचते हैं अगर हमारा एक प्लान अनसक्सेसफुल हो गया तो हम सोचते हैं अरे अब तो कुछ ज़िंदगी में बचा ही नहीं है, अब तो भगवान ने क्या कर दिया हमारे साथ, फिर हम भगवान से खफा हो जाएंगे, मंदिर की तरफ देखेंगे नहीं, खाना पीना छोड़ देंगे, अकेले कमरे में बंद रहेंगे, सैड सॉन्ग सुन के रोते रहेंगे, और न जाने कितनी ऐसी हरकतें जो हम लोग करते रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमेशा यूनिवर्स अगर आपके लिए रास्ता कोई बंद करता है या कोई दरवाज़ा बंद करता है तो याद रहे कि उस घर की खिड़कियां आपके लिए ज़रूर खुली छोड़ देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपको भी लग रहा हो कि सब कुछ बंद हो चुका है, लेकिन अगर आप उसको शांति से, शांत मन से, क्योंकि शांत मन ही हमें सही दिशा दिखाता है, अगर शांत मन से आप देखेंगे तो कोई ना कोई अभी भी रास्ता होगा जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ पहुँचा देगा।
1: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य के लिए रास्ते खोजिए और सही रास्ते खोजिए। ये आज का हमारा मैसेज हमारे छोटे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए है, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। तो चलिए अब चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ, और अनुष्का जी आ चुकी हैं, लिख रही हैं गुड आफ्टरनून दोनों मैम को, गुड आफ्टरनून आपको भी, कैसी हैं आप। अमित सिंह जी आ चुके हैं जो कि हमें गोंडा से सुनते हैं और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आरजे समता मैम। ओके, तो गुड आफ्टरनून, और मैम तो आज नहीं है, वो छुट्टी पे हैं, लेकिन आपका गुड आफ्टरनून हम उन तक ज़रूर पहुंचा देंगे। और साथ ही में लिख रहे हैं कि मेहनत की राह आसान नहीं होती लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल, हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो फिर आई थिंक आगे के लिए सब कुछ आसान है। तो चलिए लिसनर्स, अब चलते हैं, हमारी बकबक जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, क्यों आयुषी हो गई ना ज़्यादा।
0: मुझे लगता है कि अब एक सुरीले ब्रेक की तरफ जाना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं, जैसा कि हमारी सखी जी ने कहा, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं और बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
2: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
1: सच में? क्या खास है वहाँ?
2: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
2: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
2: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है, और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
2: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी आज की को होस्ट आयुषी, और मेरे साथ है हमारी होस्ट अंशिका। जी हाँ, अंशिका यानी आपकी अपनी फेवरेट आरजे अंशिका। और आज हम बात कर रहे हैं हम घर वालों के, हम माँ बाप के सबसे बड़े प्यारे और सबसे बड़ा सिरदर्द, यानी कि उनके बच्चे। अब देखिए, बच्चे इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे और माँ बाप भी, कि जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, जब वो चलना नहीं सीखते तब तक तो बच्चे बड़े ही क्यूट लगते हैं, कि भाई वो तो उन्हें जहाँ बिठाओ वहीं बैठे रहेंगे, जहाँ उठाओ वहाँ उठ जाएंगे, जो जैसे उन्हें रखो वो वैसे रहेंगे। लेकिन जहाँ बच्चे आए टोडलर फेज में, जहाँ पे वो चलना सीख रहे होते हैं, भाई घर की जो आशामत आती है वो तो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। आप खुद सोचिए, एक बच्चा अगर आपके घर में है जो चलना सीख रहा है, उसने फ्रिज की जगह पे टीवी ले आना है और टीवी की जगह पे फ्रिज, बेड उठा के छत पे टांग देगा और बाकी छत के पंखे उठा के नीचे लगा देगा। ऐसे तो हमारे घर के बच्चे होते हो। अगर आपके बच्चे इंडियन है, अगर हमें कोई फॉरेन से सुन रहा हो तो भाई बात अलग है, लेकिन आपके बच्चे इंडियन है तो आप ये खुद जानते होंगे कि इंडियन बच्चों में होती है स्पेशल ताकत। वो होती है अपनी मम्मी को मम्मी से हटा के एक मेंटल पेशेंट बनाने की। अब ये कैसे बनते हैं? देखिए, माँ जो होती है वो जब तक आपकी हर एक छोटे छोटे काम करती है, आपको निलाती धुलाती खिलाती पिलाती सब कुछ, तब तक तो वो ठीक है। लेकिन जहाँ बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ को क्या होता है, माँ उसे खिला पिला नहीं पाती। माँ को एक रेल दौड़नी होती है कि भाई वो ट्रेन की तरह बच्चे के पीछे पीछे, बेटा खा लो खा लो खा लो। लेकिन बेटा खा ले ना, ये इंडियन बच्चों के तो है ही नहीं, उनकी जो है फीचर्स में ये आता ही नहीं है।
1: अरे मतलब अगर बच्चे इतनी आसानी से खा लें तो फिर वो काहे के बच्चे? मतलब हम अपना बचपन नहीं याद करते हैं कि मम्मी पीछे दौड़ती थी बेटा खा लो, और हम जब तक पूरे घर का चक्कर ना लगवा दिया तब तक मजा ले कि मुंह में कुछ चला जाए।
0: और इसी बहाने शिका हमारी मम्मियां पतली भी हो गई।
1: हाँ ये तो सही है, बस मम्मियां सुन ना रही हूँ ये है, वरना पता लगा घर जाके कि बेटा क्या बोल के आए हो रेडियो पर।
0: दोस्तों, अगर हम लोग कल आपसे फिर से मिलेंगे तो याद रखिएगा कि हमारी मम्मियों ने नहीं सुना, लेकिन अगर हम कल आपको नहीं मिलते हैं तो हमारी मम्मियों ने सुन लिया।
1: और फिर हम किसी हॉस्पिटल में आपको मिलेंगे और फिर एक दो दिन तक तो मुझे लगता है कि वो हालत खराब है।
0: मजाक से हटके आते अपने मेन मुद्दे पे, वो है टिप ऑफ द डे। आई गेस
1: टिप ऑफ द डे नहीं, अब बारी आती है हमारे आज वाले टॉपिक।
0: अच्छा, टॉपिक की तो अब भाई बात हो रही है मुद्दे की, तो अंशिका मुद्दा बताएं आप।
1: हमारा आज का मुद्दा है बच्चों में स्पेशली थर्मल स्ट्रेस क्या होता है।
0: थर्मल स्ट्रेस?
1: यस।
0: थर्मल तो हम ठंडी के बारे में जान, मतलब थर्मल आई गेस ठंडियों में ज्यादा यूज होता है या क्या है, अब बताएं।
1: थर्मल स्ट्रेस एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है, हम इसे मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं कहेंगे, बस ये एक मेंटल कंडीशन है जो गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे कि गर्मी में तेज धूप तो कहीं ना कहीं सभी फेस करते हैं, लेकिन जब शरीर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं हीट वेव की वजह से बच्चों के सोचने की क्षमता और उनके कंसंट्रेशन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसे कहते हैं थर्मल डिस्ट्रेस। ये एक तरीके का भटकाव है जो आपको आपके काम से भटका देता है। कहने का सेंस ये है कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो चीज इससे प्रभावित होती है वो होता है बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन। धीरे धीरे उनका कॉन्सेंट्रेशन जाता है, मतलब वो पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें याद नहीं हो रहा है। अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो वो काम करना भूल जाते हैं। आपने देखा होगा गर्मी में कई बार हम सोचते हैं कि दिन में इतना सारा काम करना है लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारे माइंड को एक जगह नहीं रहने देती है। और इसे सिर्फ पढ़ाई से नहीं, इसे हम कई बातों से रिलेट कर सकते हैं। जैसे दिमाग एक जगह नहीं रहने का मतलब होता है कि कई बार हम चीज़ें रखकर भूल जाते हैं। भूलने का सेंस है कि वो बॉटल रखी थी वहाँ उठा रहे हैं यहाँ से, या ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कहीं ना कहीं एक आपके मेंटल बैलेंस नहीं कहेंगे हम, लेकिन आपके ध्यान का अलग बट जाना सीधा मतलब है।
0: आप बच्चों की बात कर रही हैं, मैं आपको इसका खुद का एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जब अभी तो फिलहाल कुछ दिनों पहले आंधी बारिश ये सब ज़्यादा आ रही थी, उससे पहले जब एक फेज आया था जब बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी,
1: हाँ।
0: उसमें क्या हुआ था कि मैं घर से मतलब बाहर से धूप से अपने घर पहुँची।
1: जी जी।
0: और मेरे घर में जो है, जब मैंने फ्रिज खोला तो वहाँ पे क्या रखा था कि एक दिन पहले हमारे यहाँ पानी पूरी आई हुई थी, तो उसका पानी एक कटोरे में रखा हुआ था और उस कटोरे के पीछे दूध का बर्तन रखा हुआ था और मुझे बनानी थी चाय। मैंने चाय का बर्तन उठाया, अब क्योंकि मुझे दूध निकालने के लिए वो गोलगप्पे का पानी के कटोरे को अलग निकालना होगा। हाँ? तो मैंने निकाल के उसको भी स्लब पे रख दिया।
1: ओके।
0: अब जब मैंने दूध उठाया, दूध का भगोना जो होता है, भगोने को उठाया और सोचा कि लाओ इसको मैं पतीले में खाली कर दूं जितना मेरे को चाय बनानी है।
1: जी जी।
0: आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा दिमाग इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि मैंने दूध उठा के पानी गोलगप्पे के पानी में डाल दिया। अब जब मैं सोचूं कि गोल ये चाय का दूध हरा क्यों हो रहा है, तब मेरे को याद आया कि अरे मेरे को तो इसमें नहीं इसमें डालना था। और फिर हालांकि डांट तो नहीं पड़ी, पर मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि आयुषी पागल हो गए।
1: हाँ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया आज आयुषी ने अभी अभी आपको, यही है कि हमारा ध्यान भटक जाता है। और ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, जैसे गर्मी कम होगी तो आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें खुद को संभालने की जरूरत होती है, स्पेशली छोटे बच्चों को, क्योंकि उन्हें पढ़ना है, उन्हें बहुत सारी चीजें याद रखनी है, तो कहीं ना कहीं उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो सही होना चाहिए।
0: और मुझे लगता है कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा हम सभी ने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, फोकस हट जाता है, और इसी सब मामले में बहुत ही अजीब सी चीजें हम कर देते हैं। आपके साथ भी हुई होगी अंशिका?
1: बिल्कुल।
0: और हमारे लिसनर्स के साथ भी हुई होगी। तो भाई अपने एक्सपीरियंस, जो अपनी साइड की स्टोरी है, उसे जरूर शेयर करें आके चैट बॉक्स में, हमें बहुत मजा आएगा, आपके दोस्तों को बहुत ज्यादा मजा आएगा ये सुन के। और आपकी कहानी हम लोगों को भी बताएंगे कि भाई कैसे इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उनका फोकस खो जाता है।
1: आपने कभी छाछ में, मतलब मैंने ऐसा किया था कि मुझे छाछ खाली करके देनी थी।
0: हाँ?
1: और वहाँ पे मतलब दो चीजें रखी हुई थी, छाछ भी रखी हुई थी और साथ में मैंगो शेक बना हुआ था, तो मैंगो शेक भी रखा हुआ था।
0: अच्छा।
1: तो मुझे छाछ देनी थी, मतलब छाछ में नमक डाल के मुझे देना था किसी।
0: आपने, डोंट टेल मी कि आपने मैंगो शेक में नमक डाल दिया था।
1: वाह। मतलब इसे दोस्त कहते हैं। और हुआ क्या पता है, मतलब दो सेम कंटेनर थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि वो दोनों सेम कंटेनर है।
0: हुँ?
1: क्योंकि हम दोनों मतलब एक ही में रखते हैं, एक ही जैसे कंटेनर है। हाँ? तो उन्होंने बोला कि उधर वाले लेफ्ट वाले कंटेनर में रखा हुआ है मतलब छाछ, और उसमें नमक डाल करके बस ले आओ, मुझे पीना है। हाँ? अच्छा, मुझे थोड़ा दिमाग पता नहीं कहाँ था, तो मैंने लेफ्ट की जगह राइट कंटेनर उठा लिया और उसमें नमक जब मैंने डाल दिया, उसके बाद मैंने देखा कि मैंने
0: सारा काम खराब कर दिया।
1: अरे खराब, मैंने उसमें 1.5 चम्मच नमक डाला। Can you imagine कि 1.5 चम्मच नमक के बाद उसका क्या हुआ होगा, क्योंकि वो मैं 5 से 6 ग्लास मतलब सभी को देने वाली थी, तो मुझे लगा 1.5 चम्मच, और हम नमक डाल रहे हैं और टीचर देख भी नहीं रहे कि नमक किसमें डाल रहे हैं।
0: चलिए भाई, ये तो अंशिका की तरफ की कहानी हो गई, मैंने भी बता दी, और आप अपनी कहानी बताना बिल्कुल ना भूले हमारे चैट बॉक्स में। चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो की है हमारा आज का कंटेंट।
1: यस, तो अब आते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब कैसे आप किसी को भी, बच्चे को है या घर पे, तो ऑब्जर्व करके आप ये बता सकते हैं कि उसे थर्मल डिस्ट्रेस है या नहीं है। तो इसके एग्जांपल होते हैं कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना और बहुत ज़्यादा सुस्ती आना, या फिर आप देखेंगे कि चेहरे और आपकी स्किन पे हल्का हल्का लाल हो जाना, और तीसरा सिम्टम्स इसके जो होते हैं वो होते हैं कि आपका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होना, मतलब बॉडी जब बहुत ज़्यादा हीट कर जाती है, और साथ ही साथ में अगर लगातार आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आता है, आपको मुहासे होते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं थर्मल डिस्ट्रेस के ही एक लक्षण हो सकता है। इसे आम भाषा में हम हीट एग्जॉशन भी कहते हैं। हीट एग्जॉशन का मतलब है कि गर्मी में बॉडी का ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो जाना, और जब बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं गर्मी के कारण हमारा माइंड जो होता है उसका भी एक केमिकल बैलेंस जो है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो इससे बचने के लिए कुछ हमारे पास हैं ट्रिक एंड टिप्स, जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। वो ट्रिक एंड टिप्स, सबसे पहला जो है हमारे पास वो यही है कि हमेशा आप बार बार पानी पीते रहिए, कभी भी खुद को मतलब हाइड्रेट रखिए, कभी ऐसा ना हो कि आपको हाइड्रेशन हो गया है, आपने पानी नहीं पिया है। तो सदिकी गर्मियों में अगर आप गर्मी में सही रहना चाहते हैं, सही रहने का मतलब है कि आप फिट रहना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी पीना। अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हैं तो आधी से ज़्यादा आपको गर्मी में प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर आप पानी पी रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। ओके, और नागेश्वर जी आ चुके हैं, लिखते हैं गुड आफ्टरनून अंशिका मैम, नमस्कार, क्या बात है आज आयुषी मैम, और क्या है हूँ हैं
0: पता नहीं, ये तो नागेश्वर जी बताएंगे कि इन्होंने लिखा क्या है। वैसे गुड आफ्टरनून नागेश्वर जी,
1: हेलो नागेश्वर जी, कैसे हैं आप? तो चलिए अब बताते हैं कि पहला जो मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा ये कैसे ठीक होता है, ये आपको आपकी आरजे आयुषी बताएंगी।
0: देखिए ये कैसे ठीक करें, ये सबसे पहले देखिए कोई भी प्रॉब्लम होती है, कंडीशन होती है, बीमारी होती है या कोई भी चीज़ होती है, उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको ये जानना होगा कि वो क्या होता है और कैसे होता है। और आई होप कि आपने अभी तक ये क्या होता है और सिम्टम्स आपने गौर से पढ़ लिए होंगे। अब बात करते हैं इसके उपचार की।
1: बिल्कुल,
0: उपचार में क्या है कि भैया अगर बच्चे को गर्मी लग जाए तो उसे कुछ चीज़ें हैं जो तुरंत करनी चाहिए, जैसे कि ठंडी जगह पे उन्हें ले जाना, धूप से हटाकर किसी छांव वाली जगह पे जिसे हम छायादार कह सकते हैं, किसी पंखे में या एसी वाली जगह पे जाके उसे शांति से लिटा दें। उसके बाद बार बार थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी उसे ज़रूर पिलाएं, कोशिश करें कि उसमें नींबू पानी भी हो जाए और ORS अगर मिल जाए तो वो आपकी हेल्थ के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर आपने टाइट कपड़े पहने हैं, हालांकि आप कोई डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि आप गर्मी में टाइट कपड़े ना पहने, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें पहन रखी है जो कसी हो तो उसको आप थोड़ा सा ढीला कर लें या फिर उसको उतार दें, चाहे वो कपड़े हो, एक्सेसरीज हो या कुछ भी हो, और कोशिश करें कि गर्मियों में आप कॉटन के ही कपड़े पहने। उसके बाद आपको ठंडी पट्टी करनी है। देखिए बच्चों के शरीर को ठंडे गीले तौलिए के पीछे उसे आपको पोछना भी चाहिए। आप उसको अच्छे से पीठ हुआ, चेस्ट हुआ, फेस हुआ, हेड हुआ और उनके पाम एरिया जो होती है, हाथों की हथेलियाँ होती है, उसे ज़रूर पोछें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ देंगी इस बहुत ही कह सकते हैं अजीब सी प्रॉब्लम से।
1: बिल्कुल, आई होप कि आप सभी ने इसे सुना है और आप सभी इसे प्रिकॉशन में ज़रूर करेंगे। तो चलिए लिसनर्स, अब चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, लेकिन उससे पहले नागेश्वर जी लिख लें, हेलो मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो आयुषी बता दें आप कैसे।
0: मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ और अभी तक आपको पता भी चल गया होगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी में हूँ आप सभी से अपनी बातें शेयर करने के लिए। और जैसा कि हमेशा होता है अंशिका कि जब दो दोस्त इकट्ठे बैठते हैं, और हम तो दो नहीं हैं, हम तो कई सारे हैं, मतलब हम दो तो यहाँ माइक पे, लेकिन हमें सुनने वाले हमारे दोस्त बहुत सारे हैं, हजारों की तादाद है। और इसमें जब टू वे कॉन्वर्सेशन होती है ना कि आप भी बोल रहे हम भी बोल रहे, तो मज़ा भी बहुत आता है। और इतने सारे लोग जब बैठे हैं तो देखिए यही होता है जो आज हो रहा है और कल भी हुआ था, यानी मुद्दे की बात भूल के हम लोग बाकी सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर देंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और नागेश्वर जी लिख रहे हैं हूँ का वाला हूँ वह वाला है जो लड़कियां बोलती हैं और मुंह टेढ़ा करती हैं।
0: ये वाला है ना, आई गेस यही है।
1: और मैंने सुना है कि नवजात बच्चे की मालिश डाबर लाल तेल से करते हैं।
0: भाई देखिए बच्चे की मालिश आप चाहे किसी भी तेल से करें, पर ट्राई करें कि उससे उसको एलर्जी ना हो। दूसरा, केमिकल वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो लाल तेल है या कोई भी तेल है, केमिकल अगर है तो वो बच्चे की बॉडी को ज़रूर नुकसान करेगा।
1: ओके, और साथ में लिख रहे हैं आज हमें भी बहुत एनर्जी मिल रही है आप लोगों की बातें सुनकर। चलिए ये तो अच्छी बात है नागेश्वर जी कि आपको एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी का स्रोत बनाए रखें क्योंकि हम हमारी बातों को बनाए रखेंगे। लेकिन इस प्यारे से सॉन्ग के उस पार बातें करते हैं, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा हम भी पानी वानी पी करके आते हैं और फटाफट आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए क्योंकि गर्मियों में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं और इस प्यारे से सॉन्ग को सुनते हैं।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में, क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली और वापस आ गई हैं आपकी सहेलियां। और चलिए आज सीधा चलते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि चैट बॉक्स में बातें हो रही हैं कुछ आइसक्रीम की। भाई चाय पीना है, आइसक्रीम खानी है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे लिए क्या है।
7: हमारे लिए कॉफी चल जाएगी।
6: कॉफी? कोल्ड ड्रिंक?
7: कोल्ड ड्रिंक दोनों ही ले आओ यार, जब तक कॉफी पियेंगे नहीं, जब तक कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तब तक कॉफी
6: भी बन जाएगी। आइसक्रीम भी हो सकती है।
7: नहीं नहीं, देखो इसी पे मुझे एक जोक याद आ गया कि एक, मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि एक गेस्ट आता है लोग के घर पे, तो उससे पूछते हैं कि आप चाय लोगे या फिर कोल्ड ड्रिंक, तो वो कहते हैं कि नॉर्मली हम लोग यही कहते हैं कि नहीं चाय ले आओ या फिर कोल्ड ड्रिंक ले आओ, लेकिन ये भी तो बन सकता है ना कि आप जब तक कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे हम पियेंगे तब तक चाय बन जाएगी फिर चाय पी लेंगे।
6: हाँ, ये भी हो सकता है।
7: तो आइंदा अगर किसी के घर जाएं और आपको दोनों पीने का मन है तो आप ऐसे बोल सकते हैं
6: कि आप कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए हम पीते हैं, तब तक आप चाय बनाइए। तो चलिए लिसनर्स, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पर, जो कि है, क्योंकि टाइम भी हमारा भागा जा रहा है, तो शॉर्ट में फटाफट से हम आपको इस टॉपिक को बताएंगे, जो कि है कि भाई घर में हमारे होते हैं प्यारे प्यारे पेट्स, और उसमें भी अगर आपने कैटू अपने घर में रखी हुई है तो भाई उसके लिए कुछ केयर और प्रिकॉशंस हम बताना चाहेंगे। तो कैट के लिए है आज जो मैं बताना चाहती हूँ कि हम कहते हैं ना गर्मियों में आयुषी की कम खाओ, लीवर जो है वो सही होना चाहिए।
7: जी,
6: कम खाने का सेंस होता है कि आपके लीवर को डाइजेस्ट करने में गर्मी में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अगर हम हैवी कुछ खाते हैं तो उससे हमारे लीवर पे असर पड़ जाता है। यही सेम हमारे पेट्स के साथ भी होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा भारी आप दे रहे हैं, भारी इन द सेंस कि जैसे मान लो बहुत ज़्यादा आपने मसाले वाला दे दिया, वैसे भी कैट अगर आप घर में रख रहे हैं तो उसे ज़्यादा मसालेदार खाना वगैरह नहीं दिया जाता है, उसे हमेशा आप नॉर्मल चीज़ों को दीजिए। नॉर्मल चीज़ों का मतलब है जैसे दाल का पानी दे दिया आपने, सादी चीज़ें दे दी, चावल आपके घर में हैं वो दे दिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फैटी और बहुत ज़्यादा मसाले वाले खाने कभी भी नहीं देना चाहिए, मसाले वाला खाना बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ में ये क्यों होता है, मतलब लीवर की समस्या सबसे ज़्यादा बिल्लियों में ही यानी कि कैट्स में ही क्यों होती है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि कैट जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है और इस वजह से भी उन्हें लीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले तो कुछ चेंजेस ये करने हैं कि उन्हें आप हमेशा खाना जो भी दे रहे हैं वो ठंडा इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा गर्म खाना उन्हें नहीं देना है, ठंडा देना है और ऐसी चीज़ें देनी है जो वो आसानी से डाइजेस्ट कर सके। जैसे कि इस समय फ्रूट्स बहुत अच्छा रहे हैं, फ्रूट्स दे दीजिए, चावल दे दीजिए, ऐसी चीज़ें जो वो आसानी से डाइजेस्ट कर सके। आप रोटी दूध उन्हें दे सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मिर्च बहुत ज़्यादा मसाला खाने में नहीं होना चाहिए। और कुछ प्रिकॉशंस हैं कि उन्हें हमेशा ठंडे जगहों पर रखिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए दें, और अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप उन्हें फिर एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए और उनकी केयर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपने घर में अगर किसी भी पेट को रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनका ख्याल रखें।
7: अंशिका देखिए, कैट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक मिथ रही है कि कैट रखने से हमारे घर में सिर्फ नेगेटिविटी आती है, या बिल्ली रास्ता काट जाए तो इंसान मर ही जाएगा, सीधा यमराज उठा ले जाएंगे। तो आपको पता है कि इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है जो हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कैट्स को हमेशा ब्लेम करते हैं, पता है क्या?
6: क्या?
7: देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, जब लोग बैलगाड़ियों से चलते थे तो जब भी रात में कभी बिल्ली रास्ते से गुजरती थी तो बिल्ली की जो आंखें हैं वो चमकती हैं रात में, है ना। तो जो बैल होता है वो उसे देख के डर जाता है कि कोई बड़ा जानवर है, तो वो कूदने लग जाता है। और पहले इतने रोड नहीं होते थे तो वो मोस्टली किसी खेत में घुस जाएगा या किसी फेंसिंग से टकरा जाएगा, जिसकी वजह से बैल को भी चोट आती थी, बैल गाड़ी को जो चालक होता था उससे भी चोट लग जाती थी, और तभी से ये कहने लग गए कि भैया बिल्ली रास्ता काट रही थी तो हमारा जो है एक्सीडेंट हो गया, बिल्ली रास्ता काट रही थी तो हमें चोट लग गया, और इसी से बिल्ली हुई बदनाम। और अब कहते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो आपको सीधा यमलोक के दर्शन होंगे।
6: नहीं लेकिन मैं तो बची हूँ अभी तक।
7: तुम बची हो?
6: क्योंकि मेरे घर मैंने कैट पाली हुई थी।
7: अच्छा, तो वही है ना कि देखो इंसान ब्लेम तो कर देता है लेकिन उसके पीछे की कहानी जानना वो इग्नोर कर देता है,
6: और वो ज़रूर जाननी चाहिए।
7: जी, तो मुझे ऐसा लगा कि आज के दिन कैट की डिस्कशन हो रही है और काफ़ी लोगों ने कैट का नाम सुनते ही मुँह बनाकर बिल्ली की बात कर रहे हैं, बिल्ली कौन पालता है। तो ये वाले लोगों को मैं बता दूँ कि भाई बिल्ली कोई नेगेटिविटी का प्रतीक नहीं है, उससे घर में एक्सीडेंट्स नहीं होते, बल्कि उसका मेन कारण यही है कि जो पहले का ये एक स्टोरी थी, जब से ये बाइक्स आ गई हैं, कार आ गई है, तब से इंसान को ये, जब इंसान चलाने लग गए तो वो जान गया है कि नहीं, अगर चमक रही है तो वो आंखें, अगर किसी की चमक रही है तो वो बिल्ली ही होगी, कोई बड़ा जानवर नहीं होगा।
6: बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए लिसनर्स, मिथ जो होते हैं, यानी कि एक कहते हैं ना, अरे ये तो पुराने जमाने की बात है, तो पुराने जमाने से अगर कोई चीज चली आ रही है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। हम क्या मानते हैं, अरे नहीं हमारे हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हाँ बहुत सारी बातें सच होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ मिथ्य होती हैं, सिर्फ अंधविश्वास होती हैं। तो उन्हें हटाएं और लाइफ को अपने नज़रिए से देखें, क्योंकि जब हम चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं तो आई थिंक हमें उनका एक अच्छा मीन भी पता चलता है। तो चलिए अब आते हैं कि नेहा जी आ चुकी हैं जो कि बहराइच से सुनती हैं। हेलो नेहा जी, कैसी हैं आप? तो लिसनर्स चलिए चलते हैं शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक पे, नहीं कहूंगी एक प्यारे से सॉन्ग की तरफ। इस सॉन्ग के मिड में आएंगे हम स्टोरी को लेकर के, क्योंकि तब होगा हमारा स्टोरी टाइम, और बस स्टोरी सुनाएंगे और फिर आपके साथ और भी बातें करेंगे, लेकिन इस प्यारे से सॉन्ग के साथ। तो आइए सुनते हैं।

0: बिल्कुल, तूने जिंदगी में आकर जिंदगी बदल दी। तो भाई किसने जिंदगी में आकर जिंदगी बदल दी आयुषी?
1: मुझे लगता है कि फोन ने।
0: फोन ने?
1: हाँ,
0: मुझे तो लगता है कि हमारे 89.6 एफएम ने।
1: वो इतना सच नहीं बोल रहा था अंशिका, इतना सच नहीं बोल रहा था।
0: चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी सच अच्छा होता है
1: जी। चलते हैं अपनी अब नए मुद्दे की तरफ। मुद्दा यानी हमारा कंटेंट। कंटेंट ये है कि भाई आज एक बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही फनी स्टोरी, ये कुछ इंस्पिरेशन आपको मिलेगी, कुछ मोरल आपको मिलेगा, कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो भाई स्टोरी ऐसी है कि एक बहुत बड़ा कमरा होता है अंशिका, ठीक है, और उस कमरे में 10 स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नाम होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
0: ओके,
1: अब ये जो 10 स्टूडेंट्स होते हैं, अब ये क्या करते हैं, जो 9 होता है वो 8 को एक जोरदार थप्पड़ मारता है।
0: क्यों?
1: क्योंकि 9 से भी यही सबने पूछा कि तुमने 8 को थप्पड़ क्यों मारा, तो उसने कहा कि क्योंकि 8 मेरे से छोटा है तो मैं थप्पड़ मारूंगा।
0: ओके,
1: अब बेचारा 8 ने अपना गुस्सा निकाला 7 पे, यानी 7 पे। 7 ने 6 पे, 6 ने 5 पे, 5 पे 4, 4 ने 3, 3 ने 2, 2 को 1। अब ये एक दूसरे को लोग पीट रहे हैं, ठीक है। अब बेचारा 0 जो है वो बड़ा ही सहमा हुआ, डरा हुआ बैठा है कि भाई 0 तो सबसे छोटा है।
0: हाँ।
1: अब 0 को तो सब मिलके मारेंगे,
0: तो उसका बेचारे
1: और 0 किसी को मार नहीं पाएगा क्योंकि वो तो सबसे छोटा है, उसके बाद तो कोई है नहीं। तो ये वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। फिर जब बारी 1 की आई 0 को मारने की, तो 1 ना थोड़ा सा हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की तरह है, पता है कैसा, समझदार, बहुत ज़्यादा
0: समझदार।
1: तो उसने क्या किया, उसने 0 से एक डील की कि भाई देखो तू तो बहुत छोटा है, ठीक है, और तुझे ये सब मिलके मारने वाले हैं, मैं एक बार मारूं फिर सभी मारेंगे, तो क्यों ना तुम और हम एक हो जाएं और मिलके 10 बनाएं।
0: वाह।
1: और 10 मिलके इन सब की बैंड बजाएं।
0: ये तो बहुत अच्छी डील है।
1: कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है, ये हमें ये सिखाती है कि जब हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, दो लोग बिल्कुल निकम्मे हैं, कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमारे 0 और 1 थे, ठीक है, ये दोनों ही बहुत छोटे नंबर्स में काउंट होते हैं, लेकिन अगर हम 7 हो जाएं तो हम इतने बड़े हो जाएंगे कि खुद 9 भी हमसे छोटा पड़ जाएगा।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये स्टोरी सिखाती है, जो एक मॉडल देती है हमारे छोटे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को, वो ये है कि एकता जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा बल होता है। तो कहीं ना कहीं अपनी एकता को आप हमेशा बना के रखें, आपकी एकता आपके लिए बहुत ही ज्यादा
1: इंपॉर्टेंट होती है। और इसी तरह से एक स्टोरी और है, मतलब एक स्टोरी नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं, कि जब हमारे हाथों में एक लकड़ी होती है वो आसानी से टूट जाती है, लेकिन जब लकड़ी का बंच होता है, गट्ठर होता है, वो नहीं टूटता। इसीलिए एकता ही सबसे बड़ी चीज है। जब आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अगर आपके साथ कोई मिल जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत जो है आप हल कर ले जाते हैं।
0: कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पावर हमारी एकता में ही होता है, क्योंकि एकता में बल होता है। जैसे कहते हैं ना कि अरे एकता में तो बहुत बल है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जब सभी एक साथ होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हाथ की पांचों उंगलियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जब वो मिलकर मुट्ठी बन जाती हैं, तो उनका सामना करने के लिए एक बार हर किसी को कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है कि हम कैसे उसे फेस करें। तो चलिए लिसनर्स आते हैं चैट बॉक्स में।

0: चैट बॉक्स में नव्या जी आ चुकी हैं जो कि हमें गोंडा से सुनती हैं, लिख रही हैं गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप दोनों?
1: हम दोनों नहीं अच्छे हैं।
0: क्यों?
1: अरे नव्या जी इतनी लेट से आई हैं।
0: हाँ, ये बात
1: आपके लिए तो हम लोग नहीं अच्छे, आज हम लोग बहुत बुरे हैं,
0: तो नव्या जी जल्दी आने की कोशिश करें। जैसे मैं हमेशा कहती
1: हूँ, अगर कल नव्या जी जल्दी आई तो ही हम लोग खुश होंगे।
0: बिल्कुल, तो मैं हमेशा कहती हूँ ना, आते आते आइए और जाते जाते मत आइए, तो आप आते आते आइएगा। और इसी के साथ में ओके लिख रही हैं नेहा शर्मा जी, वाओ नाइस। नेहा जी लिख रही हैं बहराइच से कि वाओ नाइस स्टोरी, थैंक यू। और नागेश्वर जी लिख रहे हैं एक और जीरो दोनों मिल गए तो नौ से बड़े हो गए, इसलिए जीरो किसी भी संख्या में लग जाता है और उसका मान 99 बढ़ जाता है, 99% बढ़ जाता है। बिल्कुल नागेश्वर जी, देखा नागेश्वर जी भी कभी कभी समझदारी वाली बातें कर लेते हैं आयुषी।
1: अरे कहा नहीं, हमारे घर के जो समझदार व्यक्ति हैं वो हमारे नागेश्वर जी हैं, ठीक है?
0: बिल्कुल समझदार हैं और समझदारी की बातें करते हैं और करनी भी चाहिए। और लिख रही हैं सॉरी मैम पैकिंग कर रही हूँ, नव्या जी लिख रही हैं इसलिए टाइम नहीं हो पाया। ओके, यानी कि आप कहीं जा रही हैं बाहर, चलिए कोई बात नहीं। और नागेश्वर जी लिख रहे हैं पांच उंगलियां मिल जाती हैं तो
1: क्या मुट्ठी बन जाती है, मतलब घूंसा लग जाता है,
0: घूंसा लग जाता है, नहीं घूंसा ना लगे मुट्ठी बने तो ज्यादा बेटर है।
1: हमें वॉयलेंस नहीं फैलानी है नागेश्वर ठाकुर जी, देखिए प्यार से जो काम हो सकता है ना, बहला के हमारे घर वाले कहते नहीं है कि जो काम बहला काम निकलवाओ वो ज्यादा ठीक है, अगर आप लाठी डंडा घूंसा चलाएंगे ना तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे बन जाएंगे। और फिर भाई हमारे गोंडा में चली क्या रहा है, इंसान गुस्सा होकर टावर पे चढ़ जा रहा है। तो आप अगर आपके भी मन में ये विचार आ रहा हो कि टावर पे चढ़े, तो आपको बता दें कि आप टावर पे चढ़ेंगे अगर अपनी जान जोखिम में डालेंगे तो इससे नुकसान ना हमारा होगा, ना पुलिस वालों का होगा, ना गवर्नमेंट का होगा, ना प्रशासन का होगा, इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा।
0: बिल्कुल,
1: तो भूल कर भी ये गलतियां बिल्कुल ना करें और अपने आप का अपने ब्रेन का पूरी तरीके से इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल, तो चलिए नागेश्वर जी अब टाइम भी हो गया, यानी कि हमारी जो घड़ी है उसने कह दिया है कि हमारा समय हो गया है आपको बाय-बाय करने का। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, रेडियो ज्ञान असली सुनते रहिए और पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा है। और हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे आपके अपने पसंदीदा शो सुन सहेली में, तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
7: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
8: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
9: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
10: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
9: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
11: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
12: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
11: और जेंट्स के लिए?
12: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
11: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
12: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
13: अरे सुना
14: क्या?
13: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
14: वाओ!
13: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

जी अशोताओं, आज फिर से एक दफा आप सभी का मैं वंदन नमन करती हूँ और स्वागत करती हूँ आपके अपने फोनी फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गुंडा में। आज की तारीख है 2 जून। 2 जून काफ़ी फेमस है वैसे, और इस पे काफ़ी सारे मिमिक भी बने हुए हैं, और 2 जून की रोटी बड़ी कीमती मानी जाती है और 2 जून की रोटी के लिए इंसान बहुत सारे काम करता है। फिलहाल उस पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम चलेंगे उस ओर जिस ओर हमारी आई हुई है फरमाइश। आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लंगर लगे हुए हैं और आज भी है मंगलवार, और मंगलवार के चलते एक प्यारी सी फरमाइश हमारे पास में आई हुई है, तो इसी से श्री गणेश करेंगे यानी कि शुरुआत करेंगे आज के शो की आपकी। और उससे पहले मैं बता दूं, आपने ट्यून करके रखा रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पे, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और शो चल रहा है आपका फोनी फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा। और अगर आपको भी अपने गानों की फरमाइशें हम तक पहुंचानी है तो आपको कॉल मिलाना होगा और थोड़े से जल्दी मिलाना होगा ताकि आपके गाने रहना जाए हर रोज की तरह। तो नंबर वही है 6393316429। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आज की पहली फरमाइश की ओर, और इस फरमाइश को लेते हैं हम सुरेंद्र यादव जी की झोली से फ्रॉम गौरा चौकी, और गौरा चौकी से सुनने वाले सभी लिसनर्स का स्वागत करती हैं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं इस प्यारे से बजरंग बली की भेंट की ओर, और देन आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में। एंजॉय करिए और प्रभु की कृपा पाते रहिए।

प्रिय श्रोताओं, भी आपने इस भजन का आनंद उठाया जो कि था जेठ महीना तपती गर्मी, दिन है मंगलवार, पवन सुत सुन लो करुण पुकार। वाकई करुण पुकार सुनने वाला कोई है तो या तो आपके माँ बाप हैं, कभी कभार आपके मित्र भी सुन लेते हैं, दोस्त सुन लेते हैं, या फिर फाइनली आपको अगर कोई सुनता है तो वो ऊपर वाला है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई आवाज रिकॉर्ड कॉलोनी गोंडा से, और ये डिमांड हमारे सुनने चाहते हैं हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी। चलिए सुनते हैं कि आज ये क्या सुनना चाहते हैं, और आवाज है हमारे किशोर दा की। और किशोर दा की आवाज में भाई बड़ा ही प्यारा सा कोई नगमा है, चलिए पहली दफा हम भी सुने, आप भी सुनिए, आपके अपने शो कॉलोनी गोंडा के साथ में।

क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी, सूदी सी एक फीलिंग आई होगी आपके पास में और इस गाने के माध्यम से। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है मोहम्मद वारिस जी की ओर से। अगर आप भी अपनी डिमांड्स को ट्यून करवाना चाहते हैं तो नंबर मिला लीजिए, आपके स्टूडियो का वही नंबर है 6393316429। फिलहाल के लिए चलते हैं इस डिमांड की ओर। गाना बेहद प्यारा है और मूवी भी उतनी ही खूबसूरत है। फिलहाल अगर आप लोगों में किसी को पता है कि इस मूवी का क्या नाम है तो जरूर बताइएगा। वैसे ये टाइटल ट्रैक है, इतना तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया है।

0: श्रोताओं, अभी आपने एंजॉय किया मोहम्मद वारिस जी की डिमांड पे ये सॉन्ग, और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। लेकिन उससे पहले लेना चाहेंगे हम आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेजेस। जी हाँ, सबसे पहले अगर हमने चैट बॉक्स की ओर रुक किया तो हमें दिख रहा है हमारे सुरेंद्र यादव जी का मैसेज, उसके बाद है नव्या जी गोंडा से, आपका भी स्वागत है। नीना जी है भाई, सभी को नमस्कार बोलते हुए उन्होंने 2 जून की रोटी मुबारक की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 2 जून की रोटी के लिए। और इसके बाद धर्मेंद्र मोहन भारती जी हैं वाज विकास कॉलोनी गोंडा से, और नमस्कार हमको बोला है, थैंक यू। और साथ ही में लिखा है कि भाई कॉलर ट्यून गोंडा सुनने वाले सभी श्रोताओं को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, ओके थैंक यू। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो अब्दुल मुजीम साहब हैं जो हमें सुनते हैं, कहाँ से सुनते हैं, अहमदाबाद से सुनते हैं। भाई बड़ा जोर देना पड़ता है हमको हमारे जहन पे। और फिर इन्होंने लिखा है, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। ओ माय गॉड, कितनी गहराई बात कह दी आपने। चलिए फिर से पढ़ते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगी, हम अपनी जान के दुश्मन को ही अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को तो हिंदुस्तान कहते हैं। ओ माय गॉड, किलिंग किलिंग लाइन, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वाला मैसेज अब्दुल मुजीम साहब। इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज में हमारे के गुप्ता जी हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, आपको हम जस्ट ऐड करने वाले हैं, परेशान न होइए, नेक्स्ट सॉन्ग में आपको हमने ऐड कर लिया है मान लीजिएगा, क्योंकि गाना बहुत ही प्यारा है। कुछ पल के लिए मान लीजिएगा आप वही हैं जो उस गाने में कहा जा रहा है। फिलहाल नेहा जी हैं यानी कि हमारी मंगू जी आ गई हैं, और बहराई से नमस्कार आपको भी, चंगू मंगू की जोड़ी हुई है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर, और नेक्स्ट मैसेज में आप सभी की चिट चैट है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है कृष यादव जी की ओर से, मऊ से, और मऊ से ये सुनना चाहते हैं क्या, आइए आपको सुनाते हैं। और इसमें हमने ऐड किया अपने के गुप्ता जी को तिरंगा कॉम्प्लेक्स से। के गुप्ता जी आपके लिए स्पेशली ये वाला सॉन्ग है, एंजॉय करिए 3 से 4 के सफर को। मैं हूं आपके होस्ट चंदू सार्जकांक्ष, और आप शो सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गुंडा।
1: नहीं डरता किसी के बाप से,
0: बड़े दिनों बाद भाई सुपरमैन बन जाइए सभी के सभी।

जी हाँ, क्रिश यादव जी की डिमांड पे मऊ से ये डिमांड आई हुई थी भाई, तेवर मूवी से बहुत ही जबरदस्त वाला सॉन्ग अभी आपने एंजॉय कर लिया। और अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और ये डिमांड आई है अजीत जी की ओर से मुंबई से। चलिए सुनते हैं, इनके द्वारा भेजा गया ये सॉन्ग, और इनके साथ में शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोहम्मद हुसैन जी और अहमद हुसैन जी भी हमें सुन रहे हैं मुंबई से। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वाला सॉन्ग एंड दिस लवली वाला मैसेज बताने के लिए कि आपके साथ में हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। थैंक यू।

अजीत साहब, मैं बताना चाहूंगी आपको स्पेशली कि किसी ने कभी पहली दफा मुझे ये गजल भेंट की थी, बहुत बहुत शुक्रिया वो यादें वापस से दोहराने के लिए।

जी हाँ, जब उस्तादों के बीच बैठ के कोई नगमा तैयार होता है तो कुछ ऐसे खास नगमे तैयार होते हैं। अजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी सी गजल आप ढूंढ के लाए हम तक आपने पहुंचाया उसके लिए। नागेश्वर ढाकर जी आ गए हैं रतलाम की गलियों से और प्रमुख कुमार जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है श्रावस्ती से। नव्या जी थोड़ा सा वेट करें, आपका गाना बस दो

के बाद में है। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और अजीत जी एक बार फिर से आपको मैं धन्यवाद करूंगी इस सॉन्ग के लिए। और नेक्स्ट डिमांड हमारे पास में अब्दुल मुजीम जी की, जो कि हमें सुनते हैं अहमदाबाद से। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये एक और कलाम। एंजॉय करते इस ट्रैक को।

कुछ म्यूजिक तो ऐसे तैयार होती हैं कि बस दिल को छू जाती है। उन्हीं में से एक नगमा अभी आपने एंजॉय किया है कलाम के रूप में। और हमारे बीच में उपस्थित है रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी, जो हमें सुनते हैं इलाहाबाद से। चलिए भाई, नेक्स्ट डिमांड हम प्ले करते हैं। और ये गाना आज तक हमने वैसे इनके नाम कोई गाना नहीं किया, मेरा मन करा आज कर देते हैं। तो फिर चलते हैं अमित कुमार जी की डिमांड के साथ में, और ये सॉन्ग हम डेडिकेट करते हैं अपने राम नरेश मिश्रा जी को। एंजॉय करिए इस ट्रैक को। 3 से 4 के सफर में मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जकांक्षा। नेक्स्ट डिमांड लेके हम आएंगे अपने प्यारे लिसनर रमेश कुमार जी की, जो हमें सुनते हैं महाराष्ट्र से। देन नव्या जी, आपका सॉन्ग होगा, बने रहिए, एंजॉय करते रहिए।

जी हमारे बीच में उपस्थित है ममता कसौधन जी चैट बॉक्स में, और इनका कहना है मेरा भी एक सॉन्ग की डिमांड है। आप हमें लग रहा है कि पहली दफा आपने हमसे डिमांड की है, फिलहाल मैंने आपको नंबर मेंशन कर दिया, प्लीज आप कॉल कर लें क्योंकि आपका फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम है, यानी आपको कॉल करके ही अपनी डिमांड देनी होती है। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, आप एक बार कॉल कर लें, आपकी डिमांड जरूर कम्प्लीट होगी। एंजॉय द ट्रैक।

बड़ा ही प्यारा सा डेडिकेशन किया है आपने नागेश्वर जी। प्रमुख जी आपके लिए बहुत प्यारा सा डेडिकेशन है, एक दफा पढ़ लीजिएगा। प्ले तो हम नहीं करेंगे क्योंकि कॉल बिना हम प्ले नहीं करते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। उससे पहले आप सभी से पूछना है कि आप लोगों को भी ये खबर मिली कि आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन होने वाला है प्रीमियम, यानी कि उसमें अब लगेंगे पैसे कुछ दिनों में, तो क्या आप तक ये खबर पहुंची या नहीं? और अगर ऐसा हो जाएगा तो आपकी जिंदगी कैसी जाएगी, आप जरा बताएं अगर बताना चाहें। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हम तक पहुंची हुई है रमेश कुमार जी की तरफ से। आइए जाकर इस ट्रैक से, और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी सी डिमांड के लिए अमित कुमार जी।

0: लहरों की मस्ती।
1: भाई बाकी जिंदगी में कहीं भी लहरें आए इंसान संभाल नहीं पाता है, लेकिन अगर प्यार की कश्ती में लहरें आए तो बड़े गोते खाता है, बड़ा मजा आता है, मेरे को मालूम है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हमारे प्रमुख जी ने पूछा भैया क्या सवाल था, कौन सी खबर जरा दोबारा से दोहरा दें। तो सोशल मीडिया के जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी आप यूज करते हैं, लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, सभी होने वाले हैं प्रीमियम, यानी कि उस पे पड़ेंगे अब चार्ज कुछ दिनों बाद, फिलहाल अभी नहीं पड़ रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप जरा बताएं कि आप कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा यूज करना चाहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं नव्या जी की डिमांड के साथ में, और नव्या जी बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं, तो अपने दोस्तों के नाम इन्होंने ये दोस्ती का पैगाम भेजा है। एंजॉय करिए 3 से 4 के सफर में ये ट्रैक फ्रॉम शोले मूवी।

0: भाई दोस्ती चीज ही ऐसी होती है जो छोड़ना और तोड़ना नहीं चाहिए, लगातार उस पर बने रहना चाहिए। जैसे कि हमारे रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी हमें बड़े अच्छे से जानते हैं, हमें लग रहा है इनका कहना है कि हाँ आज भंडारा काफी जगह पे चलेगा, मैं यहाँ से लेकर के मेरे घर तक में कम से कम 15-20 लंगर तो लगे ही होंगे। मुझे झोले में सबके नाम की पूरियां और सब्जियां बटोरनी है और शाम तक में सारे लिसनर्स आएंगे तो उनको हमें परोस के खिलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सौभाग्य हमें अगर प्राप्त हो कि आप सभी हमारे यहाँ आए, स्टूडियो तक आए और मैं आप लोगों को एज अ लंगरिस्ट आप लोगों को लंगर का प्रसाद खिला पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वाला मैसेज। और चलते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। ये डिमांड हम तक आई हुई है राम नरेश तिवारी जी की ओर से और हमारी प्यारी क्षमा जी की ओर से। चल रहा है मलमास का महीना और इनका कहना है भैया कोई बम भोले का गाना, तो चलिए सुनाते हैं आप सभी को ये गाना। उसके बाद आते हैं देवी जी के सॉन्ग के साथ, देन हमारी नेक्स्ट डिमांड होगी ममता कसौधन जी की जो मैं सुनती है मन का पुर से। एंजॉय दैट ट्रैक, वैसे बड़ा ही प्यारा सा भजन है भोले बाबा का।
1: हाथ जोड़

0: हाँ जी, और अभी आपने एंजॉय किया भोलेनाथ का ये प्यारा सा ट्रैक। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे प्यारे देव प्रसाद जी की, और देव प्रसाद जी को सुनना है बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटके।
1: कोई तुम सा न बढ़ के महान, जय श्री राम।
0: भाई नागेश्वर जी कहीं जाइएगा नहीं, आप ही का गाना आप ही के नाम से आया हुआ है, तो इंतजार करिएगा, आपका गाना जरूर प्ले किया जाएगा। भाई किसी ने कॉल करके हम तक डिमांड पहुंचा दी है।

जी के लिए एक और भेंट आई हुई थी जो की थी हमारे देव प्रसाद जी की ओर से। और अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर जो कि ममता कसौधन जी की, जो मैं सुनती हूँ मनकापुर गोंडा से। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 3:42 हो गए भाई स्टूडियो क्लॉक, और चलते हैं रफ्तार को थोड़ा सा धार देते हैं। आप सभी की डिमांड आज हम पूरी करके ही जाने वाले। फिलहाल ये टाइटल ट्रैक तो नहीं है, लेकिन ये वो ट्रैक है जो मोहब्बत की थोड़ी सी पराकाष्ठा को आप तक पहुंचाना हर दफा कोशिश करती है जब भी आप इसको ट्यून करते हो। क्योंकि वाकई अगर सांसों की माला पे आप किसी को सिमरते हो, यकीन मानो मोहब्बत से उसके आगे कुछ भी हो ही नहीं सकता है। अगर हर सांस पे अगर आप किसी का नाम लेते हो, उफ क्या बोले फिर उस मोहब्बत को। एंजॉय करिए।

हाँ जी, ममता जी की डिमांड पे अभी आपने ये प्यारा सा नगमा सुना, और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और नेक्स्ट डिमांड जो हम तक आई हुई है वो आई हुई है किसकी तरफ से, ये आपको बता देते हैं। ये आई हुई है हमारे पास में मोहम्मद अयूब जी की ओर से। चलिए मोहम्मद अयूब जी की इस डिमांड को कंप्लीट करते हैं, देन आते हैं सुरेश कुमार जी की डिमांड के साथ में, जो मैं सुनते हैं चौक गुंडा से, फिर होंगे दिलीप कुमार जी, और देन होंगे हमारे एहसान जी, उसके बाद होंगे हमारे एक प्यारे से लिसनर के नाम, बड़ा ही प्यारा सा नगमा आया हुआ है, और लास्ट डिमांड अगर वक्त रहा तो नीना जी हम आपका जरूर कंप्लीट करेंगे। फिलहाल ये ट्रैक एंजॉय करिए मोहम्मद अयूब जी की डिमांड पे।

क्या बात है भाई, बहुत ही मस्त सी कव्वाली थी, लेकिन वक्त की कमी के कारण मैं फटाफट से आगे बढ़ना चाहूंगी ताकि सभी की डिमांड्स मैं पूरी कर पाऊं। आज मैं चाहती फाइनली सभी की डिमांड कंप्लीट करूं, तो चलते हैं सुरेश कुमार जी की डिमांड की ओर, जो मैं सुनते हैं चौक गोंडा से।

कि भाई सुरेश कुमार जी का सॉन्ग काफी प्यारा लगा इनको, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है किसकी, चलिए बता देते हैं आप सभी को। ये डिमांड आई हुई हमारे पास में दिलीप कुमार जी की ओर से। गाना बड़ा ही प्यारा है क्योंकि ये गाना फिल्माया गया हमारी चीची जी पर, चीची जी पर फिल्माया गया हर एक गाना हमारे, तो दिल के बेहद करीब होता है। एंजॉय करिए इस ट्रैक को। फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेके मैं एहसान साहब जी का।

श्रोताओं, आप सभी की कॉल्स भी आती रहती है बीच बीच में, और हम भूल जाते हैं कि भाई वक्त हो चला है अब आप लोग से बाय करने का कुछ ही पलों में, लेकिन उससे पहले हमें डिमांड कंप्लीट करनी है। और ये डिमांड नेक्स्ट हम ट्यून करते हैं अशांत जी की, गाना बड़ा ही प्यारा था दिलीप कुमार जी, लेकिन इससे ज्यादा वक्त नहीं कि मैं आपके गाने को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकूं और उसको दो और प्ले कर सकूं। फिलहाल बढ़ते हैं अशांत साहब के इस डिमांड के साथ में।

नागेश्वर जी आपके लिए स्पेशली गाना आया हुआ है। नीना जी आपका भी सॉन्ग है, दो पल दीजिए हम प्ले करते हैं, क्योंकि ये जो गाना आया हुआ है वो आया हुआ है प्रमुख जी की ओर से। भाई नागेश्वर जी ने प्रमुख जी को डेडिकेट किया, प्रमुख जी ने कॉल करके कह दिया भैया इन्हीं को डेडिकेट करके ये सॉन्ग प्ले कर दीजिए। तो एहसान जी की इस डिमांड के बाद में अब हम चलते हैं अपने प्यारे लिसनर यानी कि प्रमुख जी की डिमांड की ओर, लेकिन पहले इस गाने को कंप्लीट होने देंगे, हम आधा काम नहीं करते हैं। एंजॉय द ट्रैक।

की तरफ से गाना, मतलब दोनों को एक दूसरे को एक ही गाना इन लोगों ने डेडिकेट कर दिया। चलिए एंजॉय कर लेते हैं, आखिर ये गाना है क्या, बड़ी देर से सस्पेंस क्रिएट हो रखा है, आइए सुनते हैं इस नगमे को। देन हम सुनेंगे नीना जी की डिमांड को और बसंत कुमार जी का भी कॉल आया हुआ था हमारे पास में। चलिए फिलहाल के लिए इस गाने के बाद हम लेंगे नीना जी की डिमांड को और इसमें ही हम ऐड कर देते हैं अपने बसंत कुमार जी को। एंजॉय द ट्रैक, बड़ा प्यारा सा सॉन्ग है, उससे कई गुना ज्यादा बेहतरीन ये मूवी है मोहब्बतें।

बंधन कितना भी भारी हो, जब दोस्ती की बारी होती है सारे बंधन तोड़ के इंसान कॉल मिला ही लेता है, मजबूर हो जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारी नीना जी के लिए है। तो चंगू मंगू की जोड़ी को हम डेडिकेट करते हैं प्यारा सा सॉन्ग, और इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं शाम के शो यानी कि आपके अपने गोंडा मैसेज मसाला के साथ में, विद आरजे बीना वाला, लेकिन आज आप फिर से एंजॉय करेंगे अपनी आरजे आकांक्षा को। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए और सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। टेक केयर, बाय बाय।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करते

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
3: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। और आपके साथ मौजूद है आपके अपने आरजे बिना, आपके शो विज्ञान शाला लर्निंग बियॉन्ड क्यूरोसिटी, यानी कि क्यूरोसिटी के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं विज्ञानशाला में। और विज्ञानशाला की बात अगर करूं तो सबसे पहले तो मुझे याद आ जाता है अभी हाल ही में बीता आपका और हमारा फेवरेट डे, यानी कि अर्थ डे, हमारी अर्थ डे, यानी कि मदर अर्थ डे, जितने भी नाम लूँ उतने कम है। और इस डे को लेके बहुत सारी जगह अलग अलग काम किए गए, हम सब ने भी पेड़ पौधे तो लगाए ही होंगे, लेकिन पेड़ पौधे लगा देने मात्र से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं। समस्या का समाधान तब होगा जब हम समस्या ना बनाएं, यानी कि समस्या सबसे बड़ी है पृथ्वी के लिए प्लास्टिक और पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के लिए तो हम बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं, व्हीकल कम कर रहे हैं, व्हीकलों को हम ईंधन के रूप में ईंधन से ना चला करके हम इसे सोलर पैनल्स, यानी कि सोलर ऊर्जा से चलाएंगे, सोलर एनर्जी से चलाएंगे, तो पोल्यूशन जो है वो कम होगा। तो ये तो पोल्यूशन की बात होगी। और क्या है जो हमारी मदर अर्थ को प्रभावित कर रही है, और क्या है जो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है? वो है प्लास्टिक। और प्लास्टिक को लेके मैं अगर अपने गोंडा शहर की बात करूँ तो बहुत सारे विद्यालयों में, जैसे स्पेसिफिकली मैं सेंट जेवियर स्कूल की बात करूँगी, उस स्कूल में मैंने देखा कि बच्चे जो हैं इको ब्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं खर्चा करके बनाते हैं, उन्हें जहाँ भी कहीं प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई मिल जाती है वो उससे इको ब्रिक्स बनाते हैं। बहुत बढ़िया, वहाँ के मतलब जो भी टीचर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, उन सभी ने एक अच्छी सोच को जागृत किया। मैंने सोचा आप लोगों को भी बताती हूँ कि आपके भी घर में अगर बोतलें आ रही हैं तो उसको इधर उधर ना फेंके। और इसी के साथ ब्रिक्स बनेंगी कैसे? आप सोचेंगे जब सीमेंट यूज ही कर लिया, मिट्टी यूज ही कर ली तो ब्रिक्स कैसे बनी? नहीं, बाद मजबूती की आ जाती है ना, तो ब्रिक मतलब मजबूत होनी चाहिए। तो उसे मजबूत करने के लिए देखिए प्लास्टिक को प्लास्टिक से ही मजबूत किया जा रहा है। आपके घर में चिप्स के रैपर, पैक्ड मटेरियल तो आता ही है, आजकल तो दालें वगैरह भी प्लास्टिक की पॉलीथीन में पैक होके आती हैं, मतलब एकदम एयर टाइट। तो उन प्लास्टिक की पन्नियों को आपको इकट्ठा करना है और उसको बारीक बारीक मतलब सीजर से काटना है। जैसे घर में आप फ्री बैठे हैं तो थोड़ा सा काटिए, अगर हम दिन में 15 मिनट भी निकालें अपनी मदर अर्थ के लिए तो बहुत होगा। उसको बारीक बारीक काटना है और काट के उस बोतल में भर देना है, और बोतल में तब तक भरना है जब तक बोतल एकदम टाइट ना हो जाए, एयर टाइट मतलब फुल, कि अब जगह नहीं है सांस लेने की, तो उसको फिर ढक्कन लगा के बंद कर देना है। ऐसे करके कई सारी आप बोतलें बना लेंगे, और जब भी कहीं घर बन रहा है या कुछ बन रहा है, मान लीजिए घर के बाहर आपको पायदान बनवाना है तो ईंटों की जगह उनका यूज़ करके सीमेंट में उन्हें जमवा सकते हैं। ब्रिक तो ईंट तो टूट भी सकती है कुछ भारी चीज़ में, ये ना टूटेगी ना कुछ होगा, बल्कि मजबूती की मजबूती, और प्रदूषण से हम बचेंगे। और ऐसा तो है ही, जोड़ना, बनाना, बिगाड़ना तो लगा ही रहता है हमारे घर में। गार्डन में हम लोग देखिए ईंटों की वो बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं, क्यारी को ईंटों की जगह बनाने के हम प्लास्टिक इन बोतलों से क्यारी बना सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। अब देखिए, अब बात करेंगे कि जो हमारे हाल ही में हो रहे सर्वेक्षण हैं उनमें क्या बात हो रही है, तो आज बात करूंगी इसके बारे में भी। और बहुत सारे पहलू मैं आज आप लोग के साथ चर्चा करने के लिए लाई हूँ, मतलब बहुत सारी बातें। कहते हैं ना कि विज्ञानशाला में आके जो लर्निंग है वो क्यूरोसिटी को भी और बढ़ा देती, जितनी क्यूरोसिटी के साथ हम लोग आते हैं उस क्यूरोसिटी में भी इंटू 100 हम करके तब जाते हैं कि अगली बार ये चीज़ें बात होंगी। तो जैसा कि हमने मदर अर्थ डे 22 को सेलिब्रेट किया, आज बात भी हो रही है थोड़ी बहुत, और बात के साथ साथ हम लोग देखिए चर्चा कर रहे हैं आज स्पेसिफिकली मलेरिया डे भी था, वर्ल्ड मलेरिया डे अभी जल्दी गया है 25 तारीख को, और इसी के साथ मैं आज एक देश की खास चीज़ को लेके आई हूँ कि आयुष्मान दिवस क्या होता है, ये भी बताना है मुझे आप लोग को। तो बहुत सारी बातें होंगी, तो आज जुड़े रहिएगा इन सारी बातों को सुनने के लिए। और सबसे पहले हम लोग एक गाना सुनते हैं और गाना सुनने के बाद आप लोगों से बात करते हैं आगे किस लेवल पे हमारी ग्लोबल वार्मिंग पहुंच रही है और पृथ्वी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
9: गोंडा शहर की धड़कन।
10: तो वापस से आप सभी का स्वागत है विज्ञान शाला में, लर्निंग बियॉन्ड क्यूरोसिटी। और जब क्यूरोसिटी की बात होती है तो हम लोग की जो जिज्ञासा है ना, वो कहीं दूर पहुंच जाती है कि अब और क्या जानेंगे, अब और क्या सीखेंगे और क्या क्या हम इस दुनिया को बताएंगे। तो जब दुनिया को बताने की बात होती है तो जब पृथ्वी के लिए हम सोचते हैं तो दुनिया क्या, हर इंसान एक कश्मकश में आ जाता है कि आने वाले समय में पृथ्वी की उम्र कितनी बची है, क्या पृथ्वी हमारे आने वाले जनरेशन्स को अपना वही प्यार देगी जो उसने हमें दिया है। और देखिए बढ़ती हीट वेव का भी कारण कहीं ना कहीं पृथ्वी को पहुंचता नुकसान है। देखिए हमारी माँ को अगर नुकसान पहुंचेगा, मतलब हमारी पृथ्वी माँ को नुकसान पहुंचेगा तो इंसान तो परेशान होता ही जाएगा। और गर्मी के मौसम में बहुत सारी मौतें शरीर में पानी कमी होने की वजह से हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं और उन कारणों को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। और सच्ची बताऊँ ना, मतलब दिल दहल जाता है सोच सोच के कि कैसे कैसे कैसे हम अपनी पृथ्वी को आने वाले समय में बचाएंगे। मन तो करता है पृथ्वी को एक चादर पहना दूं और आती धूप की किरणों से और आने वाले जितने भी मतलब परेशानियां उन सब से बचा लूं, लेकिन क्या करें, हमारी जो विज्ञान है वो भी इसमें कुछ नहीं कर रही है। और हम तो इतना तक सोच रहे हैं कि धरती के साथ साथ और भी हम प्लैनेट्स पे अपने जीवन के लिए सोचें, क्योंकि धरती पे जब भार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी बढ़ेगी ना। तो सारी चीज़ें सोचते हुए विज्ञान भी बहुत कोशिशें कर रहा है पृथ्वी को बचाने की, और हम भी इस कोशिश में लगातार योगदान दे रहे हैं। और इस योगदान में हम ही नहीं और आने वाले समय में भी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, चाहे वो जलवायु हो, मौसम हो और पृथ्वी का बदलता मौसम है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी यहाँ के जलवायु की, कैसे पृथ्वी को जलवायु प्रभावित कर रही है। और सबसे खास बात यह है कि यमन का नाम तो आपने सुना ही होगा। यमन के लाल सागर के तट पर बसे कॉफी के व्यापार में एक मशहूर मोचा शहर नाम का जो है वो मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में बह के चला गया। कहते हैं वहाँ मोचा नाम का जो चक्रवात आया था उसने सब कुछ बहा दिया था। और ये एक उदाहरण दे रही हूँ मैं। इसी के साथ हमारे यहाँ भी आए दिन कभी कोई बाढ़ का केस बिहार में सुनने को मिल जाता है, कभी हुदहुद नाम के तूफान आ जाते हैं और तहलका मचा देते हैं, तितली ना जाने कितने तूफानों के बारे में हम लोग भी जानते हैं। और जब बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, तो उसमें जितने भी सदस्य हैं उन सभी ने 2020 में ही स्वीकार किया है कि पृथ्वी को आने वाले समय में समस्याएं बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ेंगी। और ये समस्याएं आगे बढ़ते तापमान की वजह से हो सकती हैं, बदलते जलवायु की वजह से हो सकती हैं। तो अब मैं बात करूंगी संयुक्त राष्ट्र जो कि आपदा न्यूनीकरण एजेंसी चलाते हैं, उन्होंने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से चक्रवाती तूफान को लेके बहुत सारी चीज़ें पहले भी बता रखी हैं। लेकिन क्या सिर्फ बात चक्रवात पे रुकती है? नहीं, सूखा, बाढ़, ये सारे ड्रॉबैक्स हैं हमारे पृथ्वी के परेशान होने के बाद। तो आपको क्या लगता है कि पृथ्वी का बदलता ये रूप इसके जिम्मेदार कौन है? हम सब, एवरीवन, जितने भी लोग हम सब सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, वो जो इस दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं, सब रिस्पॉन्सिबल हैं सिवाय बेजुबान जानवरों के। उन्होंने कभी पृथ्वी को क्षति तो नहीं एटलीस्ट पहुंचाई। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों, शेर तो जानवरों को खाता है? नहीं, वो एक फूड चेन को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे आने वाले समय में जो ग्रीष्म ऋतु है उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगी। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण जो है उसका दर बढ़ चुका है। इससे वातावरण में नमी की मात्रा की वृद्धि हुई है और भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा की जो है वो तीव्रता से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं बात करूं, कई स्थानों पर चरम वर्षा की घटनाओं की वृद्धि हो सकती है और कहीं कहीं तो सूखा मालूम पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि कैसे हम बचा सकते हैं अपने ग्रह को। तो पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, प्लास्टिक से अपनी पृथ्वी को बचाएं, और आने वाले समय में जितने भी लोग हैं जिनसे कि उम्मीदें की जा रही हैं, उम्मीदें किनसे की जाती हैं, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मतलब लैंड एरिया। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लैंड एरियाज हैं जहाँ पे हम पेड़ लगा के अपने देश को, अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। और अगर मैं गर्मी के मौसम की बात करूं तो हीट वेव के लिए भाई सबसे बड़ा कारण जो है ये वायुमंडल में बदलती ऊष्मा की किरणें जो कि तेज़ी से पृथ्वी की तरफ आ रही हैं और पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ा रही हैं, और इसके पीछे कारण है हमारा बढ़ता हुआ प्रदूषण, पेड़ पौधों की कमी जो कि सूरज की किरणों को काफ़ी हद तक यूज़ कर लेती थी, यूटिलाइज़ कर लेती थी और धरती को गर्म नहीं होने देती थी। तो धरती की जो ऊष्मा है वो तो बढ़ेगी जब पेड़ नहीं होंगे इन वेव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो पेड़ लगाइए, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करिए, प्रदूषण कम करिए। और देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि पृथ्वी को बचाना है ना कि सिर्फ चलाना है। आप लोग सिर्फ मतलब मैं कहूँगी कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए परेशान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस को चलाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पृथ्वी को बचाना। जिएंगे तभी तो इतने सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, इतने सारे गैजेट्स यूज करेंगे, नहीं तो क्या ही करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे पृथ्वी की, लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी मलेरिया की। जी हाँ, मलेरिया नामक बीमारी जो है उसने बहुत सालों में बहुत लोगों की जान ली है, लेकिन आप सभी को पता है ये होती कैसे है। तो मैं थोड़ा सा मलेरिया पे भी प्रभाव मतलब आज की शाम जो भी है इसमें आज लर्निंग बियॉन्ड जो क्यूरियोसिटी की बात हो रही है, तो लर्निंग वही है जो भी करंट चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में हमें पूरा ज्ञान हो। तो मैं मलेरिया के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से तो होता है, ये बात तो सही है, लेकिन मच्छर के ही काटने से बस नहीं होता है। मलेरिया जो है वो एक छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। चलिए जिसको जिसको पता है आप जल्दी से मुझे आंसर करें, मतलब जल्दी से चैट रूम में आंसर करें। मैं चाहूँगी कि आप सभी आज जानें कि मलेरिया के पीछे का असली कौन गुनहगार है, किसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो सबको पता चलेगा कि मलेरिया नामक बीमारी लाने वाला है कौन। तो मैं दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि भाई मलेरिया जो है वो एक ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है। ये सबसे पहले तो हमारे रक्त पे प्रभाव डालती है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को मैं जागरूक करती हूँ मलेरिया के बारे में कि मच्छर के काटने से फैलती है। मच्छर जो है यहाँ पे वेक्टर का काम करता है, यानी कि संक्रमण करता है, ये फैलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मच्छर को हमें रोकना है, क्या करना है, मच्छर को जन्म देने वाले जो एरिया है यानी कि पानी जहाँ रुकता है, जहाँ पे मच्छर ब्रीडिंग कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, उस जगह को साफ़ सुथरा रखना है, पानी नहीं जमा होना चाहिए, मच्छरदानी लगा के सोएं, ठीक है। फुल बाजू के छोटे बच्चे हैं तो घर में फुल बाजू के उन्हें कपड़े पहनाएं, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है। तो सफाई अगर होगी तो कोई भी बीमारी हमारे पास वैसे ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, और ध्यान रखते हुए थोड़ा सा खुद ही नहीं एक्टिव होना है, आसपास के लोग जिनको इसकी जानकारी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको जागरूक करना है आप सभी को। तो अगर साफ़ सफाई होगी तो निश्चित तौर पे मलेरिया क्या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे आसपास नहीं दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो आप लोग को बता दूँ कि मलेरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म, यानी कि मलेरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। ये दो ऐसे मतलब कह सकते हैं प्रोटोजोआ हैं जिनसे ये बीमारी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रोटोजोआ है इसको ऐसे समझते हैं ना कि ये वो दोस्त है जो दो लोगों के घर रह के गुजारा करता है, मतलब इसने रेंट पे रूम नहीं लेना है, अपना रूम नहीं लेना है, दो लोगों के घर रह के अपनी ज़िंदगी चलानी है, मतलब कि ये आधी ज़िंदगी अपनी मच्छर के मुंह में बिताता है, ठीक है, उसकी गट में जाता है थोड़े दिनों के लिए, फिर बाकी आके हमारी लीवर की सेल में रहता है और वहाँ जाके हमारी आरबीसी को नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से हमारी प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है, हमें बहुत ठंड लगती है, चिलिंग फीलिंग आती है और साथ में फीवर बहुत ज़्यादा आता है, सर में दर्द भी हो सकता है, ठीक है। तो कई सारे लक्षण हैं, और ये जो है ये मच्छर के मुंह में अपना रिप्रोडक्शन पूरा करता है और हमारे अंदर भी रिप्रोडक्शन करता है, मतलब ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह से करता है, यानी कि बड़ा खतरनाक जीव है, दो लोगों की ज़िंदगी को ख़राब कर डालता है। फिलहाल हम इसको कुछ ही नहीं बोल सकते भाई, ये तो भी अपना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो इनको भी ज़िंदा रहने के लिए एक मुलाकात करनी मच्छर से और एक इंसान से। तो इनको मुलाकात करने ही नहीं देंगे, हम पानी रुकने ही नहीं देंगे, हमारे पास इनको आने ही नहीं देंगे। और सबसे खास बात कि हर मच्छर से नहीं होता है। लेकिन अब आप सोचेंगे हर मच्छर से नहीं होता तो आर्जमीना क्या गारंटी वो मच्छर मेरे घर आए नहीं आएगा? वो नहीं भाई, मच्छर का कोई पहचान तो आप कर नहीं पाएंगे, लेके बैठे तो है नहीं कि आप टेस्ट करें कौन सा मच्छर कहाँ है कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको मच्छर को ही पैदा होने से रोकना है, ठीक है। तो मैं एनोफिलीज नाम का मच्छर है और ये एक मादा मच्छर है यानी कि फीमेल मॉस्किटो है। अब फिर कहेंगे कि लड़कियाँ जो है ना परेशानी करती हैं, तो ये बात हो गई, ठीक है। तो इस बात के बाद मैं आगे बात करना चाहूँगी आप लोगों से एक और ख़ास चीज़ की, जिसके बारे में आप सभी जानने के लिए हैं बिल्कुल परेशान। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन गन सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आप सुन रहे हैं शो विज्ञानशाला, लर्निंग बियॉन्ड क्यूरियोसिटी। और अभी थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे बहुत सारी।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
7: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
6: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें, तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
7: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
6: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
7: पालतू जानवरों को छाव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
6: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: तो वापस से आप सभी का स्वागत है भाई। और जैसे कहते हैं ना कि आज मैं नॉलेज का भंडार लेके आया हूँ आपके लिए। बिल्कुल, तो देखिए, जानेंगे नहीं तो क्यूरोसिटी कैसे नहीं मतलब आप लोग को परेशान करेगी। तो जानकारी रहेगी तभी और क्यूरोसिटी आएगी और हम पहचान पाएंगे और खोज करेंगे कि भाई एनोफिलीज मच्छर कौन है, क्यूलेक्स कौन है, और दोनों को पकड़ के उससे पूछेंगे क्यों, आखिर क्यों, क्यों हमें तुम काटते हो। क्यों नहीं तुम वेजिटेरियन हो जाते हो। वेल, आगे बात करेंगे भाई, उसका टेस्ट, उसको खून अच्छा लगता है। तो विज्ञान शाला में आज बात हुई मलेरिया की और हमने बात की हमारी प्यारी मदर अर्थ की, और अब मैं बात करने वाली हूँ आयुष्मान भारत दिवस की। मतलब आप कहेंगे ना, आज आरजे बिना एकदम पैकेज। यस, आज बहुत कुछ बताना है मुझे आपको। जैसे कहते हैं ना कि अब बहुत सारे लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होंगे, हो सकता है इसमें से कोई सवाल आके आपका दिमाग पंचर करने का सोचे, लेकिन आपको पहले से जानकारी है और आपका दिमाग पंचर हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए, 30 अप्रैल को मनाते हैं हम सभी ये दिवस, और ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट डे है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, चलिए जानते हैं। तो पहले बताऊँ, पूरे देश में 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस, और आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड वार्ड भी बनाया होगा ना, तो आज जानकारी पूरी दूंगी। तो एक ऐसा दिन जिसका मुख्य उद्देश्य है समाज में जो वंचित, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभता से पहुँचाने की और गुणवत्तापूर्ण सुविधा, मतलब देखिए सुविधा एक होती है, एक होती है गुणवत्तापूर्ण सुविधा, वो पहुंचाने को बढ़ावा देने के लिए, मतलब और मोटिवेट करने के लिए ये दिन बनाया गया। और ये दिन सबसे पहले 2018 में शुरू किया गया, ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, ठीक है। तो ये दिवस मनाया जा रहा है, और इस दिवस का जो उद्देश्य है वो समझिए कि 12 करोड़ से अधिक जो गरीब और संवेदनशील परिवार हैं, सेकेंडरी या कह सकते हैं कि माध्यमिक वर्ग के जो लोग हैं, या तृतीयक यानी कि टर्शरी वर्ग के लोग, जो लोग हैं जिनको देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए कभी भी कोई मतलब आर्थिक आवश्यकता हो तो वो परेशान ना हो, तो उन्हें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, ठीक है। और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र इसके लिए बनाए जाते हैं और इसकी योजना के तहत जो है ये केंद्र बनते हैं जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, गैर संक्रमक गैर संक्रमक रोग जो हैं उनको घरों के पास लोगों की जो कहते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट जानकारी उपलब्ध कराना और पूरे देश में स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना सबसे खास इम्पॉर्टेंट यही इनका उद्देश्य है कि सिर्फ इलाज ना हो, जब तक कि आप स्वस्थ ना हो जाओ, वेलनेस ना आपको आ जाए तब तक आपको वो मतलब आश्वासन के साथ आपका इलाज होता रहे। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँगी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं। ठीक है, कैसी घोषणाएं? 2024 से 2026 के बीच में ये घोषणाएं की गई हैं। 70 वर्ष की आयु तक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी आय की परवाह किए बिना योजना के तहत 5,00,000 रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। क्योंकि देखिए 70 साल का इंसान जो है वो स्वास्थ्य तो उसका इतना साथ नहीं देगा कि वो कुछ कर सके। हाँ, बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, तो उनके लिए है ये। ठीक है, अगला है आयुष्मान वय वंदना कार्ड, ये भी बनता है इसी के अंतर्गत। 70 से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिकों का जो कहते हैं ना डेटा है उनको आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जाता है जो कि लोगों के एज के अकॉर्डिंग लागू किया जाता है और उनके परिवार में जितने भी 70 वर्ष से कम आयु के सदस्य हैं उन सभी को एक कवरेज के लिए साझा नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें जितने भी 70 के अबव हैं वही ऐड किए जाएंगे। अब मैं बात करना चाहूँगी कि इसमें इम्पॉर्टेंट किन लोगों को मतलब किनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इस योजना या इस दिवस के जो कहते हैं ना कि पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए किसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। खास तौर पे इस योजना का फ़ायदा मिलता है कैंसर, हृदय रोग, न्यूरोसर्जरी और ऐसे कई गंभीर जो बीमारियाँ हैं उन सबको मिला के लगभग 70,000 से अधिक एम्पल जो कहते हैं ना सूचीबद्ध अस्पताल हैं जिनमें इन सबको कैशलेस और पेपरलेस इलाज करने की सुविधा दी जाएगी। मतलब आपको कोई पेपर नहीं करना है, अगर आपको बीमारी है आप सीधे जाइए, आप जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन है उसको कराइए और शुरू कर दीजिए अपना इलाज। तो इतनी ज़्यादा सुविधाएं अगर मिल रही हैं आपको एक ही छत के नीचे और एक ही सुविधा से तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। और हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी अगर हो तो कई बार हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने जो बताया आपको कि फिर से आप लोग जान लीजिए कि आपको अगर इसमें आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, कोई मान्य सरकारी या सरकार का दिया हुआ कोई भी कार्ड, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो या कोई ऐसी आईडी जो इसके अलावा आपका जो होता है क्या कहते हैं वोटर आईडी के साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे पर्सनल कार्ड्स होती हैं जो आपके आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका आ जाता है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में जैसे आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यूटिलिटी बिल, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आपका निवास का प्रमाण पत्र आपको प्रमाणित करने वाला कुछ होना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक जाति गणना यानी कि SECC प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। हालिया पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। राज्य अथवा केंद्र द्वारा निर्देशित अन्य दस्तावेज भी जो आपके साथ लागू होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अब आपके पास ये होगा कि क्या BPL वाले भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, BPL वाले लोगों के लिए ही है ये, बिलो पावर्टी लाइन वाले। ठीक है, प्रतिवर्ष आपको

बहुत सारी है, हमें जानकारी का अभाव होने की वजह से पता ही नहीं होता। तो इस दिन को मोटिवेट करते हुए 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा कवरेज अगर मिल रहा है, तो क्यों ना उन 5 लाख लोगों में वो सारे लोग भी हों जो मुझे सुन रहे हैं, जिनकी मतलब जो क्रेडिबिलिटी है, जो चाहते हैं कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उन्हें ये सुविधा मिल जाए। भाई देखिए, बीमारी और कह सकते हैं परेशानी कभी भी इन्फॉर्मेशन देके पहले से नहीं आती, तो हम अगर पहले से तैयार रहेंगे लड़ने के लिए तो हो सकता है कि हमारा हौसला कहीं भी ना डगमगाए। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और घुटने टेक देते हैं बीमारियों के आगे, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना ABY समाज के जो जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उन सब के लिए है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, साल 2008 में UPA सरकार द्वारा लॉन्च किए स्वास्थ्य बीमा यानी कि NHBY को भी आयुष्मान भारत योजना में मिला दिया गया। एक ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी को चीज़ों की और डीप जानकारी चाहिए तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और संकुचित दृष्टिकोण से हटाकर एक व्यापक और अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ाने का एक छोटा सा पहलू है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। इसका उद्देश्य जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट हो और जितना भी मतलब जितना हो सके वो सरकार की तरफ से, आप ये ना सोचें कि हमारा कौन साथ देगा, आपका साथ आपका कार्ड देगा। ठीक है, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में कच्चा मकान में रहने वाले परिवार हैं, परिवार में किसी वयस्क जो 16 से 69 साल के उम्र के नहीं हैं, परिवार की मुख्य एक महिला का होना ज़रूरी है, परिवार में कोई दिव्यांग का होना, अनुसूचित जाति जनजाति भूमिहीन व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर, ये वो सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के बेघर व्यक्ति, निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी, कानूनी रूप से मुक्त, बंधुआ आदि स्वतः आयुष्मान योजना का जो है वो लाभ उठा सकते हैं और वो स्वतः ही मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली उनका नाम, कहते हैं ना कि इनका नाम आ गया, तो उनका अगर इसमें आ रहा है नाम, कैटेगरी में जा रहे हैं वो, तो वो ऑटोमेटिकली कर दिए जाएंगे। तो ऐसी सुविधाएं जब मिलती हैं तो हमें भी लाभ उठाना चाहिए। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिस्कशन भी करने बैठ जाए ना तो पूरा दिन पूरी रात कम पड़ जाएगी। ऐसी ऐसी समस्याएं लोगों के पास होती हैं, बहुत पुरानी बीमारियों से लोग झेल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सही इलाज सही समय पे नहीं मिलता। बहुत सारे लोग मतलब मैं एक बीमारी की बात करूंगी कि एक बीमारी है जिसका नाम है TB, ट्यूबरक्लोसिस, पहले इंडिया में बहुत फैला था लेकिन इसका इलाज जब शुरू किया गया तो जड़ से ये बीमारी ख़त्म हो गई। और अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग टीबी का इलाज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराते हैं और लाखों रुपए देते हैं। मैं बताऊं, कुछ 1000 या 500 रुपए का खर्चा लगता है दवाइयों का, वो भी मुझे लगता है कि बहुत बहुत रेयर वाली जो दवा होगी वो बाहर मिलेगी, बाकी आपके आने जाने का जो खर्च है हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जाने का, वो बस जोड़िए। इसके अलावा टीबी का मुफ्त इलाज होता है सरकारी अस्पतालों में। तो बिल्कुल आप जानकारी के अभाव में हैं अगर आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही, तो प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, हम लोग को सुनिए, और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैट रूम में हमें या हमारी मेल आईडी पे या हमारे इंस्टा अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हम आपकी मतलब उन बातों पे चर्चा करेंगे और आपकी जानकारी जो है ना संपूर्ण रूप से आपको दी जाएगी। तो अब आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, आप सुन रहे थे शो विज्ञानशाला RJ बीना के साथ अपने अंदाज में, यानी कि लर्निंग बियॉन्ड क्यूरियोसिटी।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

जी हाँ श्रोताओं, चंदा के आने का वक्त हो गया है, यानी कि वक्त हो चला है शाम का, इवनिंग का, और इवनिंग के वक्त में शो का आपके, जिसका नाम है गुंडा मैसेज मसाला विथ आरजे बीना वाला। फिलहाल आज फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजे आकांक्षा, और लेके आई हूँ मैं आज क्या, कौन सा दिन आप सभी को अच्छे से पता है। वैसे आज दिन है मंगलवार, मंगलवार यानी ट्यूसडे, और ट्यूसडे होता है थोड़ा सा ट्रैकी, तो इस ट्रैकी वाले मूड को बनाएंगे और शानदार। लेकिन जैसा कि अभी आपने ये नगमा सुना, चंदा रे चंदा रे, कभी तो जमीन पर आप बैठेंगे बातें करेंगे। वैसे हमारे चांद किधर है, जरा हमें थोड़ा सा नजर आ जाए तब हम शुरू करेंगे आज की गुफ्तगू। हाँ जी, गुफ्तगू कुछ ऐसी होगी कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। हाँ जी, हमने आपको याद किया है और याद फरमाया है उस एक किस्से को, उस एक कहानी को जो आज आपके बीच में लेके आई हुई हूँ। एक दिल से निकली हुई, एक किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई सच्ची घटना। और मुझे लगता है कहानियां जो होती है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी, मतलब हर किसी की लाइफ में थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती हैं। कभी किसी की ज़िंदगी में वो दौर गुजरा होता है, तो कभी किसी की ज़िंदगी में हो सकता है थोड़ा सा इर्द गिर्द जा के गुजरे, बट फलसफा कहीं ना कहीं सेम टू सेम मिलेगा आपको कहानियों का। कहानियाँ होती इतनी प्यारी हैं कि आप कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव कर पाते हैं। फिलहाल उस ओर चलेंगे, हम आपको ले चलेंगे कहानियों के दौर में, क्योंकि आज है आपका मंगलवार और शो चल रहा है आपका। जी हाँ, मैंने आपको बताया पहले ही, और आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो गाने 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। बेशक, और अगर घड़ी की सुइयों की बात करूं तो हो रही है 6:16, और हम याद कर रहे हैं अपने चंदाओं का, यानी कि अगर आप लोग आएंगे और आप लोग ने हाजिरी लगा दी तो फिर मैं अपनी गल दस पाऊंगी आपसे, अपनी उस कहानी को आप तक साझा करूंगी जो मैं आज खास करके आप सभी के लिए लेके आई हूं। और मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी कहानियों को उसमें थोड़ा सा जोड़ें, क्योंकि अभी आपसे मैंने बोला ना कि हम सभी की कहानी कहीं ना कहीं सेम टू सेम होती है। बस होता क्या है कि हम कभी किसी से कह पाते हैं, कभी नहीं कह पाते हैं, और कई दफ़ा होता है अगर कोई सामने वाला हमें अपनी कहानी सुना रहा होता है तो उसमें हम जुड़ाव कर पाते हैं। फिलहाल एक और ख़ास बात है, ख़ास बात यह है कि आज है हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस यानी कि सोनाक्षी सिन्हा जी का बर्थडे। तो चलिए फिर चलती हूँ मैं एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर, और एक क्या मैं तो कहती हूँ आज दो गाने आपको सुना देते हैं सोनाक्षी सिन्हा जी के बर्थडे पर, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर लेते हैं इन दो नगमों के बदौलत, और देन आते हैं। तब तक आप भी आइए, हाजिरी लगाइए, ताकि हम अपनी कहानी को आप तक पहुँचा सकें, और उसके बाद आपकी कहानी, आपके किस्से, आपके हिस्से की वो बात जो आपने आज तक किसी से नहीं कही होगी, अपने दिल में कहीं दफन करके रखी होगी, या फिर सोचा होगा कि कभी कोई होगा जिससे मैं ये अपना इंसिडेंट जो हमारे साथ में बीता है एक दफ़ा ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा जुड़ाव करें हमारी कहानी से, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आगे की कहानी कैसे हो सकती है वो मैं आपके शब्दों में जानना चाहूँगी। तो हाजिरी लगाइए, तब तक के लिए सुनते हैं ये शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक, जस्ट इस गाने के उस पार रूबरू होते हैं आपसे और मुलाकात करते हैं आपके अपने शो यानी कि गोंडा मैसेज मसाला में विथ योर आरजे आकांक्षा, क्योंकि अभी आपकी आरजे बीना थोड़े दिन के लिए रेस्ट पे हैं। फिलहाल इस ट्रैक को एंजॉय करें, आती मैं जस्ट यू गई यू आई। Stay tuned.

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: हाँ जी, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है और वंदन है भाई, शुभ संध्या भी है आप सभी को, यानी गुड इवनिंग है। और वक्त है, अगर मैं बाई स्टूडियो बताऊं तो घड़ी की सुइयां हमें बता रही कि 6:28 हो गए हैं और हमारे बीच में हमारे कुछ प्यारे प्यारे श्रोतागण भी हाजिर हैं और कुछ तो ऐसे वाले हैं जो कि अपनी कार में हमें ट्यून करके बैठे हुए हैं और कुछ हैं जो रेडियो के थ्रू हमें सुन रहे हैं, कुछ रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं और कुछ है जो लुका छुपी वाली। हाँ जी, मुझे पता है, सुनते रहते हैं हमें। फिलहाल बता देते हैं जिन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज करवा दी है, मतलब अपना हाजिरी दर्ज करवाते हुए कहा है कि हम हाजिर हो गए हैं, उनमें से कौन कौन है जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हमारी लिसनर जुड़ी हुई हमारे साथ में जो कि है, वो रीना शर्मा जी हैं रुड़की उत्तराखंड से। आपका मोस्ट वाला वेलकम है मैम। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारी प्यारी सविता शास्त्री जी, जो हमें गोरखपुर से सुनती हैं, मोस्ट वेलकम मैम। इसके अलावा धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से, और इनको जो हमने खास करके सोनाक्षी सिन्हा जी के बर्थडे पर आज मैंने उनको ट्रिब्यूट दिया था उन्हीं के सॉन्ग के द्वारा, वो दोनों गाने काफ़ी पसंद आए हैं। वैसे प्लेलिस्ट उनकी काफ़ी अच्छी है, अगर आप कोई भी गाना उठा के सुनना चाहेंगे तो ये दोनों फिलहाल मेरी पसंद के गाने थे। और जी गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी आपको भी। अनिल शास्त्री जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, गुड इवनिंग आपको भी सर। और आज जो दिन है वो है मंगलवार, मंगलवार यानी कि गोंडा मैसेज मसाला में वो बातें, जो वो किस्से, वो कहानियाँ जो आपके हिस्से की भी होती है, मेरे हिस्से की भी होती है, हम सभी के हिस्से की होती है, हम सभी कहीं ना कहीं जुड़ाव भी कर पाएंगे इस कहानी से जो मैं आज स्पेशली आप सभी के लिए लेके आई हूं। और आज की जो स्टोरी है वो है लव स्टोरी, और इसको मैंने 3 से 4 सेगमेंट में इसको मैंने बांटा है। पर मैं चाहूंगी कि जब मैं स्टोरी को कवर कर रही हूं उस दौरान अगर आप भी उससे रिलेट कर पा रहे हो, या आपके हिसाब से स्टोरी कैसी जानी चाहिए, अगर आपके मन में भी कोई जिज्ञासा या आपकी कलम चलने को आतुर हो, तो प्लीज उसको चैट बॉक्स में आके पूर्ण करें, उसको लिखें ताकि हम उसको पढ़ पाएं और समझ पाएं कि क्या हमारी कहानी में कुछ कमी थी या हमारी कहानी आपकी कहानी, मतलब आपकी कहानी हमारी कहानी से बेहतर है, मैं जानना चाहूंगी। फिलहाल चलते हैं आज की कहानी को, लेकिन उससे पहले चंद लाइनें, और ये लाइन प्यार को दर्शाती है। प्यार मतलब मोहब्बत, मोहब्बत मतलब इश्क, ये तीनों एक नहीं है जनाब, तीनों ही अलग हैं, तीनों का दस्तूर अलग है, तीनों की अगर कहें तो किस्मत अलग होती है। प्यार वो होता है जहाँ अट्रैक्शन होता है, थोड़ी सी शुरुआत हुई होती है, एक बोलेंगे सुहाना सफ़र अगर हम तय कर रहे होते हैं और उस सफ़र में कुछ अच्छा लग जाता है, कुछ अच्छा सा दिख जाता है हमें, तो वो हमारी यादों में कैद हो जाता है, कुछ ऐसा होता है प्यार। और जब मोहब्बत की बात आती है तो उसको हम कहीं ना कहीं मुकर्रर करने की कोशिश कोशिश करते हैं, इधर से भी उधर से भी, दोनों तरफ से। और अगर मैं बात करूँ प्यार की, मोहब्बत की, चलिए कहानी बाद में ही शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी वो हिस्सा जहाँ प्यार को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, और वो जगह है सूफिज्म। सूफिज्म एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब किसने क्या कहा, क्या है, क्या कुछ भी मतलब ही नहीं बनता है। सूफिज्म का मतलब ही है प्यार, प्रेम, इश्क, इबादत, हर जगह खुशियाँ, हर जगह मुस्कान, हर एक चेहरे पर एक सुकून, यही है सूफिज्म। तो अगर हम सूफिज्म की बात करते हैं तो उसके भी सात चरण होते हैं, सात दायरे होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या होता है ये सब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले वो शायरी जो आपके लिए खास लेके आई हूँ। शायरी कुछ यूं कहती है, और शायरी कहती है, सदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को, सदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को, मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को। उफ, इसे शायद कहते हैं वन साइड लव, बट ये लव इतना कीमती होता है कि सामने वाला ये चाह रहा है मोहब्बत में कि अगर मैंने कहीं इसको छू भी लिया, मतलब आप सोचिए इसकी रूह में उतरने का तो उतरने की तो मेरी चाह है क्योंकि मैं प्यासा हूँ, पर अगर मैंने कहीं इसको छू लिया तो इसके कहीं रोम कूप भी मेरी वजह से टेढ़े ना हो जाए, मतलब मेरे छूने से ये जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है कहीं थोड़ा सा इधर उधर ना हो जाए, है ना। कितनी खूबसूरत मोहब्बत, एक दफ़ा फिर से कहती हूँ, शदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को, हाँ मुझे बहुत तगड़ी प्यास लगी हुई थी पर मैंने पानी को हाथ नहीं लगाया, क्यों, मैं देखता रह गया दरिया तेरी रवानी को, मैं तेरी उस रवानी को, उस दीवानगी को देखता रह गया जो शायद मेरे छूने से धूमिल हो जाती, शायद मेरे छूने से थोड़ी सी इधर उधर हो जाती, है ना। मोहब्बत कितनी खास, इसे को तो कहते हैं मोहब्बत। फिलहाल चलते हैं आज की कहानी की ओर, और हम जानना चाहेंगे कि आपको इस कहानी में अगर अपना हिस्सा जोड़ना होता तो कैसे जोड़ते हैं। फिलहाल इस कहानी की शुरुआत करते हैं, और कहानी का टाइटल मैंने दिया हुआ है, जो टाइटल दिया है वो है एक ख्याल जो साथ चलता रहा। होता है ना जब हम किसी की मोहब्बत में होते हैं तो हमारे जहन में एक ख्याल चलता रहता है सिर्फ और सिर्फ उसी का, कोई और नहीं नजर आता है, सामने भी वही होता है, दिल में भी वही होता है, मन में भी वही होता है, हर एक नज़र में वही होता है, खाना पानी, उठना बैठना, दोस्तों से बात करना, कहीं मन नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ उसी का ख्याल, उसी की याद। तो उसी से आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक प्यारी सी कहानी। ये एक लव स्टोरी है, और जैसा कि मैंने इसका टाइटल आपको बता दिया, एक ख्याल जो साथ चलता रहा। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है, बारिश की हल्की फुहारें वाली शाम थी, शहर की भीड़ अपने अपने घरों की ओर भाग रही थी, लेकिन आरव बस स्टॉप पर खड़ा किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं ना जाने कितने सवाल, कितने ख्याल होते हैं, और इंतज़ार वो बढ़ के कितना बड़ा हो जाता है, मतलब वैसे तो एक घंटा अगर आप सीरियल देखेंगे, गाने सुनेंगे, किसी काम में मशगूल हो जाएंगे तो यूं बीत जाता है, लेकिन जब आपको किसी का इंतज़ार करना पड़े और कोई वो ख़ास हो, वो पल बीतता ही नहीं है, वो गुजरने का नाम ही नहीं लेता है। उफ, तौबा सी मच जाती है दिल में, जहन में, चारों तरफ, और ये शोर कोई और नहीं देख पा रहा होता है, सिर्फ हम अंदर से महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे दिल की आवाज़ होती है, हमारे जहन में जो हलचल चल रही होती है उसकी आवाज़ होती है। तो इस तरह आरव बस स्टॉप पर खड़ा किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसकी नज़र बार बार उस लड़की पर जा रही थी जो हर रोज़ इसी समय बस का इंतज़ार करती थी। ना उसने कभी उससे बात की थी और ना ही उसका नाम जानता था, बस इतना जानता था कि उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। दिन बीतते गए, दोनों रोज एक ही बस स्टॉप पर आते, एक दूसरे को देखते और फिर अपने अपने रास्ते को निकल जाते। कभी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक अनजाना सा रिश्ता दोनों के बीच बन गया। हाँ, ये वही रिश्ता है इंतज़ार का। बोला ना आपसे कि जब इंतज़ार की बारी आती है तो वो पल कभी ख़त्म ही नहीं होता, कटने का नाम ही नहीं लेता। और ये इंतज़ार तो भाई मोहब्बत का इंतज़ार था। हम इधर से इंतज़ार में थे, मतलब आरव इधर से इंतज़ार में था और उधर से वो लड़की जो पर डे उस बस स्टॉप पे आया करती थी। एक दिन वो लड़की नहीं आई। दीवानी की दीवानियत, उफ, किस कदर उसके दिल में, उसके दिमाग में हलचल मची होगी। क्या क्या उसने उस पल में सोच लिया होगा। और वो जो होता नहीं, एक दीद के लिए जो इंसान तरसता है। ओहो हो, चलिए बताते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। आरव ने सोचा शायद किसी काम में व्यस्त होगी, लेकिन अगले दिन भी वो लड़की नहीं आई। फिर एक हफ्ता बीत गया यूं ही इंतजार करते करते। अब तो क्या ही कहें भाई, इंतज़ार की भी एक सीमा होती है, पर मोहब्बत में शायद इंतज़ार की कोई सीमा नहीं होती अगर सामने वाला आपसे थोड़ा सा दूर चला जाए। क्योंकि मोहब्बत में नाराज़गी भी उतनी ही गहराई से होती है जितनी गहराई से मोहब्बत होती है। फिलहाल यहाँ पे नाराज़गी नहीं थी। चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आगे क्या हुआ। अब बस स्टॉप उसे सूना लगने लगा था। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी किसी की मौजूदगी हमारी आदत बन जाती है, चाहे हमने उससे एक शब्द भी क्यों ना कहा हो। करीब एक महीने बाद वो लड़की फिर दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी बंजर जमीन पे बारिश की दो बूंदें गिरी हो, किसी सूखे होठ पे किसी ने पानी का छिड़काव कर दिया हो, किसी भूखे को एक निवाला मिल गया हो। कुछ इस एहसास के साथ में आरव था। आरव के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। उसने हिम्मत जुटाई और पहली बार उसके पास जाकर बोला। सोचिए, पहली बार महीनों के इंतजार के बाद, और जाता भी कैसे नहीं, इतने दिन बाद जो सामने से वो आई थी। आप कई दिनों से नहीं दिखी, सब ठीक है ना, आरव ने कहा। लड़की मुस्कुरा दी। हाँ, माँ की तबीयत खराब थी इसलिए दूसरे शहर जाना पड़ा। बस इतना सा संवाद था, लेकिन आरव को लगा जैसे कोई अधूरी कहानी आगे बढ़ गई हो, जो आज तक बस यूं ही चली जा रही थी। उस दिन दोनों ने पहली बार अपना परिचय दिया। लड़की का नाम था सिया। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, कभी मौसम की, कभी किताबों की, कभी सपनों की, और दोनों को एहसास हुआ कि उनकी सोच बहुत मिलती जुलती है, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं चुनती है। कितनी चुनौतियां भरी होती हैं हमारी लाइफ में, पर उसको आसान कौन बनाता है? किसी का साथ, किसी अपने की हिम्मत, किसी अपने का हमारी जिंदगी में होना, वो एहसास। चलिए जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। कुछ महीने बाद सिया को नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। विदा लेते समय उसने कहा, कुछ लोग हमारे जीवन में ज्यादा समय नहीं रहते, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन उतर आया। सिया चली गई, समय बीतता रहा, फोन पर कभी कभार बातें हो जाती, फिर वह भी कम होने लगी। लेकिन हर सुबह जब आरव उसी बस स्टॉप से गुजरता, उसे सिया का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ जाता। यादें होती हैं ना, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर सी यादें होती हैं। एक दिन उसके फोन पर एक संदेश आया, आज शहर लौट रही हूं, क्या वही पुराना बस स्टॉप अभी भी वैसा ही है? ऐसा सिया का कहना था। आरव ने जवाब दिया, बस स्टॉप तो वैसा ही है, लेकिन किसी के बिना थोड़ा अधूरा सा लगता था। शाम को वो वहीं खड़ी थी। इतनी ही गहरी सांस उसकी चल रही थी और किसी को देख के सेम एक्सप्रेशन था, किसका? आरव का। कुछ देर बाद सिया सामने थी। दोनों कुछ क्षण चुप रहे, फिर सिया बोली, जानते हो, दूर जाकर समझ आया कि कुछ लोग हमारे दिल से कभी दूर नहीं जाते। आरव मुस्कुराया। उसे लगा कि कभी कभी प्यार बड़े इजहारों में नहीं बल्कि कभी किसी के उस ख्याल में छुपा होता है जो हर दिन हमारे साथ चलता रहता है। और उस दिन दोनों ने महसूस किया कि कुछ कहानियाँ मुलाकातों से नहीं बल्कि ख्यालों से शुरू होती हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएं या ना बने, लेकिन उनके ख्याल हमारी मुस्कान की वजह ज़रूर बन जाते हैं। जब हम किसी मुलाकात के साए से फिर से दोबारा से रूबरू होते हैं, उधर से गुजरते हैं, मान लीजिए आप पहली दफ़ा किसी से मिले हो कहीं किसी खास जगह पे, या फिर आपने मतलब खुद ही से इनविटेशन दिया हो कि चलो आज चलते हैं यहाँ बैठेंगे। भाई ये किस्सा तो हर किसी की लाइफ में होता है। मैंने बोला नहीं कि किस्से कहानियाँ जो होती हैं हर किसी के हिस्से की होती हैं और हम एक दूसरे से उसे रिलेट भी कर पाते हैं। और जब आप उधर से कभी गुजरते हो वो पुरानी यादें जब आपके सहन में ताज़ा होती हैं और ख़ास करके यादों का जो जुड़ाव होता है वो खुशबू से होता है। अगर वही स्मेल, अच्छा अभी भी आपको याद होगा जब बरसात आती है वो सौंधी सी खुशबू, जब सर्दी आती है वो सर्द वाली खुशबू आपको बचपन में ले जाती है। याद नहीं आता कि आप सभी इकट्ठा निकलते थे और जब बारिश होती है तो बारिश में वो भीगना, फिर मम्मी से डांट खाना। मतलब यादें कितनी खूबसूरत होती हैं और ये यादें ही तो होती हैं कहानियां। रिश्तों की सबसे खूबसूरत शुरुआत अक्सर एक अच्छे ख्याल से होती है। तो जब भी ख्याल रखिए, नेक रखिए, प्यारा रखिए। बस इतना ही कहना चाहेगी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। लेकिन एक सस्पेंस और है कि ये कहानी यही नहीं खत्म हुई। इस कहानी के और हिस्से हैं, वो मैं आपसे जरूर साझा करूंगी। लेकिन उससे पहले स्वागत करना चाहूंगी अपने शिल्पी बनर्जी जी का। और बिल्कुल मैं आपकी दुआओं जैसी ही हूँ, बस कल के बाद से थोड़ा थोड़ा आराम हो, लेकिन आवाज़ में अभी आपको सुनाई दे रहा होगा जुकामी आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया हालचाल लेने के लिए। और उद्दालक शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो ये शुरुआत है, इसके और हिस्से मैं आपसे ज़रूर साझा करती हूँ। बने रहिए, शो चल रहा है आपका, जी हाँ, गोंडा मैसेज मसाला विथ योर आरजे आकांक्षा। चलिए चलते हैं और लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, देन आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से की ओर। और अगर आपका भी कोई हिस्सा ऐसा है, आपने भी कभी किसी के साथ में ऐसी मुलाकात की है, या आपको लगता है कि इस कहानी में कुछ और चेंज होना चाहिए, या इसके रिगार्डिंग आपका कोई फीडबैक है, तो प्लीज़ मेंशन करिए चैट बॉक्स में आकर के। फिलहाल आपने ट्यून करके रखा हो रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, एंजॉय करिए इस ट्रैक को।
4: इतने गौर से क्या देख रही है?
5: लहरें।
4: लहरें? लहरों में से क्या बात है?
5: कभी कभी इंसान के दिल में भी इसी तरह हलचल मच जाती है।
4: कोई ना कोई वजह जरूर होती होगी।
5: शायद मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था।
4: क्यों?
5: अरे मैं तो लेट हो गई।
4: कहाँ जाना है?
5: आपको मालूम हो जाएगा।
4: आपसे हर बात मेरे लिए उलझन सी बनती जा रही है।
5: थोड़ी देर में कम से कम ये उलझन तो सुलझ जाएगी।

0: जी हाँ श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है आपके इवनिंग वाले शो यानी कि गोंडा मैसेज मसाला विथ आरजे बीना वाला में। लेकिन आज भी आपकी होस्ट है दोस्त है आरजे कांक्षा, और चलेंगे उस ओर जिस ओर हमने बात की है अभी आप सभी से आरओ और सिया के रिश्ते के यानी कि उस रोमांटिक से स्टोरी की ओर जो मैं आज आपके लिए जी हाँ ट्रेकी वाले ट्यूजडे के साथ में लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने प्यारे लिसनर्स का। जी हाँ, हमने लास्ट जिन जिनके मैसेजेस लिए थे उनमें थी हमारी रीना शर्मा जी फ्रॉम रुड़की उत्तराखंड, सविता शास्त्री जी फ्रॉम गोरखपुर, धर्मेंद्र मोहन भारती जी फ्रॉम आवास विकास कॉलोनी गोंडा, अनिल शास्त्री जी फ्रॉम गोरखपुर, और शिल्पी बनर्जी भाई हमारे दिल से यानी कि गोंडा से, और दालक शर्मा जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। इनको कहानी का पहला हिस्सा काफी अच्छा लगा। इसके बाद हमारे साथ में बने हुए हैं शैलेंद्र रिझारिया जी फ्रॉम खजुराहो MP। गुड इवनिंग आपको भी, बड़ा वाला, लंबा वाला, चौड़ा वाला और बहुत ही प्यारा सा। जी हाँ, शुभ संध्या। और इसी बीच में हाजिर हुए हैं हमारे बीच में प्रमुख कुमार जी फ्रॉम श्रावस्ती, और आरजे सोनी जी भी आई हुई हैं भाई गोपालगंज से। सोनी जी आपका मोस्ट वाला वेलकम है। और चलते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव की ओर। ओके, थैंक यू, आपका फीडबैक हमें मिला रीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए चलते हैं तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हमने जाते जाते आपसे एक बात पे बात की थी। बात ये थी कि सूफी परंपरा में मतलब सूफी होता क्या है, सूफिज्म है क्या, और अगर सूफी परंपरा की बात करें तो सूफी परंपरा बस एक ही चीज़ पे फोकस करती है, वो है प्यार, प्रेम, मुस्कान, मुस्कुराहट, खुशी। उसका कोई और धर्म है ही नहीं, बस उसको यही है कि उसको अगर उसके सेंट्रल पॉइंट की बात करेंगे तो उसको खाली खुशियां बांटनी है। तो उस पर भी सात चरण होते हैं। वो सात चरण कौन कौन से हैं, चलिए आइए आपको उसे रूबरू कराते हैं, आपसे साझा करते हैं उन सात चरणों को। सबसे पहला जो प्रेम का चरण होता है, वैसे तो बोलते हैं ना कि प्रेम और मोहब्बत और इश्क तीनों अलग अलग हैं, वाकई तीनों अलग हैं। जैसे मैंने आपसे पहले ही भी साझा किया है, अभी हम बात करेंगे सूफिज्म पे। तो सूफिज्म के सात चरण ये हैं कि अगर पहले चरण की हम बात करें, अच्छा देखिए, मोहब्बत में सबसे पहला जो चरण होता होता है प्यार। प्यार यानी अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी जब हम कभी किसी सफर पे गुजर रहे होते हैं और कोई चीज़ हमें अचानक से पसंद आ जाए तो उसको हम अपने ख्यालों में बसा लेते हैं। तो फिर हम कहते हैं नहीं कि हमें वो बड़ा पसंद है, वो हमें बड़ा प्यारा है, हमने एक दफ़ा उसको देखा था, या कोई चीज़ हमने टेस्ट की होती है फिर हम उसको बार बार बार बार दोहराना चाहते हैं। लाइक किसी सफर पर गए होते हैं तो उसी सफर में हम दोबारा से निकलना चाहते हैं, दोस्तों के साथ वही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ में वही एक दिन फिर से बताना चाहते हैं जो खुशियों भरा बीता हुआ हो। यह है हमारा प्यार। तो जब पहले चरण की बात आती है सूफिज्म में तो वो होता है हब। हब यानी आकर्षण। ये प्रेम का प्रारंभ रूप है जिसमें किसी इंसान रूप या सौंदर्य के प्रति आकर्षण पैदा होता है, और यह स्तर आत्मा को जगा देता है, मतलब जगाने वाला होता है, जागृत करने वाला होता है। और यात्रा की शुरुआत, गौर फरमाइएगा, यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। सूफी मानने वाले कहते हैं यही आकर्षण आगे चलकर ईश्वर तक ले जाता है। अब प्रेम और ईश्वर का क्या तात्पर्य है, क्या जुड़ाव है, चलिए इसके दूसरे पड़ाव पे चलते हैं। और पड़ाव पार करते करते कहीं ना कहीं आप ईश्वर से जुड़ाव खुद ब खुद करने लगेंगे। तो सूफिज्म का जो दूसरा चरण होता है वो होता है उन्स। उन्स माने लगाव। पहले हमें किसी के प्रति आकर्षण होता है, कोई हमें अच्छा लगने लगता है, पर उससे हमें लगाव होने लगता है, उसकी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, उसकी चीज़ों को हम फॉलो करने लगते हैं, उसको जो पसंद होता है शायद कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें भी वही चीज़ पसंद आने लगती है। समय बिताते बिताते हमें उसकी आदत हो जाती है, हम आदतन हो जाते हैं उसकी चीज़ों से। तो फिर दूसरा जो चरण आता है वो है लगाव। और लगाव में, इस चरण में प्रेम गहरा होने लगता है। व्यक्ति अपने प्रिय के बिना अधूरा महसूस करता है, उसका अपने प्रिय के प्रति आत्मीयता और लगाव बढ़ने लगता है। ये अवस्था मन को स्थिर करती है और प्रेम को गहराई प्रदान करती है। लगाव, लगाव का ही तो सारा खेल है। अगर लगाव ना हो तो हमें महसूस नहीं होगा, इमोशन नहीं होंगे। इमोशन है तो लगाव है, तो हम जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। अदरवाइज सामने कुछ भी हो हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर आती है तीसरे पड़ाव की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सूफिज्म के दृष्टिकोण से प्रेम का जो तीसरा चरण है वो क्या कहता है भाई। अब आ गए हैं हम देखिए प्रेम मोहब्बत के बाद अब बारी आ गई है इश्क की, और इश्क जो है वो गहन प्रेम होता है। एक तो होता है आकर्षण, दूसरा होता है लगाव, लगाव माने मोहब्बत, और अब बारी है इश्क की। इश्क यानी गहन प्रेम। इस स्तर पर प्रेम भावनात्मक रूप से तीव्र हो जाता है, वही भावनाएं हैं पर गहराई थोड़ी ज्यादा है, ऐसी वाली कि मैं जो कहूंगा वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, मैं जो कहूंगी वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, मेरी बातें तुम सुन कैसे नहीं रहे हो, मेरी बातें तुम मान कैसे नहीं रहे हो, ऐसे वाला जिद। जब प्यार लगाव से, आकर्षण लगाव से जिद में तब्दील हो जाए, इस जगह पे होता है ये इश्क, ये गहन प्रेम। पर इश्क में आज़ादी भी होती है, और अगर इश्क में आके आपने आज़ादी नहीं प्रदान की तो आप चोटिल होंगे, इस बात का याद ख्याल रखिएगा। इश्क कहता है कि अपनी चीज़ें रखो लेकिन सामने वाले की पहले लो, ताकि आपका और उसका रिश्ता गहराता जाए। बोलते हैं ना कि गहन प्रेम, गहन प्रेम का मतलब ही है त्याग, देना देना सिर्फ देना। तो इस स्तर पर क्या होता है कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो प्रेम है वो तीव्र हो जाता है, वो अब तड़प बन चुका होता है। पहले तो बस लगाव था, एक जुड़ाव महसूस करते थे, उसकी चीज़ों को अपनाना, ये सब मतलब एक आदत हो गई थी, लेकिन अब अगर वही आदत हमें नहीं मिल रही है तो उसके लिए हमें तड़प महसूस होगी। मिलन की चाह इतनी बढ़ती है कि जो साधक होता है बेचैन हो जाता है। साधक यानी जो प्रेम को पूज रहा है। इंसान प्रेम में पड़ने के बाद क्या करता है, पहले तो थोड़ा सा अट्रैक्शन वाला माहौल रहता है, तो लड़ाई झगड़ा ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लगाव हुआ तो भी चलो चलता है इधर उधर का, लेकिन जब प्रेम गहरा होने लगता है वहाँ पे हम सामने वाले को पूजने लगते हैं, और पूजते हम किसको हैं, ईश्वर को। हर किसी को तो नहीं पूजते ना, जब हम ईश्वर तुल्य किसी इंसान को मानने लगे, समझ जाइए आपको इश्क हो चुका है। यहाँ साधक का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है, आ गए ना, धीरे धीरे पिघलने लगता है, यानी हम आज़ादी प्रदान कर रहे हैं सामने वाले को, हमारा कोई उम्मीद नहीं है उससे, बस हम उसकी खुशियाँ चाहते हैं, और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, यानी सामने वाले की खुशी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप खुश हैं ना, आपकी खुशी में हम खुश। ये है इश्क, गहन प्रेम। इसके बाद चलेंगे हम सातवें नहीं चौथे चरण की ओर, जिसे कहते हैं अकीदत। अकीदत यानी विश्वास। विश्वास में अब प्रेम केवल भावना नहीं है, पहचान बन जाता है। प्रेमी अपने अस्तित्व को प्रेम में डुबा देता है, यह मैं का एहसास कम होने लगता है, सिर्फ और सिर्फ सामने वाला, सिर्फ और सिर्फ सामने वाला। हम पूरी तरह सामने वाले में रम चुके होते हैं, जैसे जब ईश्वर की इबादत करते हैं, ईश्वर की जब हम प्रार्थना पूजा करते हैं, और थोड़ी देर बाद जब हमें यह एहसास होता है कितना सुकून मिल रहा है, इस भजन को सुन के कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं, सेम जब आप प्यार में आज़ादी देते हैं। अगर आपने बंधन दिया तो आप दर्द पाएंगे, अगर आपने आज़ादी दी आप उसकी खुशी में खुश हैं तो आप सुकून पाएंगे, और यही है विश्वास, अकीदत। अब आता है पांचवा चरण, प्रेम का पांचवा चरण, जिसे कहते हैं इबादत। इबादत माने समर्पण, पूरी तरह से। अब यहां कुछ रहा ही नहीं, हमारा तो कुछ है ही नहीं, बचा है ही नहीं, हम हैं कहां पता ही नहीं चल रहा है। विश्वास तक ये था कि हम धीरे धीरे मैं को भूलने लगते हैं, और जब इबादत की बारी आती है फुल ऑन समर्पण, पूरी तरह से हम सामने वाले के। प्रेम पूजा का रूप ले चुका होता है, हर कर्म हर सांस प्रियतम ईश्वर के लिए हो जाता है। कहते हैं ना, वो गीता में बोला नहीं जाता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारा कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया था तो उनसे यही कहा था, हे वीर, हे पार्थ, उठो, ये सब नियति का रचा हुआ है, पहले से ही है, इसमें तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे अपने तो हैं, लेकिन इनके कर्तव्यों ने, इनके कृत्यों ने इन्हें इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि इसमें तुम वीर बनोगे, तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इस भारत को आज़ाद करो इस दर्द से जो वो झेल रही है। इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं हमारे पार्थ यानी कि अर्जुन, और इस पड़ाव पर आते आते प्रेम जीवन साधना बन चुकी होती है। फिर आता है प्रेम का सातवां चरण, बला। बला को हिंदी में बोलते हैं स्वयं का लोप हो जाना। अभी तक तो हमने ये बता दिया आपको कि समर्पण में हम पूरी तरह से खो चुके थे, मतलब हम थे ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हम गायब हो चुके हैं। स्वयं का लोप हो जाना, ये सूफी प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लोग इश्क तक ही जा पाते हैं, उसके आगे वो जा ही नहीं पाते हैं। ये पूरी दुनिया प्रेम के केवल 3 चरण तक ही रह जाती है, बाकी 4 चरण तो कोई सोच भी नहीं सकता है। वहां तक जाना तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी ने वो हद क्रॉस कर ली तो वाकई उसका प्यार प्यार है, प्रेम प्रेम है। आज के दौर में तो प्रेम कहीं रहा ही नहीं, बस हमें तो लगता है आकर्षण से लगाव तक ही आता होगा, इश्क भी नहीं आता होगा उसका। खैर, चलते हैं छठे पड़ाव की ओर और बताते हैं कि छठा पड़ाव क्या कहता है। ये सूफी प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, यहाँ प्रेमी का अहंकार मिट चुका होता है और केवल प्रिय का अस्तित्व रह जाता है। ओ माय गॉड, वो अपने प्रेम में इतना डूब जाता है कि स्वयं को ही भूल जाता है। कई दफा होता है ना, और ये गाना आपने सुना ही होगा ना, आज ममता कसौधन जी ने हमसे रिक्वेस्ट भी की थी इस सॉन्ग की, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम जब भी प्रेम की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इससे बड़ा कोई ट्रिब्यूट नहीं हो सकता है प्यार के लिए इस सॉन्ग से बड़ा। और वो सॉन्ग है सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। वह प्रेम में इतना डूब जाता है कि स्वयं को भूल जाता है, इस पड़ाव पर आत्मा ईश्वर में विलीन हो चुकी होती है। हर एक सांस पे केवल अपने महबूब, अपने आशिक या फिर अपने खुदा का नाम और कुछ भी नहीं। फिर चलते हैं अब लास्ट पड़ाव की ओर। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। मुझे लगता है कि इस पड़ाव को अगर आप अपने शब्दों में बताएंगे तो मुझे कुछ ज़्यादा ही खुशी होगी, और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और हमारे बीच में आ चुकी हैं गीता श्रीवास्तव जी। गुड इवनिंग डियर आरजे आकांक्षा मैम, थैंक यू सो मच, आपको भी गुड इवनिंग। और चलते हैं फिलहाल के लिए, हाँ जी प्रमुख जी ने कुछ लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू, बीस की स्पीड, ओके। इश्क की राह में खुद को मिटाना पड़ता है, रूह को रब से मिलाने का बहाना पड़ता है, ओके, बहाना पड़ता है, ओके। जब उतरता है कर्म दिल की गहराइयों में, हर तरफ उसी का नूर नज़र आना पड़ता है। ओह बिल्कुल सही बात है, इश्क की राह में जब तक आप रूह तक नहीं उतरेंगे, और रूह में उतरने के बाद भी बहुत सारे पड़ाव होते हैं, और लास्ट पड़ाव मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया है। अगर किसी का जहन काम करे या किसी को मालूम है कि सूफी परंपराओं में बताए गए 7 परंपराओं में लास्ट जो प्यार का पड़ाव है वो क्या कहता है, तो ज़रूर बताइए। फिलहाल तब तक हम सुना देते हैं आपको एक नंबर सॉन्ग, और फिर आते हैं, स्टोरी भी तो कंप्लीट करनी है हमें, और हम तो प्यार में ही खो गए। जब प्यार की बात आती है तो आपकी अपनी आरजे आकांक्षा पता नहीं कहाँ चली जाती है, किस गहराइयों को टटोलने लगती है, और उन सभी बातों से आपको भी रूबरू कराना चाहती है जिनसे आप सभी अभी अनभिज्ञ हैं। और प्यार इश्क मोहब्बत की बात होती है तो लोग उसे इतर होकर के गुजर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, अगर आपने सच्चा वाला इश्क किया तो बदले में आपको क्या मिलेगा, ये मैं बताऊंगी। लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार दोस्तों, मैं चाहूंगी अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो प्लीज 7वां पड़ाव क्या कहता है सूफिज्म परंपरा में प्रेम के प्रति, जरूर बताएं। शो चल रहा है आपका गुंडा मैसेज मसाला विथ आरजे बीना वाला, लेकिन आज जो आपके शाम को बनाने के लिए आई हुई है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। और हाँ जी, बाय स्टूडियो क्लॉक हो गए 7:11, और साथ ही साथ में आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM पर अपना फेवरेट वाला शो यानी के गुंडा मैसेज मसाला। चलिए चलते हैं इस ब्रेक की ओर।
1: आप गुंडा वासियों

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: हाँ जी, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इवनिंग वाले शो यानी कि गोंडा मैसेज मसाला में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जा कांक्षा, और शो तो आपने सुनी लिया क्या चल रहा है। फिलहाल वक्त हो गया है 7:16, लेकिन जाते जाते मैंने आप सभी से एक सवाल किया था, और सूफिज्म परंपराओं में बताए गए प्यार के चरणों को आपसे रूबरू किया। मतलब अगर प्यार, इश्क, मोहब्बत और इन सभी चीज़ों की बात करें, तो हर कोई कहीं ना कहीं इसे राबता रखना तो चाहता है, लेकिन रख नहीं पाता है। पता नहीं क्यों किनारी काट के निकल जाता है, क्योंकि इसका जो आखिरी पड़ाव है ना जनाब, वो क्या है, चलिए बताएंगे आपको। वैसे मैंने 6 पड़ाव आपको बता दिए हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई कुछ मैसेजेस आ गए हैं, और हमारी सविता शास्त्री जी ने बताया है शायद भक्ति पूजा। भक्ति पूजा तो मैम तीसरे स्टेज में ही आ जाती है, जब प्यार गहरा होने लगता है, और चौथे में आते आते तो हम पूरी तरह से इबादत, यानी पांचवें में आते आते हम पूरी तरह से इबादत करने लगते हैं सामने वाले की, वहीं तक है। इसका सातवां स्टेज क्या बोलूँ मैं, चलिए बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और मैसेजर ले लेते हैं। तो धर्मेंद्र मोहन भारती जी हैं आवाज़ विकास कॉलोनी गोंडा से, लिखते हैं, इश्क वो समुंदर है जिसमें डूब कर भी सुकून मिलता है, और जिसे मिल जाए ये मोहब्बत उसे हर दर्द में जुनून मिलता है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा कि इश्क वो समुंदर है जिसमें डूब कर ही सुकून मिलता है। ऊपरी अगर आप तलछटी पर रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और जब आप मोहब्बत के दर्द से रूबरू होते हैं तो वो आपके लिए एक जुनून सा बन जाता है। अगर उसको आप पॉजिटिव वे में लेके जाते हो तो आप ज़िंदगी का हर वो जो मुमकिन भी नहीं हो सकता वो काम भी आप मुमकिन करके दिखा देते हो। बिल्कुल सही लिखा है। नागेश्वर धाकड़ जी आ गए हैं रतलाम की गलियों से, लिखते हैं, गुड इवनिंग आकांक्षा मैम, नमस्कार। सुना है कि रात में भूत दिखते हैं। हाँ जी, हो सकता है कि हमारी और आपकी शक्ल में हों। कभी कभी अपना अपना साया देखिएगा लाइट ऑफ करके, खुद ही डर जाएंगे आप। हम डर चुके हैं, मैं मालूम है आप यही सुनना चाहते थे। शुक्रिया बताने के लिए। सविता दुबे जी हैं हरखापुर से, शुभ संध्या सभी को, तो शुभ संध्या आपको भी। और इसके बाद में चलिए चलते हैं उस और जो हमने आपसे साझा किया था, यानी कि सूफी परंपराओं के अंतर्गत प्रेम के जो 7 चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हव यानी आकर्षण, दूसरा था उन्स यानी कि लगाव, तीसरा था इश्क यानी गहन प्रेम, और चौथा था अकीदत यानी विश्वास, और पांचवा था इबादत समर्पण, जिसको हमारी प्यारी सविता शास्त्री जी ने बताया कि शायद भक्ति पूजा। जी नहीं, भक्ति पूजा नहीं होता है, पर होता क्या है चलिए आपको बताते हैं। छठवां था वल्हा यानी कि स्वयं का लोप हो जाना, जब हमारा अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता है, हम रह ही नहीं जाते हैं, मैं वाला जो हल्का हल्का होने लगता है, उसके बाद में वो हल्का वाला भी मैं खत्म हो चुका होता है, केवल और केवल ईश्वर, इबादत और सामने वाला, इश्क हमारा प्यार। खैर, सातवां पड़ाव हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2 शायरियां आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। बोलते हैं ना कि इश्क है जिंदगी, जिंदगी प्यार है और दर्द दिल की दवा कोई और नहीं, कोई और उपचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिलदार है। हाँ, ये गाना आपने सुना होगा ज़रूर। और एक और शायरी फ़िलहाल जो अभी मैंने आपको सुनाया वो थे हमारे फहमी बदायूनी जी की लिखावट, और एक रचना मैं लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में, चलिए सुना देते हैं। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे। ये लाइनें हैं जान निसार अख्तर जी की, कितनी खूबसूरत और कितनी सच्ची है। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, लेकिन तेरी आंखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे, और वो केवल मैं ही पढ़ सकता या पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम मुझे उतनी गहराइयों से जानते हो जितना शायद कोई और नहीं जानता। चलिए चलते हैं अब प्रेम के सूफिज्म के उस सातवें पड़ाव की ओर जो कि है बफा। बफा यानी फना हो जाना, मृत्यु या स्थाई मिलन। मृत्यु यानी मौत के उस पार तो बस हम और तुम, कोई और है ही नहीं ना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसीलिए लोग कहते हैं कि प्यार अगर हो रहा है भैया तो बच के रहना, बहुत दर्द मिलेगा और हो सकता है ये तुम्हें मौत तक ले जाए। इसीलिए लोग प्यार करने से डरते हैं। प्यार तो पहला पड़ाव होता है जो आकर्षण होता है, दूसरा होता है लगाव मोहब्बत, और तीसरा होता है इश्क यानी गहरा प्रेम, चौथा विश्वास पनप चुका होता है, समर्पण होता है, फिर स्वयं का लोप, और देन फना हो जाना यानी मौत, मृत्यु की प्राप्ति। फना के बाद बका आता है, ये स्थाई मिलन है जहाँ प्रेमी और प्रिय में भेद समाप्त हो चुका होता है। ये प्रेम का अंतिम चरण है जहाँ साधक ईश्वर में लीन होकर शाश्वत शांति प्राप्त करता है। और कहीं ना कहीं आपने राधा कृष्ण की स्टोरी में भी एक बात सुनी होगी, जब राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे तुमसे विवाह करना है, और इसलिए कहते हैं ना कि प्रेम का जो आइडल स्वरूप है वो राधा कृष्ण का है, तो राधा से कृष्ण ने कहा, जरा एक तरफ एक बार मेरी ओर पलटना। जब वो उधर की ओर पलटी तो उन्हें राधा राधा दिख रही थी, केवल मतलब श्री कृष्ण में भी राधा दिख रही थी। तब कान्हा ने कहा, जब मुझ में और तुम में कोई फर्क ही नहीं है, हम दोनों फना हो चुके हैं, हम दोनों एक ही हैं, तो मैं विवाह किससे करूं। और ये वो चरम सीमा थी जो प्रेम की आखिरी पड़ाव को साबित करता है। उम्मीद है कि आज मैंने आपसे जो डिस्कशन किया प्रेम को लेकर, वो आप अभी समझ गए होंगे कि प्यार और प्रेम क्या होता है। काफ़ी गहराई की बातें होती हैं, बहुत कुछ समझना होता है, बहुत परीक्षाएं होती हैं, तब जाके कहीं प्यार हम हासिल करते हैं। और प्यार की गहराई इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है, और आज के ज़माने में तो भैया दो से तीसरे पड़ाव में ही लोग बोलते हैं ना हमारी अवधि भाषा में, हल बोल जाते हैं यानी हार मान जाते हैं। चलिए फिलहाल आज मैं स्टोरी लेके आई थी आप सभी के साथ में साझा करने के लिए, और मैंने उसका एक पड़ाव आपसे साझा भी किया। चलते हैं उसकी नेक्स्ट पड़ाव की ओर, और नेक्स्ट पड़ाव जो है वो क्या कहता है, वो है एक ख्याल जो साथ चलता रहा। जब हम प्यार में होते हैं तो हमारे ख्याल में बस किसी का साथ चलता रहता है, वो साथ हो या ना हो उसके ख्याल चलते रहते हैं। तो एक मुलाकात तो मैंने आपसे डिस्कशन कर ली, अब दूसरी मुलाकात पे आते हैं। दूसरी मुलाकात, और ये कहानी थी आरव और सिया की। सिया के लौटने के बाद दोनों फिर से उसी बस स्टॉप पर मिलने लगे। अब पहले जैसी झिझक नहीं थी, दोनों के बीच बातचीत का एक सहज सिलसिला बन चुका था। कभी चाय की दुकान पर खड़े होकर बातें होती, तो कभी बस के इंतजार में, तो कभी सिर्फ एक मुस्कान ही पूरे दिन को खूबसूरत बना देती। होता है ना, कोई पूरे दिन के थकान को आपके एक प्यारी सी स्माइल से खत्म कर सकता है, एक प्यारी सी बात से, एक डेडिकेशन से, एक प्यारी सी नोकझोंक वाली बात से, एक डेडिकेशन वाले नाम से, हाँ जो खास उसने आपके लिए रखा हो। अच्छा, एक बात और है दोस्तों, प्यार में वैसे तो हम हर किसी का नाम यूं ही लेते हैं, लेकिन जब हम किसी के प्यार में होते हैं, कोई हमारे लिए खास होता है, तो हम उसका स्पेशल नाम भी रखते हैं और हम उसे उसी नाम से बुलाते हैं। हर किसी के लिए हम स्पेशल नाम नहीं रखते हैं, कोई हमारा खास होता है और हम उसको उसी नाम से बुलाना पसंद करते हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, सामने वाले को भी वो नाम काफ़ी पसंद आता है और ये हमारे रिश्ते की गहराई को और गहरा करता है। खैर, चलते हैं कहानी की ओर। एक शाम सिया कुछ उदास दिखाई दी। आरव ने पूछा, सब ठीक है? सिया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ बस कभी कभी ज़िंदगी के कुछ सवाल जवाब नहीं मिल पाते और सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है। आरव ने ज़्यादा पूछना ठीक नहीं समझा। अगले दिन जब वो बस स्टॉप पहुंचा तो सिया वहाँ नहीं थी, लेकिन इस बार उसे बेचैनी नहीं हुई। उसे भरोसा था कि अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो दूरी उसे कमज़ोर नहीं कर सकती है। 3 दिन बाद सिया आई। उसके हाथ में एक पुरानी सी डायरी थी। ये तुम्हारे लिए, उसने डायरी बढ़ाते हुए आरव से कहा। आरव ने हैरानी से पूछा, मेरे लिए? हाँ, लेकिन इसे घर जाकर पढ़ना, सिया ने आरव से कहा। उस रात आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में अचानक आते हैं और बिना किसी वादे के हमें बदल देते हैं। आगे के पन्ने में सिया ने अपने संघर्ष, अपने सपने, अपने डर और अपनी अधूरी इच्छाएं लिखी थी। एक जगह लिखा था, जब मैं पहली बार उस बस स्टॉप पर आई थी तब मुझे नहीं पता था कि रोज सामने खड़ा वो लड़का मेरी खामोशियों को भी समझने लगेगा। उफ, क्या बात है भाई, बॉस इससे बड़ी कोई गहराई नहीं हो सकती है मोहब्बत की, जब अनकहे अल्फाज सामने वाला पढ़ने लगे। आरव देर तक उस पन्ने को देखता रहा। ओह माय गॉड, मैं भी फील कर पा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी समझ पा रहे होंगे कि मैं किस लेवल पे जाके मोहब्बत आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं, विश्वास से बनता है। अगले दिन उसने सिया से पूछा, तुमने अपनी सबसे कीमती चीज मुझे क्यों दे दी? सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं और कुछ लोग इंसान को। मुझे लगा तुम दोनों पढ़ लेते हो। दोनों हंस पड़े। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक रविवार की सुबह सिया ने आरव को शहर के पुराने पुस्तकालय यानी पुस्तक वाले मेले में बुलाया। आज तुम्हें एक जगह दिखानी है, उसने कहा। दोनों किताबों के स्टॉल के बीच घूमते रहे। एक कोने में एक बूढ़े व्यक्ति हाथ से लिखित कविताएं बेच रहे थे। आरव ने पूछा, आज के समय में कौन कविताएं खरीदता है दादा? बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा जो लोग दिल से सोचते हैं वो अभी भी खरीदते हैं। सिया ने वही से एक छोटी सी कविता खरीदी और आरव को देते हुए कहा, रख लो, शायद कभी काम आ जाए। कविता की आखिरी पंक्ति थी, जिसे तुम ढूंढ रहे हो सकता है वो तुम्हारे साथ ही चल रहा हो। आरव ने कविता पढ़ी और अनायास सिया की तरफ देखा। सिया मुस्कुरा रही थी। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि कुछ रिश्तों को नाम देने की जल्दी नहीं होती, वे बस धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, यूं ही। शाम को घर लौटते समय बारिश शुरू हो गई। ओ माय गॉड, व्हाट अ किलिंग सीन, समझ रहे हैं? एक तो यादें, ऊपर से तोहफा, ऊपर से ना जाने कितने सवालात, और उसके बाद ये बारिश तड़प को बढ़ाएगा और बेकरार कर जाएगा। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो लौटते समय बारिश हुई और दोनों ही एक ही छतरी के नीचे चल रहे थे। सड़क पर पानी था, हवा में ठंडक थी और चारों ओर भागती हुई दुनिया। लेकिन उन दोनों को जैसे किसी मंजिल की जल्दी नहीं थी। अचानक सिया रुक गई। आरव, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? आरव ने कहा, किस बात का? किसी अपने को खो देने का, सिया ने उससे कहा। आरव ने कहा, कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, फिर बोला, डर तो लगता है, लेकिन ज्यादा भरोसा है कि जो लोग दिल में बस जाते हैं वो कभी पूरी तरह खोते नहीं। बिल्कुल सही बात है ये दोस्तों, जो हमारे दिल में बस जाता है उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी अच्छाइयाँ हम कभी अपने दिल से अलग नहीं जाने देते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि वो हमारे साथ में कभी किसी गलत फहमी के चलते हमें कुछ भी सुना के चले जाएं, पर हम उस गलत फहमी में, उस गुस्से में, उस नाराज़गी में कहे उसके वो सारे कड़वे शब्द भूल जाते हैं, पर उसकी वो अच्छी बातें, उसके साथ बताया हुआ वो पल जो हमने मुस्कुराते हुए बिताया था, हमेशा अपने दिल में सहेज कर रखते हैं। सिया की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार वो उदासी की नहीं आंखें थीं, मतलब उसकी जो नमी थी वो उदासी वाली नहीं थी, अपनेपन की और अपनेपन से मिली हुई नमी की थी। और शायद उसी पल दोनों की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी, जहां मुलाकातें सिर्फ मुलाकातें नहीं रही बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनने लगी थी। होता है ना हमारी भी लाइफ में ऐसा कुछ, कोई आता है और चला जाता है, पर हमें लगता है कि मतलब बंदा आया ही क्यों था या बंदी आई ही क्यों थी, अगर ऐसे ही जाना था तो क्यों, पर अगर उसका आना ना होता, वो ऐसा साथ ना होते जो अपने साथ लेके आए थे वो, और वो पल ना होते जो उन्होंने हमारे साथ में बहुत ही खुशी के साथ बिताए थे, कैसे हम भूल सकते हैं सब चीज़ों को। ना हम भूले ना आप भूले, और हम आपको भूलने भी नहीं देंगे। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट भी है, कभी भूलेगा भी नहीं। और अगर कोई नाराज़ होकर चला जाता है ना, तो उसकी नाराज़गी वाले शब्द को कभी अपने, जी हाँ, यादों में मत बसाइएगा, बस अच्छी अच्छी बातों को अपने साथ रखिएगा। फिलहाल चलते हैं एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर, लेकिन उससे पहले वेलकम करना चाहेंगे हम प्रबल मिश्रा जी उर्फ पंडित जी का। गुड इवनिंग आपको भी सर, और इसके साथ में मेरे आसपास बहुत शोर हो रहा है इसलिए आपकी आवाज़ थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। ये हैं हमारे प्यारे लिसनर नागेश्वर धाकर जी, और सविता शास्त्री जी ने हमें फीडबैक दिया है, बहुत बड़ा वाला थैंक यू आपको, ये हमें गोरखपुर से सुनती हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति और जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई, हमें नागेश्वर जी का एक मैसेज प्राप्त हुआ है जिसको सुन के मुझे हंसी आ रही है। मैं जब तक मुस्कुरा लेती हूँ, आप लोग एंजॉय करिए इस शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक को। और शो चल रहा था या चल रहा है अभी भी आपका अपना इवनिंग शो यानी कि गुंडा मैसेज मसाला विथ आरजे बीना वाला, बट आपकी शाम को थोड़ा सा खास बनाने के लिए आई हूँ मैं आज आपके साथ में, यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। फिलहाल लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और फिर आते हैं उस ओर। और ये गाने जितने भी हैं सब मेरे ही प्लेलिस्ट के हैं, मुझे उम्मीद है कि ये गाना आपके भी दिल के उतने ही करीब होगा जितना कि मेरे हैं। और कहते हैं ना कि कुछ हो या ना हो, लेकिन इंसान को सामने वाले से उसकी खैरियत जरूर ले लेनी चाहिए, तो इसीलिए इस गाने के माध्यम से लेते हैं हम आप सभी की खैरियत। स्टे ट्यून्ड गाइज़।

क्या करें भाई, अब चलते हैं आप सभी से फिर से मुलाकात करते हैं और हमें कहानी का तीसरा पड़ाव भी आपसे साझा करना ही पड़ेगा, हम मजबूर है। और आप सभी के मैसेजेस को पढ़ पढ़ के हंसना भी हमारी मजबूरी हो गई है। इतने प्यारे मैसेजेस, आप आपस में बातें करते हैं और आपकी गपोलिया, जिसे हमें अवधी भाषा में गपोलिया कहते हैं, मतलब बातचीत को, तो आप लोग की गपोलिया देख के हमको रहाई सी नहीं होता है, मतलब हमसे सब्र ही नहीं होता है और हम मुस्कुरा रहे हैं। तो हमने कहा कि अब हमें लग रहा है हस्तक्षेप कर ही देना चाहिए। अनुष्का जी भी आ गई हैं श्रावस्ती से, गुड इवनिंग आपको भी। और नागेश्वर जी, आपका तो हम क्या ही कहें, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी सी मुस्कान हमारी बरकरार रखने के लिए। शैलेंद्र जी हैं, प्रबल जी हैं, नागेश्वर जी हैं और बाकी सभी लिसनर्स भी हमारे साथ में बने हुए हैं। फिलहाल चलते हैं, अभी वक्त हो चला है 7:38 बाय स्टूडियो क्लॉक, तो लेते हैं आखिरी पड़ाव की ओर आप सभी को और सुनाते हैं वो किस्सा जो इस कहानी का हिस्सा है। कहानी वही है, एक ख्याल जो साथ चलता रहा। और हाँ, ये आरव और सिया की कहानी। और अब डायरी का आखिरी पन्ना, डायरी का आखिरी पन्ना क्या कहता है, आइए सुनते हैं। बारिश वाली उस शाम के बाद आरव और सिया के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा गहरा हो गया था। अब वे सिर्फ बस स्टॉप के साथ ही नहीं थे, वे एक दूसरे की आदत बन चुके थे। होता है ना, ज़िंदगी में हम आदत बन जाते हैं, कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और वो आदत चाय की चुस्की जैसी नहीं होती है, वो आदत होती है सांसों के माला पे सिमरू मैं पीका नाम जैसे वाली। लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगे, तब कहीं ना कहीं कोई अनकही सा सवाल सिर पर उठने लगता है। एक दिन आरव अपनी अलमारी साफ कर रहा था, उसे वही डायरी मिली जो सिया ने उसे दी थी। वह मुस्कुराया और यूं ही उसके पन्ने उलटने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि डायरी का आखिरी हिस्सा बाकी पन्ने से थोड़ा मोटा है, जैसे दो पन्ने आपस में चिपके हों। जिज्ञासा में उसने उन्हें अलग किया, अंदर एक मोड़ा हुआ कागज रखा था। आरव हैरान रह गया, उसे याद नहीं था कि उसने पहले कभी इसे देखा हो। कांपते हाथों से उसने कागज खोला, उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद अब वो समय आ गया है जिसमें मैं सबसे ज्यादा डरती थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा और धड़कते हुए दिल के साथ नीचे एक पता लिखा था और आखिर में सिर्फ एक तारीख। वो तारीख अगले ही दिन की थी। देख रहे हैं क्या कोइंसिडेंस है, अगर आज वो अपनी अलमारी ना साफ कर रहा होता, उस डायरी को उसने ना देखा होता, उस पन्ने को उसने ना खोला होता, तो शायद उसे ये पल मिस हो जाता। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पूरी रात आरव सो नहीं पाया। सिया, कभी इस पन्ने का जिक्र क्यों नहीं किया तुमने, इसी सवाल के साथ। वह पता किसका था और वो किस बात से डरती थी। अगले दिन उसने सिया को कई बार फोन किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था, संदेश भेजे कोई जवाब नहीं। शाम होते होते उसकी बेचैनी बढ़ गई। आखिरकार वो उस पते पर पहुंच गया, शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा घर था, दरवाजे पर ताला लटका हुआ था, पास ही एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। आरव ने पूछा, माफ कीजिए, यहाँ सिया रहती है? बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा, तुम आरव हो? आरव चौंक गया, जी, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? बुजुर्ग कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, वो तुम्हारे बारे में बहुत बात करती थी। आरव का दिल बहुत तेज से धड़कने लगा। वो कहाँ है? बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया, उसने बस एक लिफाफा उसके ओर बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए छोड़ के गई है? आरव के हाथ कांप उठे थे। लेकिन वो है कहाँ? बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, कुछ सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलते बेटा। आरव ने वही लिफाफा खोला, अंदर एक पत्र था, उसमें लिखा था, आरव अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं कुछ समय के लिए तुमसे दूर हूं। मुझे पता है तुम नाराज होगे कि मैंने सब कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ सच ऐसा होता है जिन्हें कहने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें याद है ना, मैंने एक बार पूछा था कि तुम्हें किसी अपने को खोने का डर लगता है या नहीं? वो सवाल यूं ही नहीं था। मैं पिछले कई वर्षों से एक ऐसे रहस्य के साथ जी रही थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, और अब समय आ गया है कि मैं उसका सामना करूं।
अगर मेरी दोस्ती पर भरोसा है तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं खुद लौटूंगी। पत्र यहीं ख़त्म हो गया। आरव स्तब्ध रह गया। रहस्य, कैसा रहस्य? और सिया अचानक कहाँ चली गई? दिन बीतने लगे, एक हफ्ता, दो हफ्ता, पूरा महीना, ना फोन, ना कोई संदेश, ना कोई खबर। आरव हर शाम उसी बस स्टॉप पर जाता। उसे शायद उम्मीद थी कि शायद अचानक से सिया उसके सामने हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ फिर से वापस आए। तुम तो सच में बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक रात जब वो घर लौटा तो उसके दरवाजे के नीचे एक छोटा सा लिफाफा पड़ा मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक निशान था, एक छोटा सा नीला तारा। एक छोटा सा नीला तारा, उसी नीले तारे का निशान उसने कभी सिया की डायरी पर एक पन्ने पर देखा था। उसने जल्दी से लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक 10-12 साल की लड़की खड़ी थी, उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था। तस्वीर के पीछे लिखा था, सच्चाई यहीं से शुरू होती है, और नीचे एक वाक्य, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो कल शाम 5 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना अकेले। आरव की आंखें तस्वीर पर टिकी रह गई। वो लड़की सिया थी, लेकिन वो लड़की कौन थी और उसे वहाँ अकेले क्यों बुलाया गया था? उस रात आरव की आंखें नींद छोड़ क्यों चुकी थी? उसे महसूस हो रहा था कि जिस कहानी को वो एक साधारण प्रेम की कहानी समझ रहा था, असल में उसकी शुरुआत ही अब हुई थी। और अगले दिन पुराने रेलवे स्टेशन का क्या मंजर था, काश के वक्त होता और मैं आपसे साझा कर पाती। हाँ जी दोस्तों, वक्त हो चला है आपके फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम का, नहीं आपके गीत आपके नाम से प्रोग्राम का। और कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं जब भी आऊंगी मंगलवार इसी कहानी को पूरा करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इसके 5 पार्ट हैं, 3 मैंने आपको सुना दिए हैं। नेक्स्ट मैं जब भी आऊंगी तो आपको उसके 2 पार्ट और सुना के जाऊंगी। फिलहाल चलती हूँ और लेती हूँ आप सभी से अलविदा। अब वक्त हो गया है मेरे घर जाने का और आप लोगों की फरमाइशों का। पर चलते चलते एक प्यारा सा नगमा आपके नाम करके जाती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। और शो चल रहा था गुंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला, लेकिन आज आपकी शाम को थोड़ा सा खास बनाने की कोशिश हमने की, यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा ने। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा और आपकी आरजे सिंपल के आने का वक्त हो गया है, जो कि नॉट सो सिंपल है, आप सभी जानते हैं। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, और सुनिए इस गीत को।

हेलो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कैसे हैं आप सब और क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में बहुत खास खास, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत चिकनी चिकनी, बहुत चुपड़ी चुपड़ी बात मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है अभी तक, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिएगा, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिएगा, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिएगा और लगा दीजिएगा जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका है, जज्बात आपके हैं, गीत आपके हैं, यार जो सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा के लिए आपकी है, ये 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन हमेशा के लिए आपका है और गीत आपके नाम से और आपके जज्बात तो रहेंगे ही रहेंगे ना दोस्तों। सो बढ़ेंगे हमारी आज की पहली फरमाइश की तरफ और आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल तो करूंगी ही करूंगी, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप सभी से। शायद आप लोग भी मेरी बातों से सहमत होंगे। सो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि दिलों में अब वो पहले सी वफादारी नहीं मिलती, दिलों में अब वो पहली सी वफादारी नहीं मिलती, जमाने की हवा बदली कोई यारी नहीं मिलती, जो अपने थे वही अब अजनबियों से भी बदतर हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया देखते होंगे, आप लोग न्यूज देखते होंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल किस तरफ इशारा करना चाहती है। भाई दोस्तों मैं नहीं करना चाहती थी हमारे इस फरमाइशी प्रोग्राम में जहां हम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं, वहां मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों मैं अपना फोन यूज करना भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठूंगी देखूंगी तो मेरा मूड डिस्टर्ब हो जाता है, मैं दोपहर में अपना फोन खोलूंगी तो मेरा मूड डिस्टर्ब हो जाता है, मैं शाम को अपना फोन खोलूंगी तो मेरा मूड

डिस्टर्ब हो जाता है, इनफैक्ट आधी रात को भी खोलूंगी। ऐसी ऐसी न्यूज, ऐसी ऐसी बातें, ये दुनिया को क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या इंसानियत बची ही नहीं है? क्या जज्बात बचे ही नहीं है? क्या रिश्ते बचे ही नहीं है? कुछ बचा ही नहीं है दुनिया में पैसों के अलावा और अपनी ईगो के अलावा? मुझे तो बस यही लगता है कि अपनी ईगो के लिए और पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। आज की इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो उन्हीं पे मैं चंद लाइनें पेश करना चाहूंगी अपनी तरफ से कि दिलों में अब वो पहले सी वफादारी नहीं मिलती, जमाने की हवा बदली कोई यारी नहीं मिलती। जो अपने थे वही अब अजनबियों से भी बदतर हैं। यहाँ इंसान तो मिलते हैं लेकिन इंसानियत नहीं मिलती। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। शैलेंद्र जी आपका स्वागत है, प्रबल मिश्रा गोंडा से आपका भी स्वागत है, नागेश्वर धाकड़ की गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, अनुष्का श्रावस्ती से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, सुरेश कुमार जी चौक से, मुस्तफा आपका भी स्वागत है, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, मनीष शर्मा खुरासा गोंडा से, स्टे ट्यून मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, चांदनी गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, द ग्रेट सीन साहब आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके इस शो में। फरमाइशी में जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ और बस आपके नाम से। So, आज मैं आप लोग से भी पूछना चाहती हूँ, क्या खून नहीं खोल रहा? क्या गुस्सा नहीं आता? ऐसा नहीं मन होता कि फोन उठा के फेंक दूं? या फिर जो ये कुकर्म कर रहे हैं कुछ लोग, उन मतलब उनको खुद ही जाके मार डालूं? भाई जो ये कर रहा है उनके लिए तो हम ये भी कर सकते हैं। मुझे नहीं बोलनी चाहिए ये सारी चीजें, लेकिन मतलब मैं मेरा मतलब वो होता है ना कि वो जो घड़ा भर जाता है तो वो घड़ा भर चुका है बर्दाश्त करते करते। आज इसलिए मैंने डिस्कशन किया है और आप लोग भी बताना कि आखिर ये सब कैसे रोका जा सकता है और आखिर इंसानों को क्या है जो ये सब चीजें करने पे मजबूर कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, या फिर उनको मजा आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इन सब चीजों में हाथ सोशल मीडिया और हमारी ये बॉलीवुड टॉलीवुड और फिर उसके बाद हॉलीवुड एक्शन मूवीज, इन सब की देन है भाई। क्या है चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारा आज का पहला गाना। हमारे पास में पहली फरमाइश है केके गुप्ता जी की तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, और तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से केके गुप्ता जी को सुनना है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, दिल तो है दिल। सो एंजॉय करते हैं मुकद्दर का सिकंदर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी बातों को, चिकनी चुपड़ी बातों को और थोड़ी बहुत कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

क्या कीजिए। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा नगमा मुकद्दर का सिकंदर का के गुप्ता जी की फरमाइश पर जो कि है तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से आपका स्वागत है। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना, ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। ओ माय गॉड, सो एंजॉय करते हैं ये रेट्रो क्लासिक सुपर डुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारी सुपर डुपर हिट अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। स्टे ट्यून्ड।

और फिर की वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है, जग्गू दादा की और जुगल किशोर वर्मा जी को। मीन्स हमारे जग्गू दादा को सुनना है गाना दिल तेरा दीवाना है सनम। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा फिर से ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा लदा जी की और मोहम्मद रफी जी की आवाज में, लेकिन इस बार हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। राजेश सिंह जी मालवे नगर गोंडा से आपका स्वागत और इस्तकबाल है। अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से आपका भी स्वागत है। Stay tuned.

कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। हाँ, तो लता जी की और मोहम्मद रफी जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना। और कसमें खाना कितना आसान हो जाता है ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक सिक्के की दो पहलू होते हैं दोस्तों। तो ये समझ लो कि कसमों के भी दो पहलू होते हैं दोस्तों। एक सच्चा वाला कसम होता है, एक झूठा वाला कसम होता है। अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा सच्चा वाला है, कौन सा झूठा वाला है, ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर मुझे पता होता तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार होती दोस्तों। हाँ, मज़ा ही आ जाता, ओ बल्ले बल्ले हो जाता। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रबल मिश्रा जी की गोंडा से, और प्रबल मिश्रा को सुनना है गाना पागल मैं तेरा। सो एंजॉय करते हैं ये पागल मैं तेरा गाना हमारे प्रबल जी की फरमाइश पर। P for प्रबल, P for पागल। वाओ, स्टे ट्यून्ड।

0: पागल।
1: ओह माय गॉड, सो हमने एंजॉय किया पागल मैं तेरा, प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ चलेंगे चलेंगे, अरे चलते हैं, थमो जी थमो। हमारे एक लिसनर हैं, उन्होंने कुछ कहा है। इनका कहना है कि अजनबी बन के लोग मिलते हैं, अपना बनाकर दिल में बसा लेते हैं। अजनबी बनकर लोग मिलते हैं और अपना बनाकर दिल में बसा लेते हैं, मन किया तब तक तो दिल से खेलते हैं, फिर बाद में अजनबी बताकर निकल लेते हैं। ये हमारे लिसनर का कहना है और मैं इनसे बस यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरे दोस्त। जो छोड़ कर गया जरूरी नहीं कि वो आपके दिल से खेल कर ही गया हो। क्या पता कि वक्त और हालात के खेल ने उसको थका दिया हो और वो थक हार कर आपके पास से चला गया हो, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। और अगर आपने शायराना अंदाज में अपने दिल के जज्बात को पेश किया है तो आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल कैसे पीछे हट सकती है। मैं ये भी कहना चाहूंगी, चंद लाइनें हैं आपके लिए, कि सब एक जैसे हो जमाने में ये जरूरी तो नहीं, हाँ सब एक जैसे हो जमाने में ये जरूरी तो नहीं, हर कोई जज्बातों से खेले ये मजबूरी तो नहीं, कुछ थक्के भी छोड़ देते हैं साथ सफर में दोस्त। कुछ थक्के भी छोड़ देते हैं साथ सफर में दोस्त, जो मुंह मोड़ के जाए वो बेवफा हो जरूरी तो नहीं। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा जी की, उनको सुनना है गाना लिफ्ट करा दे। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से सुपर डुपर डुपर हिट सॉन्ग, लेकिन इस बार मुस्तफा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों ये जुबान भले कड़वी हो, लेकिन जो वो इंसानों की सोच होती है ना, और वो जो इंसानियत होती है ना, और वो अपने अलावा ना दूसरों के भी फीलिंग्स के बारे में सोचने की जो परवाह होती है ना, वो पता नहीं क्यों शायद गॉड गिफ्टेड है। चाहती भी हूँ तब भी नहीं जाती, इसलिए शायद बस लोगों के दिलों की बातें आप तक

कभी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुस्तफा जी की फरमाइश पर बढ़ते हैं, हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन हमारे लिसनर का फिर से रिप्लाई आया है, उन्होंने टिप्पणी किया है, उनका कहना है कि वक्त और हालात का तो एक बहाना है साहेब, वरना छोड़ने वाला तभी छोड़ता है जब उसको बेहतर से बेहतरीन मिल जाता है। मिले कोई बेहतर तो लोग अक्सर बदल जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी, हमारे बहुत ही प्रिय लिसनर हैं जो रोज़ शायद ये शायराना अंदाज में बहस छेड़ देते हैं, और ये बहस मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी बोल रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा बोल रहे हैं जहाँ मुझे ये लग ही जाता है कि सब एक जैसे तो नहीं होते हैं, है ना। अभी भी तो लोगों के दिल बच्चे होंगे कहीं ना कहीं, इतना बड़ा तो दिल किसी का नहीं हो गया, सबका तो नहीं हो गया होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मिले कोई बेहतर तो लोग अक्सर बदल जाते हैं, नए रिश्तों की चमक देखकर पुराने ढल जाते हैं, पर हर जाने वाला बेवफा नहीं होता है, कुछ तो टूटे हुए रिश्तों के बोझ तले भी कुचल जाते हैं। नागेश्वर धाकड़ जी, आपकी बात में वजन तो है कि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन सोचिए जरा, क्या जिसे हम बेहतर समझकर चुन रहे हैं वो वाकई सुकून देगा, या फिर वो भी महज एक नया बहाना ही साबित होगा। खैर, जिंदगी का हर मुसाफिर अपनी अपनी दास्तां सुनाता है, अपनी अपनी दास्तां लिखता है। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से, उनको सुनना है गाना मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना तेरी, सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं, सादगी पे दुनिया मरती है, ठीक है। और ये दिखावा तो बस दुनिया सच में दिखावे के लिए करती है, लोगों के दिल से पूछोगे उनको क्या पसंद है। फिलहाल स्टे ट्यून्ड।

दीवानों के दीवानगी से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो हमने एंजॉय किया है पंकज उदास अलका याग्निक जी की आवाज में आदमी खिलौना है मूवी का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो की है गौरा चौकी से। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास से, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सबीहा चांदनी और रीना जी रुड़की से आपका भी स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। एंड नीना वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश मींस धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश, और धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवाज विकास गुंडा। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय के है ये गाना धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर, जो की है आवाज विकास कोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की। सबीहा को सुनना है गाना मुबारक ईद मुबारक। सो एंजॉय करते हैं सबीहा की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सोनू निगम की फरमाइश पर। एंड नाउ लेट्स सेलिब्रेट। स्टे ट्यून्ड।

ने एंजॉय किया है सोनू निगम की आवाज में ये वाला नगमा। सबीहा की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से, और मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना प्यार का है बनाया राम ने। सो एंजॉय करते हैं सूर्या का ये गाना अलका याग्निक जी की आवाज में हमारे मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर जो की है बाराबंकी से। स्टे ट्यून्ड।

दोस्त, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की। मुमताज अंसारी जी को सुनना है गाना दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। सो एंजॉय करते हैं मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड। और ये वाला नगमा एंजॉय करेंगे। इस नगमे के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहाँ हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। खा पी के आइएगा क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मिलते हैं सीधे 9 बजे आपके अपने एंटरटेनमेंट की महफिल में।

0: सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा मशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष

0: 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

और कहीं प्यार हो ना जाए। सो एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन और इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन उसके पहले दोस्तों, हमारे लिसनर का कुछ कहना है। हमारे एक लिसनर हैं जो इतनी देर से बस अपने दिलों के जज्बात को हम सबसे साझा कर रहे हैं। हम सब देख सकते हैं कि इन्होंने दुनिया को, रिश्तों को, जज्बातों को कितने करीब से देखा है। इनका कहना है कि लाख उलझने हो फिर भी हालातों से लड़ना पड़ता है, लाखों गम छुपा रखे हो सीने में फिर भी मुस्कुराना पड़ता है, कोई साथ दे या ना दे फिर भी महफिल में सबको अपना बताना पड़ता है। सो बहुत ही गहरा दर्द है आपका। आपके इन बातों का जवाब आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल जरूर देगी। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो कैफ मोबाइल वाले गोंडा से आपका स्वागत है। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवा नगर से राजेश सिंह जी की, और उनको सुनना है गाना सुमन कल्याणपुर जी का। सो एंजॉय करते हैं ये सदा बहार नगमा सुपर डुपर हिट सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ हमारे मालवा नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल

पुकारा और हम चले आए, चांद हथेली पर ले आए। हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना। मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले मुझे जवाब देना था। सो आपकी बात का मेरे दोस्त बस ये छोटा सा जवाब देना चाहूंगी कि तजुर्बा कहता है कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। तजुर्बा कहता है कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। भीड़ तो बहुत है पर साथ कोई मुकम्मल नहीं होता। वही हाथ अक्सर पीठ पर खंजर उतार देते हैं। वही हाथ अक्सर पीठ पर खंजर उतार देते हैं जिन पर यकीन किए बिना कभी दिन सफल नहीं होता। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। उदालक शर्मा को मनकापुर से सुनना है गाना तुम तो परदेसी हो तुम तो परदेसी। सो एंजॉय करते हैं मनकापुर से उदालक शर्मा की ये फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

तो परदेसी। उदालक शर्मा की फरमाइश पर कविता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है मेहंदी का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सदा बहार गाना, हर दिल में बसने वाला गाना, हर दिल पर राज करने वाला गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इस गाने को सुनते वक्त दोस्तों मैंने एक वर्ड सुना है, रैन बसेरा। तो रैन बसेरा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने फरमाइशी महफिल को फरमाइशी महफिल नहीं कहना चाहिए, मतलब लाइक महफिल भी है लेकिन रैन बसेरा भी है इनके हिसाब से। इस रैन बसेरे में सारे के सारे परवाने आते हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, चांदनी की चांदनी को सुनना है गोंडा से गाना, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा दर्द भरा नगमा, सैड सॉन्ग, चांदनी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

होगा, तेरे होठों की लकीरों पे मेरा ही नाम होगा। अरे मुझको अपना बनाया ना बना, मुझको अपना बनाया ना बना।

मेरा दिल टूटा तो पंकज संभल ना पाओगे। तो हमारे कौन कौन से लिसनर्स हैं जिनका नाम है पंकज या फिर उनके जानने वालों का नाम है पंकज, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। हमने एंजॉय किया है ये गाना चांदनी की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, और उनको सुनना है सारे शिकवे गिले भुला के कहो और दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना निब्बर जी की फरमाइश पर। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों हमारे एक लिस्नर है, उन्होंने कहा है कि अक्सर मुलाकातें भी उन्हीं से होती हैं जो तकदीर में नहीं होते हैं, दिल भी वही तोड़ते हैं जिनकी कभी उम्मीद नहीं होती है, अपने ही दगा देते हैं जुबा में मिश्री घोलकर हाथों से जहर पिला जाते हैं। आए हाय कितनी कड़वी बात आपने बोली है। तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगी कि वो हाथों में जहर लिए हमारी सादगी को आजमाते रहे, वो हाथों में जहर लिए हमारी सादगी को आजमाते रहे, मिश्री घोल कर बातों में हमें अपना बनाते रहे, अब हम भी खुद जुबा में जहर घोल के फिरते हैं, अब हम भी खुद जुबा में जहर घोल के फिरते हैं ताकि दूर रहें वो जो कल तक हमें बेवकूफ बनाते रहे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। सो बेवकूफ बनने से अच्छा है हमें खुद ही अपनी जुबा में जहर घोल लेना चाहिए। सीधा सीधा साफ साफ ताजा।

सारे शिकवे गिले भुला के कहो और दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो। हम एंजॉय के ही गाना बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश दोस्तों हमारे पास में है कैफ मोबाइल वाले की गोंडा से, उनको सुनना है गाना कहे तो उसे सजना। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। लेकिन अलविदा लेने के पहले मेरे लिसनर का कहना है कि खबर सबको थी मेरे कच्चे मकान की, फिर भी लोगों ने दुआ में बरसात मांगी। अच्छा जी, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि दुआओं के लिबास में छिपी दुश्मनी भी देख ली, दुआओं के लिबास में छिपी दुश्मनी भी देख ली, कच्चे मकान पर बरसती वो बेदर्दी भी देख ली, पर अभी आंधियों से डर नहीं लगता जनाब, हमने खुद अपने हाथों से अपनी तकदीर बदल दी। तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बस आप खुद क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए खुद कितना कर सकते हैं, आप अपने आप से खुद कितना प्यार करते हैं, बस उस पे फोकस करिए। क्योंकि जिन्होंने दुआओं में हमारे लिए बरसात मांगी थी, उन्हें खबर ना थी कि हमने तूफानों से वफा मांगी थी। अब हम भी बदल गए हैं और हमारी जुबां भी, जहर चखने वालों ने ही हमसे मिश्री की दुआ मांगी थी। सो लेते हैं इसी के साथ में अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना, सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कभी नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। सो मच लव, सो मच ब्लेसिंग्स, लव यू सो मच।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
12: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
13: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
14: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
15: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। और आज जब ये रात का वक्त आता है तो मैं बोलता हूँ कि रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, रात रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। तो चाहने वालों की इस शाम सी होती हुई रात में आप सभी का इस्तकबाल, आप सभी का अभिनंदन, वंदन, नमन और स्वागत। और आज तो भाई, आज तो बहुत खास दिन है हमारे लिए, क्या बात है। एक तो ज्येष्ठ का मंगल है और दूसरा क्या बात है भाई, हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया किसने। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। जी हाँ, आज की रात बड़ी देर के बाद इसलिए आई है क्योंकि आज जी बीना जी हमारे साथ उपस्थित है भाई, आप सभी की बहुत ही पसंदीदा आरजे और बहारे गजल, क्या बात है, ये उनका ही शो। तो भाई आपके ही शो में आपका अभिनंदन है। बीना जी कैसी हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी होंगी और शुभ संध्या आपको। अनिल शास्त्री जी क्या बात है दादा, गुड इवनिंग मनु जी क्या बात है, ये मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं आपसे शिकवा करूँ, ये मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं आपसे शिकवा करूँ, आप होना चाहते हैं बेवफा हो जाइए, आपके कदमों पे ला के रख दी है दिलो जा, मेरी मोहब्बत की दुनिया के खुदा हो जाइए। जी हाँ, तो आपसे तो उम्मीद यही करता ही करते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुनिया के आप खुदा बन जाएं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सविता शास्त्री जी उपस्थित है, चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं आपको, कैसी हैं आप, और ये ज़रूर बताइए कि आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। हमारे साथ इम्तियाज अहमद जी भी उपस्थित हैं, हमको दिखाई पड़ गए, क्या बात है भाई। और इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं श्री तीरथ प्रसाद सोनी जी हमारे साथ हैं। जी भाई साहब हो, देखिए शुभ रात्रि, ये प्लीज़ बहारे गज़ल में शुभ रात्रि कहने का अधिकार हमने आपसे ले लिया है। अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। नहीं साहब, शुभ रात्रि हम कहेंगे, आप थोड़े ना कहेंगे। और आज की रात जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं, उनका नाम है अब्बास ताबिश। एक ऐसा नाम जो उर्दू अदब की दुनिया में बड़ी ही पाकीजगी के साथ लिया जाता है। जिंदगी के अछूते मौजूआत को छूती हुई उनकी गजलें ऐसा लगता है कि हमसे बात करती हुई चल रही हैं। वो गजल, वो शायरी जो कभी महबूब और महबूबा से गुफ्तगू करती थी, जब मुनव्वर राना साहब ने आया, जब मुनव्वर राना साहब आए मुशायरों की दुनिया में, तो हमने देखा कि जो चौखट के बाहर की ज़िंदगी थी उसको बहुत लोग बयां कर रहे थे, लेकिन जो चौखट के अंदर की ज़िंदगी होती है, माँ की ज़िंदगी होती है, बहन की ज़िंदगी होती है, बेटी बेटे की ज़िंदगी होती है, उस ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से बयां किया मुनव्वर राना साहब ने। और ऐसा ही कुछ हाल हमारे अब्बास ताबिश साहब का भी है। उनकी लिखी हुई एक गजल सुनाता हूँ आपको। उन्होंने लिखा कि हंसने नहीं देता कभी रोने नहीं देता, हंसने नहीं देता
कभी रोने नहीं देता, ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता। हंसने नहीं देता, कभी रोने नहीं देता, ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता। तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश, तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश। बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता। भाई इंसान से अगर उसकी ख्वाहिश मांग ली जाए तो समझिए कि ऐसे बच्चों से उनका खिलौना मांग लिया हो। और हम सभी जानते हैं कि जिंदगी के तीन सच हैं। बचपन में इंसान का खिलौना उसका सबसे सच्चा साथी होता है। यौवन में जोश इंसान का सच्चा साथी होता है। और बुढ़ापे में धन इंसान का सच्चा साथी होता है। अगर आप वृद्धावस्था में हैं और आपके पास धन नहीं है तो अपने बच्चों को दो चीज़ें जरूर सिखाइएगा, या तो उनको कार दीजिएगा, और अगर न दे पाइए तो संस्कार दीजिएगा। वो संस्कार अगर आपकी है, तरबियत आपकी अच्छी है, तो बिना धन के भी काम चल सकता है। हंसने नहीं देता, कभी रोने नहीं देता, ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता। तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश। बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता। मैं आप उठाता हूं शबे रोज की जिल्लत, मतलब रोज रोज की जिल्लतें। और आजकल के जिंदगी का सच देखा जाए ना साहब, तो 100 में से 80 लोगों का हाल यह है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं। इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। शायद भी वही बात कहते हैं कि मैं आप उठाता हूं शबो रोज की जिल्लत, ये बोझ किसी और को ढोने नहीं देता। वो कौन है उससे तो मैं वाकिफ भी नहीं हूं, वो कौन है उससे तो मैं वाकिफ भी नहीं हूं, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। जी हाँ, क्या बात है। वो वसीम बरेली की पंक्तियां हैं कि तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ हैं, तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ हैं, हम इतने बेअदब होते कहाँ हैं, तेरे होने का वादा कैसे कर लें, तेरे होने का वादा कैसे कर लें, हम अपने आप के होते कहाँ हैं, पहले हम अपने तो हो जाएं और शायद कुछ

जी हाँ, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, श्रेया घोषाल की प्यारी सी आवाज में ये प्यारी सी गजल। और इसके पहले हमने सुनी थी हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बात कर रहे हैं बाश ताबिश आपकी, और रनिल शास्त्री लिखते हैं क्या बात है बंधु, आप तो हमेशा दिल जीत लेते हैं साहब, दिमाग से कभी काम ही नहीं लिया, दिल से काम लेते हैं और आप जैसे दिल वाले मिल जाते हैं तो क्या बात है, हमारा दिल तो आपने जीत लिया है साहब। उन्होंने लिखा कि सांस के शोर को झंकार न समझा जाए, जो सांस है इसको झंकार न समझिए, सांस के शोर को झंकार न समझा जाए, हमको अंदर से गिरफ्तार न समझा जाए, उसको रास्ते से हटाने का ये मतलब तो नहीं, उसको रास्ते से हटाने का ये मतलब तो नहीं, किसी दीवार को दीवार न समझा जाए। अब देखिए यहां पर एक दीवार शब्द आता है, अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं कवि को पढ़ाता हूँ, उनका नाम है अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने एक पोम लिखी, एक कविता लिखी जिसका नाम था मेंडिंग वॉल। उन्होंने कहा कि वो दीवारें जो हमको दिखलाई पड़ती हैं, उन दीवारों से कहीं महत्वपूर्ण वो दीवारें हैं जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन फिर भी बीच में हैं। सामाजिक दीवार आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, जो दीवार दिखाई पड़ जाए वह दीवार अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसी दीवारें होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती, और जो दिखाई न पड़ने वाली दीवारें हैं वे बड़ी खतरनाक होती हैं। भाई और भाई में बंटवारा तभी होता है जब पहले दिल में दीवार आ जाती है फिर घर में आ जाती है, और तब भाई कहता है कि बड़े नाजुक हैं खून के रिश्ते, बड़े नाजुक हैं खून के रिश्ते, तू इसे शर्मसार न कर, मेरा हिस्सा भी तू ले ले भाई, मगर घर में दीवार न कर। तो दीवार जो नहीं दिखाई पड़ती वो ज़्यादा खतरनाक है, दिखाई पड़ने वाली दीवारें ठीक है, न दिखाई पड़ने वाली दीवारें खतरनाक है, वो ज़्यादा उनमें दम होता है, वो ज़्यादा जहरीली होती हैं। एक दीवार है जो दिखाई पड़ती है, मेंडिंग वाल, बहुत अच्छी कविता है, कभी आपको मौका मिले तो पढ़िए जरूर। तो उस दीवार की हम बात करेंगे जो दीवार दिखती नहीं है। क्या आपने कभी ऐसी कोई दीवार देखी जो दीवार है नहीं लेकिन दिख नहीं रही है? अगर देखा हो जिंदगी में तो कभी महसूस कीजिएगा, होती है कि नहीं, विचारों की दीवारें होती हैं, अपने अपने परसेप्शंस की दीवारें होती हैं, अपने समझ की दीवारें होती हैं, संबंधों में दीवारें होती हैं, होती हैं। कहता है कि उसको रास्ते से हटाने का ये मतलब तो नहीं, किसी दीवार को दीवार न समझा जाए, मैं किसी और हवाले से उसे देखता हूँ, मैं किसी और हवाले से उसको देखता हूँ, मुझको दुनिया का तरफदार न समझा जाए, और ये जमीन तो है किसी कागजी कश्ती जैसी। आहा, जमीन क्या है? कागज की कश्ती। क्या उपमा है, क्या सिमली है। ये जमीन तो है किसी कागजी कश्ती जैसी, बैठ जाता हूं अगर भार न समझा जाए, भारी नहीं हूं। उसको आदत है घने पेड़ में सो जाने की, उसको आदत है घने पेड़ में सो जाने की, चांद को दीदाए बेदार न समझा जाए। और अंतिम पंक्ति उन लोगों के लिए है जिनको कभी जिंदगी में ना मिल गया हो, नहीं अपनी बातों पे वो कायम नहीं रहता ताबिश। कहता है कि वो जो व्यक्ति है वो अपने बात पर कायम नहीं रहता, अपनी बातों पे वो कायम नहीं रहता ताबिश,
उसके इनकार को इनकार न समझा जाए। यानी अगर उसने इनकार कर दिया कि नहीं, तो वो ऐसा नहीं है कि अपनी बात पे हमेशा कायम ही रहेगा। हो सकता है आज उसका नहीं कल उसके हाँ में परिवर्तित हो जाए। जी, आवश्यक नहीं है कि नहीं नहीं ही रहता है, नहीं में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हाँ की गुंजाइश होती है। प्रबल मिश्रा जी हमारे साथ उपस्थित है, प्रणाम करते हैं आपको, शुभ संध्या आपको भी। मनीष शर्मा जी उपस्थित है, गुड इवनिंग सर, नमस्कार, आपको भी नमस्कार मनीष शर्मा जी, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और चलिए साहब, जिंदगी का कई फलसफा देखा हमने, एक फलसफा आपका और दिखाते हैं। एक वो सदी थी जब पैसा कम था,

लोग ग्रामीण जीवन जीते थे, गांव संपदा होती थी लोगों की, और आज शहरीकरण का दौर है। किसी की पंक्ति है कि इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हो, इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, शीशी है जहर की और दवा ढूंढ रहे हो। और किसी ने यह भी कहा कि इस दौर में वफा की उम्मीद जिससे की, आकर के उसी हाथ का पत्थर लगा मुझे। किसी दूसरे दृष्टिकोण से किसी दूसरे शायर ने देखा तो कुछ यूं भी कहा कि इस दौर में वफा की उम्मीद मत करो साहब, इस दौर में वफा की उम्मीद मत करो साहब, वो दौर और था जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। चलिए एक गजल के माध्यम से पुराने समय को और आज के समय को, इन दोनों के समय की तुलना करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या कुछ खोया है और क्या कुछ पाया है। आप हमको बताइएगा, आपको क्या लगता है, जो खोया है वो ज़्यादा है या जो पाया है वो ज़्यादा है। गज़ल विश्लेषण का विषय है ये गज़ल, आप विश्लेषण कीजिएगा और हमें संदेश में आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी कि इस गज़ल को सुनकर आपने क्या महसूस किया, इस सदी में हमने खोया ज़्यादा है या पाया ज़्यादा है। उम्मीद है आपका संदेश हमें अवश्य प्राप्त होगा। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। क्या बात है, कंट्राडिक्शन। विरोधाभास दोनों समय में है, और एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। हाँ, हम अरशद भाई पूर्णिमा जी हैं, शुभ संध्या जी, मनु सर कैसे हैं आप? जी हाँ, बहुत अच्छा हूँ मैं। प्रवल मिश्रा जी का ओपिनियन है, दूरियाँ ही जरूर मगर अपनापन कम नहीं हुआ, यही सच्चाई है। मैंने किसी किताब में कहीं मुंशी प्रेमचंद की कहानी में पढ़ा था कि वो गांव था जहां पर किसी छप्पर को कांधा देने के लिए चार लोग खड़े हो जाते थे, बुलाना नहीं पड़ता था। ये शहर है, यहाँ मैयत को कांधा देने के लिए चार लोग नहीं मिलते। वो उनका अपना सोच, उनकी अपनी सोच। हालांकि बहुत अच्छे राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद, तो उनकी एक पंक्ति थी जो मेरे जहन में आई। नीना जी हमारे साथ हैं, नमस्कार सर। जी हाँ नमस्कार, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। और कोई अजनबी खास ही खास हो रहा है, लगता है मुझे भी प्यार हो रहा है। प्रबल मिश्रा जी, प्यार करने के लिए जिंदगी पड़ी है। मुझे एक याद आती है, हाल ही में बशीर बद्र साहब का निधन हुआ, तो उन्होंने एक मुशायरे में कहा कि हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान के वजीर आजम आए हुए थे, प्रधानमंत्री, और वो दोनों जो है वो ताजमहल दिखाने लेकर गए थे उनको, हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, और वो दोनों जो है ताज बैठे हुए थे और ताजमहल को देख रहे थे। तो ताजमहल को जब देख रहे थे तो बशीर बद्र के सामने वो दृश्य आया, और उन्होंने उस दृश्य के लिए एक शेर लिखा। वो मुझे याद आ गया अभी आपकी बात पर, कि उन्होंने लिखा कि ये सोच लो कि आखिरी साया है मोहब्बत, ये सोच लो कि आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा। मोहब्बत से अगर आप बाहर चले जाएंगे तो दुनिया में आपके पास सही क्या? प्यार हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात हो रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि किससे हो रहा है। ठीक, ये बहुत अच्छी है, अपने वतन से हो रहा है, परिवार से हो रहा है, या कुछ ऐसे लोग नहीं है जिनसे हो रहा है और वो उस लायक ना निकले। कभी कभी मैंने अपने जीवन में देखा कि हमने अपनी अच्छी भावनाएं उन्हें समर्पित कर दी जो शायद उसके लायक नहीं थे। बहरहाल, वो हमारी गलती थी। तो भाई, और वो ये भी कहते हैं कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। हम पानी की एक छोटी सी बूंद सही, लेकिन हमारा अपना एक अस्तित्व है। वी आर अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, हम पानी की एक बूंद है। समुद्र में समा जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छी बात है कि आपको प्यार हो रहा है। जी हाँ, ना बंधन है ना फेरे हैं, एक एहसास है जिसमें हम तेरे हैं। क्या बात है भाई, पंक्तियाँ लाजवाब है, और दिल भी बहुत सारे भेजे भाई मनीष शर्मा जी ने, और बहुत अच्छी पंक्ति लिखी श्रीमती सविता जी ने। लिखती है कि पहले के ज़माने में लोग दिलों में सच्चाई थी, परंतु आज के ज़माने में संसाधन है किंतु लोगों के दिलों में सच्चाई नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि कम हो गए। बिल्कुल, इस बात पर मैं भी थोड़ा सा सहमत हूँ। राजेश रेड्डी साहब की एक गज़ल है कि
यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। जो बच्चा है ना, ये बड़ा होने से डर रहा है। इसका मतलब अभी उसके पास सच्चाई है, लालच नहीं है। दुनिया के जो गलत चीज़ें हैं उनसे उसकी दूरी बनी हुई है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। न बस में जिंदगी उसके, न काबू मौत पर उसका, न बस में जिंदगी उसके, न काबू मौत पर उसका। मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान। अपंग सुनिएगा आपके काम किए। कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आता है कि कहते हैं कि ये भगवान अब उठा लो, नहीं जीना है। लेकिन सच्चाई क्या है? अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। जी हाँ, मृत्यु स्वीकार नहीं है सबको। जी हाँ, अमनी समाज के स्टार से भाई नीना जी हमारे साथ हैं, क्या बात है भाई। और कायनात जी, हेलो सर, हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि हो, मैं जिंदा हूँ। अरे अल्लाह करे आप लाखों साल जी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं प्यास से प्यासी रह गई पर हाथ न लगाया तेरी जवानी को। भाई क्या हो रहा है सर जी? मुझे खुद से हो रहा है। क्या बात है प्रबल जी, हाँ खुद से हो रहा है। और अगर खुद से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। प्रयास कीजिए कि ये उससे हो जाए जो शून्य है। अब मैं कहता हूँ कि ना, जो मंजिल होती है वो आपको तब मिलती है। इससे हम यहाँ से बलरामपुर के लिए निकले तो बलरामपुर 42 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ऐसे एक जगह पर आपको जाकर मिलेगा शून्य। और जहाँ शून्य है, जहाँ पर कुछ नहीं है, वहीं पर आप हैं। वहीं पर पहुँचना इंसान की ज़िंदगी की नियति है। इसीलिए शून्य पर क्या बलरामपुर आ गया तो हम आ गए अपने पास। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत टूटे पर कभी बाटे नहीं, बहुत टूटे पर शायद बाटे हैं। आप कितने टूटे हो प्लीज़ हमें बताएं। जो किसी पर गज़ल है, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊँगा। क्या बात है भाई कायनात जी, अल्लाह आप पर मेहरबान हो। और एक जन्म मुश्किल है। जी हाँ, आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल। जब शाम होती है तो दिया जलाते हैं, और जब दिया जलाते हैं ना तो हम आपके लिए कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं ये हम नहीं बताएंगे, ये बताएगी ये प्यारी सी गज़ल। और इस गज़ल के साथ ही हमको लगता है कि घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे लेनी पड़ेगी अनुमति। जी हाँ, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। कल है दिन बुधवार, आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर मुलाकात होगी। अपने खजाने के साथ आप तैयार रहिएगा। जी हाँ, कल हम श्रोता होंगे और आप वक्ता होंगे। जी हाँ, आसमान वाले ने चाहा तो कल आपसे पुनः मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम बहार गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को, आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल इस गज़ल के साथ आपसे लेते हैं अनुमति।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु। आज एक बार फिर हूं आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, एक लड़की भीगी भागी सी। उस दिन सालों बाद मेघना को देखा, देखते ही उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो दोनों साथ तो पढ़ते ही थे लेकिन अच्छे पड़ोसी भी थे और दोस्त भी। बचपन से एक दूसरे को जानते थे, साथ खेलना, लड़ना, पढ़ना हो या बारिश में भीगना। शायद वो अपने नाम के अनुकूल ही थी। जैसे ही बारिश शुरू होती झट से छत पर आकर ईशान को आवाज लगा देती, ईशान जल्दी आओ बारिश शुरू हो गई है। और ईशान बारिश से भीगने से ज्यादा उसके मासूम से चेहरे और उस अल्हड़पन को देखने के लिए चला जाता। उसकी इसी मासूमियत पर दिल जो हारे हुआ था। वो बचपन से ही उसे पसंद करता था पर जवानी की दहलीज पर आते आते वो कब उसका इश्क बन गई उसे भी पता नहीं चला। बस डरता था अगर उससे इजहार कर देगा तो कहीं वो उसकी दोस्ती भी ना छोड़ दे। उसको खोने के डर से उसने कभी भी उससे इजहार ही नहीं किया कि वो उससे बेपनाह इश्क करता है। जब भी बारिश होती एक भी मौका नहीं गवाती थी वो बारिश में भीगने का। और एक अजीब सी आदत भी थी, बारिश में स्कूटी उठाती और ईशान बाहर निकल तुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलती हूं ये कहती हुई उसके घर के सामने पहुंच जाती। ईशान को हंसी आती उसकी हरकतों पर और बहुत प्यार भी, बस जताने से डर लगता था। लॉन्ग ड्राइव पर ईशान को लेकर वो सीधा आइसक्रीम पार्लर ले जाती। पागल थी पूरी जो तेज बारिश में भी चाय की जगह आइसक्रीम खाने निकलती थी। ईशान को खुद भी अजीब लगती थी उसकी हरकतें लेकिन वो शामिल हो जाता था। और इसीलिए क्योंकि वो बारिश में भीग कर उसे ड्राइव पर ले जाती थी वो उसको भीगी भागी लड़की ही कहता था। और घर आते ही माँ की डांट से बचने के लिए वो सारा इल्जाम ईशान पर लगा देती। कहती ईशान को बाहर जाने का मन कर रहा था मम्मी, पर उसकी मम्मी ईशान की ओर इशारा करके कह देती मुझे सब पता है सब जानते थे उसके बचपने को पर उसकी नादानियां और बच्चों जैसी हरकतों से ही तो घर घर जैसा लगता था। उदासी को तो वो पास फटकने तक नहीं देती थी और दूसरा अगर कोई उदास हो तो उसे कैसे खुश करना है, उसके चेहरे पर कैसे मुस्कान लाना है, ये हुनर भी उसे बहुत अच्छे से आता था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है एक लड़की भीगी भागी सी। अब तक आपने सुना मेघना और ईशान बचपन के दोस्त थे। मेघना बहुत खुश मिजाज लड़की थी, हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती और उसे बारिश बे इंतहा पसंद थी। ईशान उसको बहुत प्यार करता था लेकिन उससे इजहार करने में डरता था कि कहीं वो उसकी दोस्ती भी ना तोड़ दे। अब आगे, उस दिन अचानक से जब 5 साल बाद ईशान ने उसे देखा तो बिल्कुल अलग दिखाई दी उसे। बहुत शांत, गंभीर और चेहरे से मुस्कान तो जैसे कोसों दूर। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सबको हंसाती थी वही लड़की हंसना भूल सी गई थी। अब तो ईशान को जानना था कि आखिर क्या हुआ उसके साथ। आखिर उसकी उदासी के लिए वो उसे थोड़े ना छोड़कर गया था। अपनी वजह से कभी भी उसको तकलीफ में देखना नहीं चाहता था, इसीलिए लंदन से आई नौकरी का ऑफर एक्सेप्ट करके चला गया था उसके जीवन से। दरअसल बात उन दिनों की है जब ईशान और मेघना ने कॉलेज में एक साथ एडमिशन लिया। उसे मेघना से बचपन से ही प्यार था, बस इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई थी। और दिमाग में एक ख्याल ये भी था कि पहले किसी काबिल बन जाऊं, उसके बाद मेघना से इजहार करके सीधा शादी का प्रस्ताव ही रख दूंगा, ताकि मैं हमेशा के लिए उसे अपना बना लूंगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेघना कॉलेज में उसी के एक दोस्त समीर को चाहने लगी थी और ईशान को ही आकर सब बताती थी। ईशान उसको खुश देखकर उससे कभी भी अपने दिल की बात नहीं कर पाता और अब यही सोचता कि मेघना समीर के साथ खुश रहेगी क्योंकि वो उसका प्यार है और मुझे इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। लंदन से नौकरी का ऑफर मिलने के बाद उसने जल्दी से उस ऑफर के लिए हाँ कर दिया क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी जाना था, क्योंकि यहाँ पर रहकर बिना मेघना उसका जीवन काटना बहुत मुश्किल था। आखिर बचपन से लेकर आज तक किसी और लड़की के बारे में उसने सोचा तक नहीं था। वो उन यादों से दूर जाना चाहता था लेकिन एक सोच यहीं पर ठहर गई थी कि अब जिंदगी में मेघना के अलावा किसी को अपने दिल की मालकिन नहीं बनाना है। एक साल तक तो मेघना के बारे में अपने मम्मी डैडी से पूछ लिया करता था, फिर साल भर बाद उसने मम्मी डैडी को भी लंदन ही बुला लिया। अब वो वहीं रहते थे तो मेघना और उसके परिवार की कोई खबर नहीं मिलती थी और वो भी अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि मेघना को सोने से पहले उसकी तस्वीर देखकर याद तो कर लेता था पर कभी उसकी खबर नहीं ली। उसे लगता था अब उसने शादी कर ली होगी और अपने जीवन में खुश होगी तो उसका उनके बीच में जाना सही नहीं होगा। यही सोचकर उसने 5 साल निकाल दिए। उसका भी भारत आने का मन करता था पर अब कोई वजह नहीं थी। फिर उनके कॉलेज के दोस्त प्रिया और राहुल शादी करने जा रहे थे तो उन्होंने ईशान को शादी में बुलाया तो उसे बहाना मिल गया भारत आने का। और उसे पता था कि उस शादी में मेघना भी जरूर आएगी तो उसे भी देखने। ये दोनों बहाने मिल गए थे उसे उसके वतन वापस आने के लिए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है एक लड़की भीगी भागी सी। अब तक आपने सुना मेघना और ईशान बचपन के दोस्त थे। ईशान मेघना को प्यार करता था, लेकिन जब उन दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेघना उन्हीं के दोस्त समीर से प्यार करने लगी। ईशान उन दोनों को छोड़कर नौकरी का प्रपोजल पाते ही लंदन चला गया। 5 साल बाद वो वापस आया था और उसने पाया कि मेघना बिल्कुल बदल चुकी थी। हमेशा हंसती खिलखिलाती रहने वाली मेघना ने अजीब सी चुप्पी ओढ़ ली थी। अब आगे प्रिया और राहुल की शादी के बहाने ईशान एक महीने की छुट्टियां लेकर आया था। मम्मी डैडी का भी मन था आने का, लंबे समय से वो भी परिवार और रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए थे, तो वो भी इसके साथ ही आ गए। उन्होंने अपना घर रेंट पर दे रखा था, इसलिए रहने की कोई दिक्कत भी नहीं हुई। जैसे ही वो घर पहुंचे, मेघना की मम्मी को पता चलते ही वो उनके लिए खाना लेकर पहुंच गईं और कह गईं कोई भी जरूरत हो तो बिना झिझक पहले जैसे ही बता दीजिएगा। ईशान उसी समय आंटी से मेघना के बारे में पूछना चाहता था, पर शायद उस समय वो वक्त सही नहीं लगा उसे, और ये भी था कि शादी में तो मिलेगी ही। जैसे ही वो तैयार होकर शादी में पहुंचा, उसे मेघना दिखाई दी और वो भी अकेले। पहले तो ईशान को लगा समीर किसी काम से बाहर गया होगा, तभी साथ नहीं है, नहीं तो वो मेघना को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो हिम्मत करके मेघना के पास गया। उसे देखते ही जैसे कहीं खो सी गई उसकी मेघना। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसी ने ईशान से कहना शुरू कर दिया, क्यों ईशान, इतने दिनों में एक बार भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त की याद नहीं आई तुम्हें? बिना मिले चले जाना और 5 साल में एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की तुमने कि तुम्हारी दोस्त कैसी है? मन नहीं हुआ तुम्हारा? जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी तो तुम नहीं थे, कहकर मेघना उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। और ईशान कुछ पूछता उससे पहले ही वो बेहोश हो गई। वो जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गया और अंकल आंटी को फोन किया। मेघना को ऐसा क्या हुआ था जो वो इतनी उदास थी? उसका कारण पूछा तो अंकल आंटी ने बताया कि समीर अब इस दुनिया में नहीं है। शादी के बाद जब वो हनीमून से लौट रहे थे तो रास्ते में भयंकर बारिश हुई और कार का बैलेंस बिगड़ जाने से समीर और मेघना का एक्सीडेंट हो गया और समीर ने अस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ दिया। तब से मेघना ने अपने आप को उसकी यादों में ही कैद कर लिया था, और जिसे बारिश के आने से पहले ही बारिश का इंतजार होता था, आज वही बारिश को देखते ही डर जाती है, जैसे बारिश उसका सब कुछ छीन कर अपने साथ बहा ले गई हो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है एक लड़की भीगी भागी सी। अब तक आपने सुना ईशान मेघना को प्यार करता था, लेकिन कॉलेज में पहुंच के मेघना किसी और से प्यार करने लगी और ईशान उसकी जिंदगी से दूर चला गया। 5 साल बाद जब वो वापस अपने देश आया तो उसने देखा मेघना एकदम बदल चुकी थी। पता चला कि उसका पति समीर इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। अब आगे अब ईशान को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो मेघना को इतना चाहता था तो कभी उसकी खबर क्यों नहीं ली, क्यों उससे दूर रहा जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब ईशान ने ठान लिया कि वो अपनी मेघना को पहले जैसी मेघना बनाकर ही रहेगा और हमेशा के लिए उसका हाथ थाम लेगा। अब वो किस

ईशान ने उसे ये कह के मना लिया कि वो कुछ ही दिनों में लंदन चला जाएगा, प्लीज कुछ दिन हमारे साथ बिता लो। ईशान को पता था कि मेघना को इतनी जल्दी वो समीर के गम से बाहर नहीं निकाल पाएगा, मगर फिर भी किसी शायर ने खूब कहा है कि महबूब की हर चीज महबूब की होती है, जब तक महबूब के सुख के अलावा उसके दुख भी अपने ना लगे, वो मोहब्बत क्या खाक मोहब्बत होती है। यही सोचकर इसी ट्रिप में मेघना को प्रपोज करने की ठान चुका था वो, ताकि उसे वो सारी खुशियां दे पाए जिसके लिए मेघना बनी थी। आखिर वो हिल स्टेशन पर पहुंच गए। बहुत सुहाना मौसम था और वहां के प्राकृतिक नजारे, वो धरती का अंबर से मिलन, आसपास बर्फीले पहाड़, हरियाली और उस पर कभी ठंडी का मौसम तो कभी अचानक आई बरसात, बहुत अद्भुत नजारा था। बारिश के आने पर ईशान ने मेघना को उसके कमरे में जाकर आवाज लगाई, जैसे वो सालों पहले ईशान को बुलाती थी। वो बाहर निकल कर आई और ईशान उसका हाथ पकड़कर सीधा बारिश में ले गया। कुछ देर के लिए जैसे वो भी बीती बातें भूलकर बारिश का मजा लेने लगी। अंकल आंटी दूर से देखकर खुश हो रहे थे कि उनकी बच्ची फिर से सालों बाद खुश दिखाई दे रही है। तभी ईशान ने उसको आइसक्रीम लाकर दी। ईशान ने और उसने आइसक्रीम खाते खाते पैदल ही बारिश में घूमने का मन बना लिया। मेघना और ईशान पुरानी बातें याद करके हंस रहे थे, तभी ईशान ने मेघना को प्रपोज कर दिया। इस बार वो मेघना को बताए बिना नहीं जा सकता था, चाहे उसका जो भी फैसला हो, नहीं तो शायद सब कुछ जिंदगी में पा लेने के बाद भी अधूरा ही महसूस करता खुद को। मेघना उसके मुंह से निकले शब्दों को सुनकर स्तब्ध हो गई और बोली, ईशान वापस होटल चलते हैं। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि वो मेघना से माफी मांगे या उससे कह दे कि उसे उसके साथ पूरी जिंदगी साथ चलना है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है एक लड़की भीगी भागी सी। अब तक आपने सुना मेघना और ईशान बचपन के दोस्त थे। ईशान मेघना को मन ही मन बहुत प्यार करता था लेकिन उससे कभी भी इजहार नहीं किया। जब वो दोनों कॉलेज पहुंचे तो मेघना को किसी और से प्यार हो गया और ईशान चुपचाप बिना कुछ बोले हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर चला गया। कई साल बाद जब वापस आया तो उसे पता चला कि मेघना का प्यार, उसका पति ये दुनिया छोड़कर जा चुका है और वो गम में डूब गई है। ईशान ने तय किया कि वो मेघना को वापस से खुशियां देगा, उससे शादी करेगा और उसने मेघना को प्रपोज कर दिया। अब आगे दूसरे दिन वो सब अपने शहर वापस जा रहे थे। ईशान ने अंकल आंटी से मेघना से शादी का प्रस्ताव रख दिया था। वो खुश थे पर उनका यही कहना था कि मेघना अगर खुश हो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दो दिन तक मेघना ने ईशान से बात ही नहीं करी और ईशान भी जानबूझकर उससे कुछ नहीं बोला क्योंकि वो उसे अकेले में थोड़ा सोचने देना चाहता था। मेघना की ओर से कोई जवाब नहीं आता देख ईशान ने उसे एक लेटर लिखा। क्योंकि दूसरे दिन उसकी लंदन की फ्लाइट थी और जाते जाते वो उसकी हाँ या ना सुनना चाहता था। उसने आंटी के हाथों वो लेटर मेघना के पास पहुंचा दिया। रात हो चुकी थी। मेघना को उसकी माँ ने लेटर थमाते हुए कहा कि बेटा जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। ईशान जैसे लड़के हर किसी की किस्मत में नहीं होते। आगे जिंदगी बहुत बड़ी है और ईशान जैसा हमसफर साथ होगा तो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। वो सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें अपनाना चाहता है। इतना कहकर उन्होंने मेघना के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और चली गईं। मेघना ने खत खोला। खत में लिखा था, मेरी प्यारी मेघना, बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी लड़की को बेइंतहा चाहा है तो वो बस तुम हो, सिर्फ तुम। ये सच है, मैंने तुमसे कभी इजहार नहीं किया क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो मैं अपने बचपन की दोस्त को खो ना दूं। और तुमसे बिना इजहार तो जी लेता पर तुम्हारी नाराजगी से तो मैं चैन से मर भी नहीं पाता। अगर इश्क इबादत है तो मैं सिर्फ तुम्हारी इबादत करता हूँ। कई बार मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कहनी चाही लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पाया क्योंकि एक जिम्मेदार इंसान बनकर तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहता था जिसके लिए तुम बनी हो। और जब तक वो वक्त आया मैं तुम्हें कुछ कहता उससे पहले तुमने समीर और तुम्हारे रिश्ते की बात मुझे बताई। फिर तो तुम्हारी खुशियों के आगे मुझे पीछे हटना ही था। लंदन जाने का मेरा फैसला ही तुम दोनों की जिंदगी से चले जाना था। मैं चाहता था कि मेरी मेघना अपने प्यार के साथ अपना सफर तय करे और मैं तुम दोनों के बीच कभी ना आऊं। समीर के जाने का सबसे ज्यादा दुख मुझे है क्योंकि वो मेरा दोस्त तो था ही पर मेरी जिंदगी की जिंदगी भी था। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। आज अगर तुमसे इजहार नहीं करता तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता क्योंकि जिसने हमेशा तुम्हारी मुस्कान के अलावा कुछ मांगा ही नहीं रब से वो तुम्हें इस हाल में छोड़ के कैसे चला जाए। अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहोगी तो मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। नहीं तो हमारी दोस्ती तो है ही और हमेशा रहेगी। पर हाँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। शायद इसी आस में कि उम्र के किसी भी मोड़ पर शायद तुम्हारी हाँ मुझ तक पहुंच जाए। इसी उम्मीद से इस ईशान को सुकून से मर जाना है। सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले कॉल कर देना, हाँ या ना का।
क्योंकि तुम्हें देखने के बाद शायद खुद को जाने के लिए संभाल नहीं पाऊं। तुम्हारा हाँ या ना जो भी जवाब हो, यकीन मानना मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम्हारा ईशान। खत पढ़ते पढ़ते मेघना के आंसू नहीं थम रहे थे। वो पूरी रात सोचती रही और न जाने कब उसकी आंख लग गई। ईशान कॉल का इंतजार करके रवाना हो चुका था। तेज बारिश थी। अचानक मेघना की आंख खुली। उसने देखा ईशान जा चुका है। उसने जल्दी से कार निकाली और एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पहुंचते ही उसे ईशान और उसके माता पिता दिख गए। उसने ईशान को जोर से आवाज लगाई, ईशान लॉन्ग ड्राइव पर चलोगे मेरे साथ? ये भीगी भागी लड़की तुम्हें भगाने आई है हमेशा के लिए। और इतना सुनते ही ईशान दौड़कर भागा और मेघना को गले लगा लिया। ईशान के मम्मी पापा भी खुश थे और वो ईशान को वहीं छोड़कर लंदन चले गए, ये कहकर कि बहू को लाने की तैयारी करने जा रहे हैं। ईशान और मेघना बारिश में आइसक्रीम खा रहे थे और एक दूसरे को पाकर खुशी से बारिश आंखों में भी समा।

0: तुम।
1: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी, एक लड़की भीगी भागी सी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। हमारे प्यारे श्रोतागण, आज हम लोग मिल करके याद करेंगे हिंदी फिल्म के संगीत जगत के महान संगीतकार और प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार जी को, जिनका संगीत रूह को एक अजीब सी सुकून देता है। इनका जन्म 16 जून 1920 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बांग्ला और हिंदी फिल्म संगीत के ये जानी मानी शख्सियत और एक फिल्म निर्माता भी थे और रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ थे। इनको हेमंत दा के नाम से जाना जाता था।

हेमंत दा का बचपन कोलकाता में बीता और प्रारंभिक शिक्षा वहां ग्रहण करने के बाद इन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, मगर बीच में ही इन्होंने ये पढ़ाई छोड़ दी अपने संगीत के रुझान के कारण। और 1930 में आकाशवाणी के लिए उन्होंने पहला बांग्ला गीत गाना गाया।

1945 में हेमंत कुमार ने बेला मुखर्जी से विवाह किया, जो बंगाल की एक गायिका थी। हेमंत कुमार के पुत्र जयंत और बेटी रेणु थी। आगे चल के पुत्र जयंत का विवाह हिंदी की प्रसिद्ध अभिनेत्री मौसमी चटर्जी से हुआ।

संगीत की प्रारंभिक शिक्षा हेमंत दा ने बंगला संगीतकार शैलेंद्र दत्त गुप्ता से ली। उस्ताद फयाज खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। शुरुआती दौर में उन्होंने गैर फिल्मी गीत गाए। 1944 में इन्हें पंडित अमरनाथ के संगीत निर्देशन में अपनी पहली फिल्म इरादा में गाने का मौका मिला। रविंद्रनाथ टैगोर के रविंद्र संगीत में भी इन्हें गाने का मौका मिला।

हेमंत दा हेमेन गुप्ता जी के बुलावे पे मुंबई आ गए। 1951 में आनंद मठ में हेमंत कुमार ने संगीत दिया। आनंद मठ में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया वंदे मातरम आज भी श्रोताओं में जोश भर देता है। उन्होंने फिल्म नागिन में संगीत दिया और इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का भी पुरस्कार दिया गया।

1951 में ही एसटी बर्मन के संगीत निर्देशन में इन्होंने जाल, हाउस नंबर 44 और 16 साल जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए जो काफी लोकप्रिय हुए।

50 के दशक में हेमंत कुमार ने बंगला और हिंदी फिल्मों में संगीत निर्देशन के साथ गाने गाए। 1959 में फिल्में भी बनाई।

हेमंत कुमार ने अपने सफल करियर में कई पुरस्कार व सम्मान प्राप्त किया। उन्हें बांग्ला फिल्म नीला आकेशेर नीचे के लिए प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला। 1989 में वे बांग्लादेश के ढाका में माइकल मधुसूदन अवार्ड लेने गए। इन्होंने छोटी छोटी कई कहानियां भी लिखी हैं।

हमारे हेमंत दा को द मैन विथ गोल्डन वॉइस कहा जाता था। वे अक्सर एक लंबी सफ़ेद शर्ट के साथ धोती पहनना पसंद करते थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय संगीतकार पंकज मलिक ही वो शख्स थे जिन्होंने हेमंत दा को अपनी आवाज़ पे भरोसा करना सिखाया था।

हेमंत दा की आवाज और संगीत इतनी जबरदस्त थी कि हर इंसान खुद को उनसे जोड़ लेता था। यही वजह थी जो मशहूर संगीतकार सलिल चौधरी ने उनके लिए कहा था कि अगर भगवान भी जमीन पर आकर गाते तो हेमंत दा की आवाज में गाते।

दिसंबर 1989 को ढाका में एक संगीत कार्यक्रम से लौटने के बाद हेमंत दा बेहद बीमार पड़ गए और बड़े पैमाने पर कार्डियक अरेस्ट के कारण कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बहू मौसमी चटर्जी के अनुसार उनके अंतिम शब्द थे, की कोष्टो, इतना दर्द। हेमंत दा की विरासत अभी भी उनके गीतों के माध्यम से हम सबके बीच में जीवित है।

0: पास है, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ है, तेरी किस्मत की चाबी मेरे हाथ है।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बड़ा।